0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला।

सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रूपये की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रूपये प्रति सीट था, अब यह घटकर 12,000 से 15,000 रूपये हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी

0: के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

नई ऊंचाइयों को छूता भारत। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, खेल और आत्मनिर्भरता के नए अध्याय लिखता भारत। आइए और विकसित होते भारत की प्रेरक यात्राओं को सुरों में महसूस करते हैं एक जोशीले देशभक्ति गीत के साथ।

0: सूफी संगीत वह इबादत है जहां सुर सजदा बन जाते हैं, अल्फाज दुआ बन जाते हैं और हर धड़कन में रब की मौजूदगी महसूस होती है। आइए अपनी रूह को सुकून और दिल को मोहब्बत से भर देने वाले एक सूफी गीत का आनंद लेते हैं।
1: दिले इश्क में जब सख्त मकाम आए

कलयुग में यदि कोई सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधना है तो वह है राम नाम। राम नाम का स्मरण, राम नाम का पवित्र जाप करते हुए आइए सुनते हैं पूरे मन, वचन और भाव से प्रभु श्री

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन, आलेख ऐश्वर्या भोसले का और वाचक स्वर आसिफ अली का।
1: मित्रता। मनुष्य के जीवन में यदि कोई रिश्ता सबसे अधिक सुकून देता है तो वह मित्रता का रिश्ता है। मित्रता वह एहसास है जहां शब्दों से अधिक भावनाएं समझी जाती हैं। एक सच्चा मित्र हमारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी पहचान लेता है। वह केवल हमारे अच्छे समय का साथी नहीं होता, बल्कि टूटे हुए मन को संभालने वाला सहारा भी बनता है। मित्रता जीवन का सबसे सुंदर, मधुर और अनमोल रिश्ता है। यह ऐसा संबंध है जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर माना जाता है, क्योंकि सच्चा मित्र हम स्वयं चुनते हैं। मित्र वह होता है जो हमारे सुख में खुश और दुख में हमारा सहारा बने। जीवन में धन, पद और प्रसिद्धि सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक सच्चा मित्र मिलना बहुत कठिन होता है। मित्रता केवल साथ घूमने, हंसी मजाक करने या समय बिताने का नाम नहीं है। सच्ची मित्रता त्याग, विश्वास, प्रेम, सहयोग और समझदारी पर आधारित होती है। जब मन दुखी होता है तब मित्र की एक छोटी सी बात भी हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देती है। मित्र हमारे जीवन का वह दीपक होता है जो अंधकार में हमें सही रास्ता दिखाता है। जीवन की राह में कई लोग मिलते हैं, कुछ समय के साथ बिछड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे मित्र हमेशा दिल में बस जाते हैं। मित्रता का संबंध किसी लालच या स्वार्थ पर नहीं टिकता, बल्कि विश्वास और अपनापन इसकी नींव होते हैं। जहां विश्वास होता है वहां मित्रता मजबूत होती है, और जहां अहंकार आ जाता है वहां रिश्ते टूटने लगते हैं। एक अच्छा मित्र हमारी अच्छाइयों को बढ़ाता है और बुराइयों को दूर करने की कोशिश करता है। वह कभी हमारी झूठी प्रशंसा नहीं करता, बल्कि हमारी गलतियों को बताकर हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। जीवन में यदि अच्छे मित्र मिल जाएं, तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। सच्चा मित्र वह नहीं जो हर बात में हमारी हां में हां मिलाए, बल्कि वह है जो गलत रास्ते पर जाने से हमें रोके, जो हमारी कमजोरी पर हंसे नहीं बल्कि उसे हमारी ताकत बनाने में मदद करे। मित्रता का सबसे सुंदर रूप वही है जहां एक मित्र दूसरे की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं बल्कि गर्व महसूस करे। आज की दुनिया में लोग भीड़ में तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दिल से साथ निभाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इसलिए यदि जीवन में एक भी सच्चा मित्र मिल जाए तो उसे कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन सच्चा मित्र खो जाए तो जीवन की खुशियां अधूरी लगने लगती हैं। मित्रता जीवन की वह छांव है जहां थका हुआ इंसान कुछ पल सुकून से जी सकता है। यह रिश्ता हमें सिखाता है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के दुख को अपना समझे वही सच्चा इंसान कहलाता है। इसलिए हमें ऐसा मित्र बनना चाहिए जिसकी मौजूदगी से किसी का जीवन आसान हो जाए, क्योंकि सच्ची मित्रता केवल साथ चलने का नाम नहीं है, बल्कि गिरते हुए इंसान को फिर से उठाने का नाम है। मित्रता वह ऐसा

0: एहसास है जहां दिल को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। सच्चा मित्र किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि वह केवल साथ नहीं बल्कि सुकून भी देता है। जब दुनिया समझना छोड़ दे, तब एक मित्र ही होता है जो बिना कहे सब समझ जाता है। मित्रता का सबसे सुंदर रूप वही है जहां रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से निभाए जाते हैं। एक सच्चा मित्र हमारी जिंदगी का वह दीपक होता है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख ऐश्वर्या भोसले का और वाचक सर आसिफ अली का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: आकाशवाणी इंदौर से आइए आप सुनते हैं खेती की बातें। विषय है अनियमित वर्षा की स्थिति में खरीफ फसल का वैज्ञानिक प्रबंधन। वाचक स्वर डॉक्टर अनुराधा शर्मा का।
1: सगला किसान भाई बहनों के डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, आज अपनी बातचीत का विषय है अनियमित वर्षा की स्थिति में खरीफ फसल को वैज्ञानिक प्रबंधन। भाई बहनों, अपन देख ही रहे हैं कि खरीफ की खेती पूरी तरीका से मानसून पर निर्भर है, लेकिन पिछला कुछ साल होने से बारिश को रूप बिल्कुल बदली गया है। कभी कभी तो खूब वर्षा होए ना, कभी कभी बहुत लंबा समय तक पानी नहीं पड़े। कभी कभी ऐसा होए कि एक साथ ऐसी तेज बारिश होए कि एक दो घंटा में पूरा खेत उनके तालाब में बदली दे, न फिर बहुत दिन तक सूखो पड़ी जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारा किसान भाई बहनों के कुछ वैज्ञानिक उपाय अपनाने की आवश्यकता है, जिका से फसल को नुकसान काफ़ी कम होए और बहुत हद तक फसल के नुकसान के अपन रोक ही सका। इसलिए सबसे पहली और सबसे आवश्यक बात है कि खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इको उलट का ऐसा भी खेत है जिनमें वर्षा कम होए या पानी रुके नहीं, वहाँ मेड़बंदी करके, कंटूरबंदी करके या वर्षा जल को संरक्षण करके ऐसे उपाय अपनाई के मिट्टी में लंबा समय तक नमी में बनाई के रखना बहुत आवश्यक है। सोयाबीन, मक्का, अरहर और इसी बहुत सारी खरीफ की फसल है जिनमें जल भराव की समस्या यदि होए और 24 से 48 घंटा से अधिक तक यदि पानी भरे रहे तो पौधा उनकी जड़ प्रभावित हो जाए और या तो वो रोग से प्रकोप में आई जाए या फिर सड़ी के खत्म हो जाए। तो ऐसा स्थिति में अतिरिक्त पानी के शीघ्रता से निकालना बहुत आवश्यक है। दूसरा, ऐसी स्थिति बनी जाए कि बहुत लंबा समय तक वर्षा नहीं होए, लंबा खेच का कारण या लंबा अंतराल का कारण खेत में नमी बचाने के लिए भी निंदाई कुड़ाई करना आवश्यक रहे। एक साथ फसल अवशेष का जो सूखा पत्ता है उकासी अपना पूरा खेत के ढकी के भी अपूर्ण नमी के लंबा समय तक अपना खेत में बनाई के रखी सका। पोषक तत्वों को संतुलित उपयोग भी इना समय बहुत आवश्यक है। एक तो हम देख ही रहे हैं कि हमारा किसान भाई बहनों नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है और मदा परीक्षण का आधार पे उर्वरक को उपयोग करें, जैविक खाद को उपयोग करें, गोबर की खाद को उपयोग करें, कंपोस्ट नाखे या जैव उर्वरक का माध्यम से मिट्टी में उपयोगी पोषक तत्व उनकी मात्रा के पहुंचाए और ये सब खाद उनका उपयोग करने से मिट्टी में जल धारण क्षमता भी बढ़ी जाएगी। अनियमित वर्षा का कारण बहुत सारा कीट और रोग उनको प्रकोप भी बढ़ जाए। इकासी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे किसान भाई बहनों के सप्ताह में कम से कम दो बार और नहीं हो तो एक बार तो उनको खेत को पूरा निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है। खेत में जब आप जाओगा अपनी फसल के देखोगा तो आपके यदि कोई कीट रोग को प्रकोप हो रही हो तो के प्रारंभिक अवस्था में उसकी पहचान हुई जाएगी और प्रारंभिक प्रकोप के रोकनू बहुत सरल रहे, आसान रहे, बजाय कि बाद में रोग बहुत फैली जाए, बीमारी फैली जाए या कीट को नियंत्रण करनू मुश्किल हो जाए। तो यदि वे खेत में घूमने गया है, देख ही रहा है, निगरानी कर ही रहा है तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह का अनुसार समेकित प्रबंध करके उन्हें बीमारी के समय से पहले ज रोकी दे, कीड़ा होने के प्रकोप के कम प्रकोप की स्थिति में रोकी सके है। कम प्रकोप में बीमारी होने को प्रकोप जिना समय कम रहे या कीड़ा कम रहे उना समय यदि उके रोकी देंगा तो अनावश्यक जी दवा न छिड़कनु पड़े उके किसान भाई बहनों के वो एकासी बची जाएगा। किसान भाई बहनों, मौसम की जानकारी भी आज खेती को बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी है। हमारे किसान भाई बहनों अपने मोबाइल का माध्यम से मौसम पूर्वानुमान लगेले उनका आधार पे बुआई, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और पोस्ट संरक्षण का जितना भी काम है उसको निर्णय उना आधार पे लेगा तो वे लाभकारी रहेगा। इकालिए वे अपने मोबाइल पे उपलब्ध कृषि और मौसम संबंधी सेवाओं को उपयोग कर सके, स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क कर सके या आपका आसपास कोई कृषि विज्ञान केंद्र है तो उकी भी नियमित सलाह आप ली सको। जलवायु परिवर्तन का इना दौर में खेती के अधिक टिकाऊ बनाने का वास्ते फसल विविधीकरण, जैविक पदार्थ उनको खेत में उपयोग, वर्षा जल संरक्षण और संतुलित पोषण जैसा उपाय अपनाई के हमारा किसान भाई बहनों अपनी भविष्य की खेती के अच्छी करी सके है और योज आज की आवश्यकता है। आज किसान भाई बहनों से हमारो योज केनु है।
0: आप सुन रहे थे खेती की बातें। वाचक स्वर डॉक्टर अनुराधा शर्मा का था और विषय अनियमित वर्षा की स्थिति में खरीफ फसल का वैज्ञानिक प्रबंधन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस कान का आज का प्रसंग।

एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततो गत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृतसनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृत सरी की ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनययुक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए।

अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक स्वर भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह का था। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह 7:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रोग्राम साहित्य की। 7:35 पर सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। लोक संगीत में 9 बजे कलाकार हैं राम अवतार अखंड और साथी। और 9:15 पर सुनिए राजीव शर्मा को सुगम संगीत में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिए पंडित अनंतलाल का शहनाई वादन, राग है गुजरी तोड़ी। 10 बजे सुनिए जिले की चिट्ठी। और 10:05 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित प्रोग्राम मन भावन। 11 बजे होगा फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, जो हम अपने आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं इस घंटे की खास खबरें 11:58 पर, 12:58 पर और 1:58 पर। 12 बजे सुनिए फिल्म संगीत, 12:30 संग्रहालय से, 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम, ये इंदौर की प्रस्तुति होगी। आप सुनेंगी कामकाजी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संतुलन और स्वयं की देखभाल, इस विषय पर चर्चा। योजना में सुनिए मिशन शक्ति के बारे में वार्ता होगी। डिजिटल युग में महिलाएं, अवसर चुनौतियां, दीप्ति व्यास की ये वार्ता होगी। रूप लावण में जानिए सफेद होते बालों की समस्या कैसे हो समाप्त। फैमिली फिटनेस में मानसून में कैसे रहें सेहतमंद।

1:30 पर सुनिए लोक संगीत और 1:45 पर होगा सुगम संगीत का प्रोग्राम। 2 बजे सुनिए फिल्म संगीत और 2:30 पर आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का। शाम 5 बजे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। आज का क्रम में सुनिए सफलता की कहानी। 5:45 पर लुत्फ लीजिए फिल्म संगीत का। शाम 6 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 बजे सुगम संगीत में कलाकार हैं राजीव शर्मा। और 6:45 पर सुनिए राम अवतार अखंड और साथियों के गाए लोकगीत।

0: कार्यक्रम होगा लोक संगीत। शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा। आप सुनेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पर जानकारी, साथ ही भेंट वार्ता होगी कृषि में स्टार्टअप एवं आर्थिक विश्लेषण डॉक्टर वीणा राठौर से। अनुराधा शर्मा की बातचीत इस विषय पर होगी। रात्रि 8 बजे सुर्खियों में हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और 8:15 पर सुनिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:30 आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर सुनिए चित्रगीत और 9:30 पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम होगा मन भावन। 10:30 शास्त्रीय संगीत में सुनिए चित्रांगना रेशवाल का पखावज वादन, ताल है चौताल। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत समाचारों के बाद हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भारतस्य सेमीकण्डक्टर इति परिकल्पना निर्माण परिवेशस्य सुदृढीकरणाय 5,27,000,00,000,00,000,00,000,00,000,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, अनुमोदिता। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः एतान् मन्त्रिमण्डल निर्णयान् उद्घोषितवान्। असौ अवदत् यत् सेमिकॉन 1.0 इति योजनायाः सफलताम् अनुवर्तमाना एषा योजना भारतं वैश्विकं सेमीकंडक्टर इति केन्द्रं स्थापयितुं प्रशासनस्य दृढ प्रतिबद्धतां द्योतयति। मन्त्रिमण्डलेन 565,000 करोड़ रूप्यकाणां विनियोगेन चरदूरभाष विनिर्माण योजना अपि अनुमोदिता। एवमेव उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी नगरे मार्ग संयोजनस्य सुदृढीकरणाय यातायातावरोधस्य न्यूनीकरणाय यात्रा समयस्य च संक्षेपणाय द्वे उन्नत मार्ग परियोजने अपि अनुमोदिते। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः विश्वासम् व्यक्तवान् यत् भारत यूरोपीय संघयोः व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनेन द्वयोः पक्षयोः सहकार्यम् अधिकं सुदृढं भविष्यति। ब्रुसेल्स नगरे सम्पन्नस्य तृतीय भारत यूरोप संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् असौ अवदत् यत् भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः सुरक्षा रक्षा सहकारः अथ गमनागमन रूपरेखा इत्येतेषां माध्यमेन विकसितः सहयोगः अग्रे अपि प्रवर्धिष्यते।
2: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
1: केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त व्यापार सन्धिं निष्पक्षं न्यायसंगतं संतुलितं च निरूप्य अवदत् यत् एषः सन्धिः उभय देशयोः सर्वेषां क्षेत्राणां कृते परस्पर हितकरः भविष्यति। भारतीय निर्वाचनायोगेन पंजाब कर्नाटक तेलंगाना दिल्ली इत्येतेषु नगरेषु प्रचलितस्य मतदात्री सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य समय सीमा विस्तारितास्ति। दिल्ली कर्णाटकयोः मतदान केन्द्र स्तरीयाधिकारिभिः प्रतिगृहं गत्वा क्रियमाणं सत्यापन कार्यं यत् अस्य मासस्य 29 दिनांक पर्यन्तं निर्धारितमासीत् अधुना आगामी मासस्य 8 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यम्।

0: आगामी मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तम् एव अनुवर्तिष्यते। विश्व विख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम् वार्षिक रथयात्रायाम् जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये एक दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और विनिर्माण के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रसेल्स में कल आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री

0: जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर की हिंद है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज 16 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बारिश के दिनों में पेट से संबंधित बीमारियां और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर रविंद्र काले से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए समय नोट करें और दिन नोट करें। आज का दिन और समय सुबह 10:32 से 11:02 पर। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731। फोन करना ना भूलें। आज दिनांक 16 जुलाई को और समय है सुबह 10:32 से 11:02 तक। आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। सूचना समाप्त हुई।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: अरे, आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: शाम अवध की,
1: वादियाँ हिमालय की,
0: क्या बात है।
1: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
0: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह के 7:10 होने को हैं। कोशीपलों में प्रादेशिक समाचार हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रतनेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब को देंगे विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज फेड कॉन्क्लेव 2026 में निवेशकों से करेंगे संवाद। प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी होने से बड़ी चिंता, आज कई जगह चेतावनी। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय फेड कॉन्क्लेव 2026 में सम्मिलित होंगे। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय अतुल्य भारत, अमूल्य अर्थशास्त्र है। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय उन्नति को गति देना है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के इस शीर्ष निकाय के मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की उपस्थिति मध्य प्रदेश में पर्यटन निवेश और विकास की नई संभावनाओं को रेखांकित करेगी। वहीं डॉक्टर यादव भारत टेक्स 2026 में शामिल होंगे। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियों और कपड़ा क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रदेश भर से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आह्वान किया कि वे राज्य द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर केंद्रित रील्स बनाएं ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
1: एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपने राज्य के बच्चों को नीट के एग्जाम में क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा जो बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ नहीं दे पाता है, उन सबके बच्चों को सरकार फीस देकर के डॉक्टर बना रही है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।
0: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन रथों में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ के मामा का निवास स्थान माना जाता है। लगभग

0: 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त होने पर कल इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया और उनका आत्मीय स्वागत किया। डॉक्टर यादव ने पदोन्नत पुलिस अधिकारियों को बैच लगाकर सम्मानित किया तथा उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बधाई प्रदान की। इस दौरान राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने भी पदोन्नति मिलने पर मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की दीर्घकालिक सेमीकंडक्टर रणनीति को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल ग्लोबल चिप डिजाइन सर्विसेज का केंद्र रहने के बजाय अपनी खुद की बौद्धिक संपदा और उत्पाद बनाने वाली कंपनियां खड़ी करेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: समाचारों में फिलहाल वक्त एक छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। IRCTC ने रेल यात्रियों को बेहतर और तेज टिकट बुकिंग अनुभव देने के लिए अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसे ट्रायल के तौर पर यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। नए पोर्टल में 4 बड़े सुधार किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले यात्रियों को बेवजह के कैप्चा, पॉपअप और ध्यान भटकाने वाले ग्राफिक्स से राहत मिलेगी। इसके साथ ही अब यात्रियों को सभी श्रेणियों में सीट उपलब्धता की जानकारी एक ही जगह दिखाई देगी और पैसेंजर डिटेल्स सेव रहने से बार बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश के नगरीय विकास को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत 2,753.10 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कमिश्नर IAS संकेत भोंडवे के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व और दूरदर्शी दृष्टिकोण के चलते दिल्ली की उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों के प्रस्तावों को त्वरित स्वीकृति मिली। इस योजना से इंदौर, जबलपुर और रीवा में आधुनिक जल प्रदाय और सीवरेज सिस्टम का सुदृढ़ीकरण होगा। साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से काल भैरव और मंगलनाथ सहित 11 ऐतिहासिक मंदिर परिसरों का कायाकल्प कर भव्य कॉरिडोर बनाए जाएंगे। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी होने से कई जिलों में सामान्य से कम बारिश होने की चिंता बढ़ रही है। वहीं तेज गर्मी और भीषण उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई मजबूत सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिससे अगले कुछ दिनों तक केवल हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। हालांकि आगामी 19 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होगा। फिलहाल आज बैतूल, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा और मंडला सहित 20 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि शेष जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगहम में के एडबेस्टन में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में किसानों से 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का अनिवार्य बीमा कराने की अपील की गई है। झाबुआ जिले में कलेक्टर ने स्कूलों का औचक निरीक्षण कर देरी से आए 2 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिया। आगरमालवा जिले में सिंहस 2028 के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कलेक्टर और SP ने प्रस्तावित पड़ाव स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया। जबलपुर जिले में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा आज धूमधाम से शुरू हुई। अशोकनगर जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर है, जहाँ वह जनसुनवाई और स्वसहायता समूह से संवाद करेंगे। नर्मदापुरम जिले में जगदीश मंदिर और डोंगरावाड़ा धाम से भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा आज भव्य नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। भोपाल जिले में जिला बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आबू धाबी के लिए प्रदेश की पहली सीधी

की। दमोह जिले में कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 6 शराब दुकानों को सील कर दिया है। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत और लंबित आवासों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने की समीक्षा की गई। शाजापुर जिले में युवाओं को जागरूक करने के लिए 15 दिवसीय नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है। इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर। आइए आप सुनते हैं प्रोग्राम साहित्य की।
1: नमस्कार श्रोताओ, प्रस्तुत है साहित्यिक पत्रिका साहित्य की।
2: आज के इस कार्यक्रम में विद्यापति के कृतित्व पर समीक्षा की जाएगी। तो पहले मैथिल कोकिल विद्यापति पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी दे रहे हैं हरे राम बाजपेयी।
3: हिंदी गीत काव्य को संगीत में कोमल कांत पदावली का परिधान अगर किसी ने पहनाया तो वो विद्यापति। हिंदी की नाटक परंपरा में भी विद्यापति का महत्वपूर्ण अविस्मरणीय स्थान है। नाटकीय तत्वों से युक्त सर्वप्रथम हिंदी में विद्यापति लिखित गोरक्ष विजय, इसमें संस्कृत गद्य और मागधी पद के दर्शन होते हैं। महत्वपूर्ण बात की कहने जा रहा हूं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है कि हिंदी साहित्य यदि अपनी परंपरा ढूंढने निकलेगा तो उसे विद्यापति में अपना आदिकव दिखाई देगा। वे अपने युग के सबसे प्रामाणिक कवि हैं। हिंदी और मैथिली ही नहीं, बांग्ला, असमी, उड़िया, नेपाली आदि भाषाएं भी उनके काव्य में प्रयुक्त हुई हैं। वे श्रृंगार और भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनके काव्य में मध्यकालीन मैथिली भाषा का स्वरूप भी देखा जा सकता है। उन्हें बंगाली यानी कि बांग्ला साहित्य का भी जनक भी कहा जाता है। विद्यापति के अपने काव्य में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का प्रयास किया है। मिथिलांचल के लोकगीतों में विद्यापति के श्रृंगार और भक्ति रस से पगी रचनाएं आज भी प्रचलित हैं। विद्यापति ने लगभग 500 प्रेम गीत लिखे हैं। इसके बाद की रचनाएं शिव, विष्णु, दुर्गा, गंगा, भक्ति में भी लिखी गई। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। वे भक्ति काल के संत कवि माने जाते हैं। साहित्य कर्मकांड, धर्मशास्त्र, दर्शन, न्याय, सौंदर्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, इतिहास व भूकाल के प्रकांड पंडित, मैथिली भाषा में रची हुई पदावली उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। वही कीर्ति लता और कीर्ति पताका उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उनकी रचनाओं में भक्ति श्रृंगार, सांस्कृतिक अनुष्ठान, लोक व्यवहार, मानवीय प्रेम और नीति शास्त्र का सजीव चित्रण मिलता है। विद्यापति ने प्रबंध और मुक्तक काव्य रचना की। उनके तीनों महत्वपूर्ण खंड काव्य अवहट्ट भाषा में है, पदावली की रचना मैथिली भाषा में। विद्यापति के काव्य में वीर श्रृंगार और भक्ति का अद्भुत समन्वय है। कीर्तिलता और वीर रस प्रधान रचना है। पदावली में श्रृंगार भक्ति का मिश्रण है। तो विद्यापति ने शिव विष्णु शक्ति की अपना आराध्य माना है। उन्होंने प्रेम और भक्ति और सामाजिक विषयों पर लिखा है। मिथिला ही नहीं संपूर्ण भारतीय साहित्य पर उनके काव्य का गहरा प्रभाव है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां हैं, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली, गोरक्ष विजय, मणिमंजरी, नाटिका, विभागसार, गंगा वाक्यावली, दाव वाक्यावली, शैव सर्वस्व सार और दुर्गा भक्ति रंगनी। सीधे सीधे इनको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जिस देवता के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की कवि ने सीधे सीधे उन्हीं के नाम से लिखा है।

0: और आप हैं डॉक्टर अखिलेश राव।
1: कीर्ति पताका, कीर्ति लता जैसी ग्रंथ लिखने वाले विद्यापति जी को आप हम याद कर रहे हैं। मिथिलांचल के लोक व्यवहार में जो प्रचलित गीत हैं, आज भी विद्यापति के श्रृंगार और भक्ति रस में जीवित हैं। विद्यापति के समय की जो भाषा थी वो भाषा थी प्राकृत, और इससे ही व्युत्पन्न अभट पूर्वी भाषाओं में मैथिली और भोजपुरी के शुरुआती संस्करणों में जो परिवर्तन हुआ है वो विद्यापति के प्रभाव से ही हुआ है। और इसी को देखकर इटली में दांते, इंग्लैंड में चौसर के समान ही इन्हें माना जाता है। उन्हें बंगाली साहित्य का जनक भी कहते हैं। ऐसे थे हमारे विद्यापति। हिंदी साहित्य का प्रारंभ वैसे 1050 से माना जाता है, और विद्यापति इसे प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था को भी कहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि वीरगाथा काल में ही विद्यापति प्रमुख कवि के रूप में उभरे थे, किंतु उनकी रचनाओं का जो विशेष महत्व है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पतावली। और कीर्तिलता के संबंध में तो ऐसा भी कहा जाता है कि कीर्तिलता जिन छंदों में, जिन पदों में, जिन शब्दों में, जिन अभट में, जिस प्राकृत में, जिस अपभ्रंश हिंदी में लिखी गई, उस पर पूरा का पूरा प्रभाव छंद वरदाई के पदवीराज रासों का था, ऐसा साहित्य में हमें उल्लेख मिलता है। और ये इससे स्पष्ट भी होता है कि जिसमें पदवी ये भ्रंग और भ्रंगी के संवाद के रूप में लिखी है, उन्हें कीर्ति पताका लगी भ्रंग और भ्रंगी के संवाद के रूप में इस पदावली को लिखा गया था। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गाथा छंदों का व्यावहारिक प्रयोग भी विद्यापति ने आरंभ किया। और यह भी स्पष्ट है कि आदिकाल की परदीन के समाचीन में रखना इन साहित्य की मजबूरी थी विद्यापति को, चूंकि विद्यापति भक्ति काल को भी लिखते हैं, विद्यापति श्रृंगार को भी लिखते हैं, और श्रृंगार का भी उन्हें प्रमुख कवि माना जाता है। इसी को देखते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जो अनुभव होता है, वैसा ही विद्यापति पदावली पढ़कर कोकिल कंठता के कारण उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया था। ऐसा विद्यापति को मैं प्रणाम करता हूं, और उनकी एक रचना है वो आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं कि उनका श्रृंगार कितना प्रभावशाली होता था। एक बहुत अच्छी जो कविता है उसे हम पढ़ते हैं। पीन पयोधर दूपर गता मेरु उपजल कनक लता, एक कान्हा एक कान तोरी दोहाई, अति अपरूप देख ली राई, मुख मनोहर अधर रंगे, फुलली मधुर कमर संगे, लोचन जुगल भंग अंगारे, मधुमातल उड़े न पारे, बहु कथा पूछऊ जनु, मदन जोड़ल काजर धनु, भन विद्यापति दूधित बचने, एति सुनी कानव कर गर्ज। अब इसकी व्याख्या भी देखिए, इससे और स्पष्ट होता है, क्योंकि ये मैथिली जो है भोजपुरी युक्त होती है, हम पूरी नहीं समझते। इसका जो उन्होंने व्याख्या की है कि देह दुबली है, कनक लता में मेरी गुरी उपजाए हैं, कान्हा तुम्हारी दुहाई तुम्हारी कसम, राधा इन दिनों बेहद अनूठी लग रही है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उसका मुख मनोहर है, ओंठ लाल हैं, लगता है कमल के साथ मधुरी के छोटे छोटे फूल खिले हैं, कजरारी आंखों वाली भौरों की तरह लगती है, मालूम होता है मकरंद पीकर दोनों भौरे इस तरह मस्त हैं कि वहीं से चिपक गए हैं, और आंखें जैसे दिखाई पड़ती है, अब मत पूछो कि भौंए कैसी लगती है, कामदेव ने काजल के कमान भिड़ा रखे हैं। विद्यापति कहते हैं दूती के मुंह से इतना सुनकर कान्हा राधा से मिलने चले गए थे। ऐसी पदावली, ऐसा श्रृंगार कहां मिलेगा आपको। मैं विद्यापति को प्रणाम करता हूं इसी शब्दों।

0: और अब साहित्यिकी के अंत में भरत कुमार उपाध्याय विद्यापति पर अपना वक्तव्य देते हुए।
1: पोखरी सक्कय वाणी बहुजन भावई, पावऊ रस को मम न पावई, देसिल बैना सबजन मिठा, ततसेन जम्पुवो अव हट्टा। कम उम्र में ही अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा से संस्कृत, मैथिली और अवहट्ट अपभ्रंश भाषा में काव्य सृजन करने वाले महाकवि और विश्व कवि मैथिल कोकिल सहित अनेक साहित्यिक उपाधियों से विभूषित विद्यापति का काव्य सदैव से समीक्षकों और आलोचकों के लिए स्वयं उनके वक्त के साथ वर्तमान समय में भी साहित्यकारों के लिए धर्म संकट का कारण रहा है। विद्यापति को घनघोर श्रृंगारी

कवि माने या परम भक्त कवि, जब हम उनके व्यक्तिगत जीवन का अवलोकन करते हैं तो उनका स्वरूप एक चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आता है। जहाँ भगवान शंकर उगना के रूप में उनकी सेवा चाकरी करते नजर आते हैं और माँ गंगा उनके अंत समय में उनके पास पहुंचकर उनको स्वयं में विलीन कर लेती है। किंतु क्या इन दो देवी घटनाओं या किंवदंतियों के कारण उनका साहित्य आलोचना से निरापद हो जाता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। विद्यापति को आलोचना का दंश आचार्य राम आलोचना का दंश अपने गुरु हरि मिश्र द्वारा भी भोगना पड़ा था। प्रथम बार जब उनके गुरु को पता चला कि विद्यापति मैथिली में रचना करने लगे तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए विद्यापति से कहा, संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी सामान्य जन की इस भाषा में तुम कैसे रचना पाठ कर सकते हो? ताल पत्र व्यर्थ क्यों कर रहे हो? लेकिन यहाँ विद्यापति ने अपने गुरु की बात न मानते हुए लोक भाषा मैथिली और अवट अपभ्रंश में ही अपना अधिकांश साहित्य सृजन किया और परिणाम स्वरूप विद्यापति की इसी मजबूत लोक भाषा की नींव पर कबीर, तुलसी, जायसी, सूर और मीरा ने अद्भुत काव्य अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की। किंतु समय के साथ विद्यापति के काव्य की समीक्षा और आलोचना का असमंजस बराबर बना रहा। विद्यापति का उचित मूल्यांकन न तो हिंदी आलोचना कर पाई न मैथिली। इनकी दुविधा हमेशा यही रही कि अखंड श्रृंगार भाव में डूबे कवि को कैसे भक्त कवि के रूप में स्थापित करें, क्योंकि शिव भक्ति में श्रृंगार तत्व जीवनोत्सव के रूप में सामने आता है। यहाँ स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर कोई कुंठा नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य में जिस वक्त विद्यापति का मूल्यांकन हो रहा था, उस वक्त विक्टोरियन नैतिकता और नवजागरणवादियों की पुरुष केंद्रित नैतिकता का जोर था। रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी नैतिकता का चश्मा लगाकर दाखिल और खारिज अभियान चला रहे थे और यही कारण था कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल वैष्णव भक्ति का ही पर्याय बनकर रह गया और विद्यापति के शिव भक्ति परक पदों की उपेक्षा और घनघोर आलोचना हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के काव्य के संदर्भ में कहा था, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने कि इन पदों को भी। निराला ने विद्यापति के संदर्भ में कहा था, अंतर्निहित प्रभुत्व मादकता नागिन का जहर है जो क्षण मात्र में शरीर को जर्जर कर सकता है। पदावली के गीतों के संदर्भ में ये निराला का वक्तव्य था। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन सहाय जैसे विद्वान उन्हें खुले मन से भक्त कवि मानते हैं, किंतु जब आलोचना से इतर विद्यापति के संपूर्ण व्यक्तित्व को आकलित करते हैं तो उनके व्यक्तित्व के महान पहलू हमारे सामने आते हैं। तिरहुत के शासक राजा गणेश्वर की हत्या के पश्चात उनके अवयस्क पुत्रों के साथ तुर्क आक्रांता असलान को जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह की मदद से पराजित करते हैं। यह उनकी कूटनीतिक सफलता का परिचायक है। एक साथ इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, प्रकांड विद्वान और अपनी तत्कालीन परिस्थितियों में विकट साहस का परिचय देते हुए विद्यापति प्रतिष्ठित होते हैं। दरबारी कवि होते हुए भी वे लोकमंगन की कामना करते हैं, अपने काव्य में सामान्य जन की चिंता करते हैं। भ्रंग और भ्रंगी पद्धति के माध्यम से वे अपनी पदावली काव्य रचना में उल्लेख करते हैं। जहाँ पार्वती शिव से कहती है, बार बार मैं तुमसे कहती हूँ कृषि कार्य में मन लगाओ, भीख मांगने से गुण घोरो घटता है, तुम अपनी लकड़ी का सोटा तोड़कर उसका हल बनाओ, त्रिशूल तोड़कर उसका फल बनाओ, बसाहा को बेल और जटा में स्थित गंगा जल से सिंचाई करो और समाज की सेवा करो, ये अद्भुत पंक्तियां आम आदमी को बेहद अभिप्रेरित करती है। उनकी प्रमुख कृतियों में पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली, प्रमाणभूत, प्रमाण संग्रह, वर्ष कृत्य, गया पत्तलक, दुर्गा भक्त तरंगिणी, विभाग सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय नाटक, वर्तमान में देश विदेश के अनेक पुस्तकालयों में उनके ग्रंथ उपलब्ध हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की खोज की। आधुनिक हिंदी साहित्य के आलोचकों की व्यग्रता ने कई महान कवियों का समुचित आकलन नहीं किया है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के काव्य ग्रंथ कीर्तिलता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी। आवश्यकता है हमारे आदिकालीन और भक्तिकालीन कवियों का समग्र और समुचित विवेचन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इसी के साथ आज का साहित्य की कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे साहित्य की। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल।

सुनहरे पल के सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। श्रोताओं, सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि सपनों, संघर्षों और सफलता की कहानियों का भी आईना है। आज हम जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं ऐसी ही एक अभिनेत्री को, जिन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर हिंदी फिल्म जगत में एक विशिष्ट स्थान बनाया। अपनी मोहक मुस्कान, प्रभावशाली अभिनय और बेहतरीन नृत्य शैली से करोड़ों दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री, आप समझ ही गए होंगे, बॉलीवुड की बॉर्बी डॉल कही जाने वाली अभिनेत्री की बात कर रहे हैं हम। जी हाँ, हांगकांग में जन्मी कैटरीना कैफ 16 जुलाई 1983 को जिनका जन्म हुआ और उनका पूरा नाम था कैटरीना रोजमेरी टेरकोट। इनका फिल्मी सफर किस तरह का रहा, हम और बातें करते हैं। पहले सुन लेते हैं उनकी एक फेमस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, ब्रिटिश हांगकांग में जन्मी गैफ कई देशों में रहने के बाद लंदन चली गई, जहां उन्होंने 3 साल बाद बिताने के बाद किशोरावस्था में ही मॉडलिंग का पहला असाइनमेंट मिला और बाद में उन्होंने फैशन मॉडलिंग में भी अपना करियर बनाया। लंदन में एक शो में भारतीय फिल्म निर्माता कैचात गुस्ताद ने उन्हें फिल्म बूम के लिए कास्ट किया। वैसे ये फिल्म व्यावसायिक रूप से तो असफल रही, लेकिन बाद में कैफ ने और भी फिल्मों में, जो रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में थी, काफ़ी सफलता प्राप्त की। हांगकांग में जन्मी कैटरीना कैफ का सफ़र आसान नहीं था। नई भाषा, नया देश और नया फिल्मी माहौल, लेकिन दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम ने हर चुनौती को सफल बना दिया और आज भी हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। आइए सुनते हैं उन्हीं की एक फिल्म सिंह इश्किंग का गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कैटरीना कैफ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने अपनी सफलता को कभी मंजिल नहीं माना, बल्कि हर नई फिल्म को एक नई शुरुआत की तरह

है स्वीकार किया। यही सोच किसी भी कलाकार को लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में बनाए रखती है। और जब भी बॉलीवुड के शानदार डांस परफॉर्मेंस की बात होती है तो कैटरीना कैफ का नाम जरूर लिया जाता है। उनके हर डांस में मेहनत, ऊर्जा और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। शायद यही कारण है कि उनके कई गीत आज भी दर्शकों की पहली पसंद बने हुए हैं।

श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में कई कलाकार अभिनय के लिए जाने जाते हैं और कई अपने नृत्य के लिए, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो दोनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। कैटरीना कैफ उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में शामिल है। उनकी ऊर्जा, लय और आत्मविश्वास हर प्रस्तुति को यादगार बनाती है। श्रोताओं, सफलता जब मेहनत से मिलती है तो वो लंबे समय तक कायम रहती है। 2007 में आई फिल्म नमस्ते लंदन उनकी बड़ी पहली व्यावसायिक सफलता में शामिल थी, जिसके बाद वे बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत।

श्वेता उनके फिल्मों की फहरिस्त लंबी है और वक्त बहुत कम। उन्हें मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। रोमांस हो, कॉमेडी हो या फिर एक्शन, कैटरीना कैफ ने हर शैली के फिल्मों में अपना प्रतिभा का परिचय दिया और वो इसी तरह दर्शकों का मनोरंजन करती रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अब अनुमति दीजिए माजिदा खान को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
4: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल

0: xatairnewshindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देशभर में शुरू हो रही है।

0: चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवविदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा सा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
7: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमीकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी। ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet clears 2 elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved two elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid annuity model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the other project is related to the development of around 43-kilometre long, 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna River Bank in Varanasi city at a cost of around 11,000 crore rupees.
9: The project is a fully elevated 6-lane and 4-lane corridor along the Varuna River. It will have a total length of 43 kilometers with an estimated investment of 10,998 crore rupees and is expected to be completed in approximately 4 years. The fully elevated 6-lane corridor running alongside the Ganga River, it will span 46 kilometers and is estimated to be built at a cost of 14,448 crore rupees.
8: 448 crore rupees. The Union Cabinet also approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
9: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
8: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. The cabinet also gave a nod to two multi-tracking projects covering four districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. It also approved the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. The Railway Ministry has launched a new beta version of Indian Railway Catering and

कालखंड अपने सामाजिक और राजनैतिक ताने बाने से, अपने तेवर और तासीर से अपनी भाषा चुनता है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का समय एक ऐसा आंदोलित समय था जिसने अपने लिए एक विशेष भाषा गढ़ी। इस भाषा में तलवार सी चमक थी, दुश्मन के लिए हुंकार थी, मातृभूमि के लिए त्याग था और जनमानस के लिए जागरण का मंत्र। शब्द जो सुनाई देते हैं उनका वास्तविक घर मनुष्य का अंतर्मन होता है। यहीं से वो समय का स्वभाव बदलते हैं, यहीं से वो इतिहास की दिशा बदलते हैं। एक ऐसे ही शब्द साधक थे बाबा कांशीराम, एक ऐसे जनकवि जिनकी कविता केवल भावों की अभिव्यक्ति नहीं थी, वो स्वाधीनता की आकांक्षा, स्वाभिमान की चेतना और राष्ट्र प्रेम का स्पंदन थी। वो एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी और कवि थे जिनका संपूर्ण जीवन भारत को समर्पित था। बाबा कांशीराम का जन्म 11 जुलाई सन 1882 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के डाडासीबा के गांव पदियाली में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित लखनूराम और माताजी का नाम रेवती देवी था। उनकी आरंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई। मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह सरस्वती देवी के साथ संपन्न हुआ। शिक्षा के साथ साथ कला में भी उनकी गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो बचपन से ही चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर लोकगीत गाया करते, नाटक तथा रामलीला में भाग लिया करते थे। जब बालक कांशीराम मात्र 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया और एक वर्ष बाद ही उनकी माताजी भी चल बसीं। इसके बाद वो अपने बड़े पिताजी के साथ रहने लगे। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नूरपुर के एक वकील के पास मुंशी की नौकरी कर ली, लेकिन इस काम में उनका मन नहीं लगा। उन दिनों पूरे भारत में स्वाधीनता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस वातावरण का प्रभाव उनके कोमल मन पर भी पड़ने लगा।

किशोरावस्था से ही कांशीराम को आंदोलन, स्वराज और क्रांति जैसे शब्दों के अर्थ समझ में आने लगे थे। सन 1902 में वो अपने एक मित्र के साथ लाहौर चले गए। यहाँ वो कांगड़ा के उन युवकों से मिले जो रोजगार के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ के साहूकार उन युवकों का खूब शोषण कर रहे थे। इस बात से वो अत्यधिक व्यथित हो गए। यही वो घटनाएं थीं जिन्होंने उनके भीतर क्रांति के बीज बोए, स्वाधीनता संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार की। बाबा कांशीराम यूं तो अपनी आजीविका कमाने के लिए लाहौर आए थे, लेकिन तत्कालीन घटनाओं ने उन्हें स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेताओं के संपर्क में ला दिया। उन दिनों जिन स्वाधीनता सेनानियों से उनकी भेंट हुई, उनमें प्रमुख थे लाला हरदयाल, सूफी रमजाहिद शाह, सरदार अजित सिंह आदि। इन देशभक्तों ने बाबा कांशीराम को देश की आजादी के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया। लाहौर में रहते हुए उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। ये वो समय था जब पंजाब की फिजाओं में एक गीत अंगारा बनके तैर रहा था, पगड़ी संभाल जट्टा। इस गीत के रचयिता बांके दयाल और महान देशभक्त सूफी अंबा प्रसाद तथा लालचंद फलक से जब उनकी भेंट हुई, तब उनके भीतर का सोया हुआ कवि और संगीतकार जाग उठा। उन्होंने तय कर लिया कि अब स्वर केवल राग रागिनियों के लिए नहीं, बल्कि आजादी की जंग के लिए साधे जाएंगे। उन्होंने पहाड़ी भाषा में देशभक्ति की मर्मस्पर्शी कविताएं लिखनी शुरू कर दी। इसी बीच सन 1905 में कांगड़ा में तेज भूकंप आया, भारी क्षति हुई। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वहां राहत कार्य आरंभ हुआ। बाबा कांशीराम भी इसमें सम्मिलित हुए। इसी समय लाला जी से उनका संपर्क बढ़ा। सन 1908 में लाला हरदयाल के सानिध्य ने उनके भीतर देश को आजाद कराने की छटपटाहट को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। सन 1911 में वो अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का दिल्ली दरबार देखने पहुंचे थे, लेकिन अंदर ही अंदर अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने की योजनाएं पक रही थीं। जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया तो ब्रिटिश खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया। बाबा कांशीराम के कई साथी बिखर गए, वो खुद भी पुलिस की नजर में आ गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो कुछ समय तक भूमिगत भी रहे। अंग्रेजों के बढ़ते दमन चक्र ने उनकी लेखनी को और भी धारदार बनाया। सन 1917 में जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो बहुत भारी मन से वो अपने गांव पदियाली लौट आए। यहाँ उन्होंने अपने बड़े पिता की दुकान में हिस्सेदारी कर ली। दुकानदारी के काम में सामान लेने के लिए उन्हें अक्सर होशियारपुर और अमृतसर की मंडियों के चक्कर काटने पड़ते थे। 13 अप्रैल सन 1919 को वो दुकानदारी के काम से अमृतसर में ही थे जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियों की बौछार करवा दी। चारों ओर चीख पुकार, खून से सनी माटी और जान बचाने के लिए कुएं में कूदते लोग। इस घटना ने बाबा कांशीराम को स्तब्ध कर दिया।

जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बाबा कांशीराम के भीतर देशभक्ति की भावना को और प्रबल कर दिया। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने का संकल्प कर लिया और गांधी जी के सच्चे अनुयायी बन गए। अब बाबा कांशीराम एक जलती हुई मशाल बन चुके थे। वो गांव-गांव जाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहाड़ी गीतों के माध्यम से क्रांति का बीज बो रहे थे। अंग्रेज सरकार भांप गई कि ये कोई साधारण कवि नहीं है। सन 1920 में पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत के जुर्म में उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन इस जेल यात्रा ने उनके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। जेल से छूटते ही वो दुगने वेग से असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। सन 1921 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर धर्मशाला और गुरदासपुर की जेल भेज दिया गया। यहां उन्होंने 2 साल तक अमानवीय यातनाएं सही। उन दिनों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को भी मांडले जेल से धर्मशाला जेल लाया गया था। सन 1922 में लाला लाजपत राय को भी लाहौर से धर्मशाला जेल में लाकर बंद कर दिया गया था। इस तरह अनेक स्वाधीनता सेनानी इस जेल में बंद थे, जिनका बहुत गहरा प्रभाव बाबा कांशीराम पर पड़ा। अपनी जेल यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक कविताएं लिखीं। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। सन 1931 में जब सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई तो बाबा कांशीराम अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने आजीवन काला वस्त्र धारण कर ब्रिटिश सरकार से जूझने का व्रत ले लिया। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने केवल काला वस्त्र ही धारण किया तथा मृत्यु के बाद उनके कफन का रंग भी काला ही था। आजीवन काला वस्त्र धारण करने के कारण वो स्याहपोश जर्नैल कहलाए। एक सभा में उनके स्वाधीनता आंदोलन संबंधी गीतों और कविताओं को सुनकर सरोजनी नायडू ने उन्हें बुलबुले पहाड़ की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्होंने अपने सुरीले कंठ से कविताएं गा-गाकर स्वतंत्रता का संदेश कांगड़ा के समस्त पहाड़ी क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित भी किया और अनेक बार गिरफ्तार हुए। वो गांधी जी के ऐसे अनुयायी थे कि उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि से विभूषित किया गया। वो लगातार गांव-गांव घूमते रहे, पहाड़ी भाषा में आजादी के गीत और कविताएं सुनाकर लोगों को जगाते रहे। आजादी के परवानों के लिए उन्होंने लिखा, भारत माँ जो आजाद कराने ताई, मावा दे पुत्र चढ़े फांसियां, हंस दे आजादी दे नारे लाई। वो स्वयं को केवल एक भारतवासी की दृष्टि से ही देखते थे। जाति धर्म का कोई अर्थ उनके लिए नहीं था। एक भारतीय होना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। तभी तो उन्होंने कहा, मैं कुण कुण घराना मेरा, सारा हिंदुस्तान है मेरा, भारत माँ है मेरी माता, ओ जंजीरा जकड़िए, ओ

अंग्रेजा पकड़िए उसनू आजाद कराए। उनकी कविताओं में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना के स्वर सुनाई देते हैं। वो कहते हैं, काशी राम जिंद जवानी, जिंद बाज दी लाणी, इक्को बार जमना, देश बड़ा है, कौम बड़ी है, जिंद अमानत उस देश दी, कुलजा मत्था टेकी कने, इनकलाब बुलाना। उन्होंने 500 से अधिक कविताएं, 8 कहानियां और 1 उपन्यास लिखा। इस तरह उन्होंने अपनी लेखनी से हमेशा देश, धर्म और राष्ट्रीयता का स्वर बुलंद किया। आजादी का स्वप्न लिए हुए ही 15 अक्टूबर सन 1943 को उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका वो सपना जैसे हवाओं में तैरता रहा। आओ रली मिली सारे हिंद जो आजाद कराइए, नरक बनी गया देश असंदा, फिर तो सूरत बनाइए। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं लोक संगीत। आज कलाकार है राम अवतार अखंड और साथी।

आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे राम अवतार अखंड और साथी। अब लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाश

0: आप सुन रहे थे राजीव शर्मा के स्वर में डॉक्टर नरेंद्र समाध्य की रचना।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: सुगम संगीत में आप सुन रहे थे राजीव शर्मा को। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा,
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
2: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुना रहे हैं पंडित अनंतलाल का शहनाई वादन, राग है कुचरी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित अनंतलाल और साथियों का शहनाई वादन, राग था गुजरी तोड़ी। संगत कर रहे थे शहनाई पर दयाशंकर ओम प्रकाश और सुरपेटी पर राम नारायण। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।

0: सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर रत्नेश सोनी। जिले में इस समय मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश से उमस और गर्मी से राहत मिली है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में बादलों की अटखेलियों से मौसम दिलकश हो गया है और सैलानियों का तांता लग गया है। खेतों में खरीफ फसलों की बुआई और जल संरक्षण की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने आगे भी मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बाढ़ प्रबंधन, जल भराव वाले इलाकों की निगरानी और 24 घंटे की हेल्पलाइन सहित राहत तैयारियां मुस्तैद कर दी गई हैं। हालांकि जिले में प्रवाहमान मां नर्मदा में भी अभी तक जल प्रवाह अत्यधिक नहीं हो पाया है। खेती किसानी की बात करें तो जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी जारी है। 1 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाले उपार्जन के लिए 132 केंद्र बने हैं, जहाँ मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये प्रति क्विंटल तय है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को नियमित निरीक्षण कर किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उधर प्रशासनिक मोर्चे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा, आयुष्मान वंदना और सिकल सेल एनीमिया जैसी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने पर जोर दिया। उन्होंने दिव्यांगजनों को बैंक लोन से जोड़ने, महिला समूहों को खादी गतिविधियों से स्वरोजगार देने और आउटसोर्स सफाई कर्मियों को नियमित वेतन देने के निर्देश दिए। साथ ही SC ST अत्याचार निवारण मामलों में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की कमी के कारण पीड़ितों की राहत न रोकने तथा नर्मदा नदी में गिरते गंदे पानी पर नगर पालिका को सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरोग्यम नर्मदापुरम अभियान के तहत सभी 425 ग्राम पंचायतों में हर बुधवार और शनिवार को मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं। इनमें सिकल सेल, मलेरिया, डेंगू और ब्लड शुगर सहित 14 प्रकार की जांचें मुफ्त हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं आकाशीय बिजली से बचाव के लिए प्रशासन ने प्रदेश में पहली बार प्रोजेक्ट दामिनी शुरू किया है। इसके साथ ही मलेरिया की रोकथाम के लिए लार्वा और फीवर सर्वे जारी है और लोगों को पानी जमा ना होने देने की सलाह दी जा रही है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन पर प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने वाटर हार्वेस्टिंग का आह्वान किया। इसी कड़ी में शुद्ध पेयजल के लिए सजल अभियान के तहत हैंडपंपों की सफाई और क्लोरिनेशन जारी है। आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए मालाखेड़ी रेशम केंद्र को रोजगार और पर्यटन केंद्र के रूप में ढाला जा रहा है और रेशम की समृद्धि योजना में शहतूत पौधे लगाने को बढ़ावा मिल रहा है। नई पहल के तहत माखन नगर के MP एग्रो फार्म में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग शुरू की गई है, जिससे जिला मखाना हब बनेगा। साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नवांकुर अभियान के तहत महिला समूह द्वारा सीड बॉल तैयार किए जा रहे हैं। श्रवण वाक बाधितों के लिए अनुगूंज अभियान में संकेत वाणी ऐप की जानकारी दी जा रही है। उधर पीएम आवास योजना के तहत आवास प्लस 2024 सर्वे का भौतिक सत्यापन ग्राम सभाओं के माध्यम से जारी है। 26 जुलाई को 8वीं पचवड़ी मॉनसून मैराथन हुई, जिससे धावकों में भारी उत्साह दिखाई दिया। और चलते चलते बाद खेल और आस्था की। आज 14 दिनों के अनासर काल के बाद भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिसके लिए प्राचीन जगदीश मंदिर और डोंगरवाड़ा धाम में तैयारियां पूरी हैं। इसके साथ ही 17 अगस्त तक चलने वाले प्रसिद्ध नागद्वारी मेले की तैयारियां भी पचमढ़ी में तेज हो गई हैं, जहां प्रशासन ने सुरक्षा और पेयजल की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुष तिवारी का था और वाचन स्वर रत्नीश सोनी का। ये आकाशवाणी भोपाल।
1: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र 465.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भावन।

0: कभी कभी।
1: आप सुन रहे थे फिल्म आंखें का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शत्रिष्णा साहिल लुधियानवी की संगीत रवि का, और सुनना चाहा था रंगवासा बेटवा से छतर सिंह तंवर, हुकुम सिंह तंवर, सोहन सिंह, मोहन सिंह, मदन सिंह, राहुल सिंह, युवराज सिंह, शिवराज सिंह, आयुष देवड़ा, देवेंद्र सिंह सोलंकी, शिवांश चौहान, मास्टर चीनू और समस्त तंवर परिवार। आगर मालवा से सुभाष दांगी, अभिषेक दांगी, जगदीश, विशाल, राजेश, मुकेश, कमलेश, ललित, नितेश, बीना, टीना, संतोष, गुलशन, मुस्कान, अतुल, शीला, सुभाष राठौर और सुमन दांगी। नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश चुंबले, रुपेश, लीलावाई, चैताली और प्रीति। इसी गीत को पसंद किया छत्तीसगढ़ ग्राम ततरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और शावेंद्र कुमार वर्मा ने। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारुणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर ने। छत्तीसगढ़ से ही रामचंद्र माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता बेबी स्वाति और पूरा माखीजा परिवार। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, सिद्धांत और प्रिंस। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश, वैशाली और ध्वनि। वेड़ी से हुकुम, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पंकेश, साक्षी, मनन और तान्या ने।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आप सुनाई थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल शर्मी फिल्म आक्रमण का ये नगमा। नगमा निगार आनंद बख्शी, मासिकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल और सुनने के ख्वाहिशमंद थे आप सब। पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, गोमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कबचाले, नेहा सीमा, सबिया फजल, पूजा सुषमा और स्मिता, राजापेट अमरावती से दिलीप लकड़े, सुरेखा सारंग, शुभम ज्योति, तेजस्वी रवि, विराज और मोहित, जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज बिटिया, तैमूर और भैया, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, पुणे से प्रियंका पंकज आर्या, जरुण मनु से बाबा साहब और चंद्रप्रभा, झुमरी तलैया से देव इंगोले, छगुले इंगोले, छोटू दादा इंगोले और आरडी इंगोले, हिंगोली महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके, हिंगोली से ही रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिक्कू रमाबाई, सुरेंद्र मयूरी, सुरभि मंजूषा और गौतम इंगोले, छत्तीसगढ़ से रामदुलाली प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशि।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे थे इंदीवर का लिखा गीत आशा भोसले और मनहर के स्वर में। फिल्म का नाम था होटल, संगीत उषा खन्ना का था और सुनना चाहा था कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य आदित्य शिवानी और मीनू राज शिमाली, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, वीगन गांव से संतोष सातले, चंदन सारिका, रोहित शुभम, शैलेंद्र कंचनबाई और उनके परिवार वाले, वारणा शाहपुर से विजय चौहान, तेजस्विनी अंकिता और अनिकेत, चंदन नगर सतारा से सतीश बाघमारे, आतिश स्वाति, वर्षा श्रवण और शमीर, मुरादाबाद से मुकेश सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, मोहिनी और ऋतिक, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका पूजा, लीलू ऋतु और ऋषभ सिंह, राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे, देवास से इसी गीत को पसंद किया मनु ठाकुर, कृष्णा वैद्य, नेत्रा योगेंद्र, जाकिर हुसैन नजमी और उनके साथियों ने।

आप सुन रहे थे गाल गुलाबी नैन शराबी इस फिल्म का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और कृष्णा काले की, शब्द रचना कुलवंत जानी की और संगीत श्याम जी घनश्याम जी का। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे धर्मपुरी ज़िलाधार से शेख फही मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फ़र अयान फैज़ान, सुमेरा कशिश, साइमा हसनैन और खुशी। जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो दस्तगीर, शेख फैजनबी, शाकिर इस्लामी, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर शेख, सानिया गदर और उनके परिवार वाले। सुदामानगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता चित्रा और निशा। मोटक्का जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। दुबे के बगीचे इंदौर से कृष्णवी रैकवार, अमृता, नितिन, महेश और उनके परिवार वाले। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, विरक, जेतेक और उनके परिवार वाले। देवास से अनंत चिखले, दिनेश मालवीय के साथ हैं ओम प्रकाश, विनोद, मोहन और उनके परिवार वाले। इसी गीत को पसंद किया शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, सागर और उनके परिवार वालों ने।

फिल्म कालिया का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत आई टी वर्मन का। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ख़त लिख भेजा था द्वारकापुरी इंदौर से संजय दाहोदिया, वटिंडा रोड से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने, खरगोन से संतोष, आशा, महेश, आशीष और सुनील ने, लाबरिया भीरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल और उनके परिवार वाले, ब्रह्मपुरी कॉलोनी इंदौर से दिनेश कुमार हार्डिया, ज्योति राहुल हार्डिया, अंजू, अमन, अजीत, अनुराग, कविता और उनका हार्डिया परिवार, मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य ने, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा अल्तमश, रमेश गौड़ और शादाब खत्री, नीमच से इसी गीत को सुनना चाहा था गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन और यशस्वी पाटीदार ने, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म कुर्बानी का गीत कंचन मनहर और आनंद की आवाज़ में। गीत इंदिवर का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म कुर्बानी का ये गीत आप सुन रहे थे कंचन मनहर और आनंद की आवाज़ में। गीत इंदिवर का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। सुनना चाहता जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज, मक्सी से दयाराम जाटव, चंसी आनोरन, नानू राम कांसुटिया, नंद किशोर और दीपक कांसुटिया, बेटी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज, झालावाड़ से हर्षिता रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल, पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश, उमेश, हनी, अनीता, जिम्मी, दियाना, जियांश मटाई, सोमानी नगर इंदौर से बी आर राष्ट्रीय, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज और उनके परिवार वाले, पीरानपीर रोड सनावत से माणिक चंद राठौर, दीपेश कुमार, राजा राठौर, पहल कुमारी राठौर, राजकुमारी, अहमदाबाद से जतिन, भालचंद, फुलवा, विकास और नीलेश। इसी गीत को पसंद किया राहतगढ़ से हमारे इन साथियों ने, मनीष कुमार, नन्ही बेबी, आकांक्षा, राधिका, खुशी, अनीता और सबिता ने। औरंगाबाद से राजेश साबले, शीतल, राजदीप और राशि।

ये इश्क नहीं आसना। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अनवर की आवाज़ में, शत्रुष्णा आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनना चाहा था महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, सुरेश गवई और संदीप बाठे ने। मयूरी परिसर भोपाल से श्रवण सिंह, रेखा बिनीता और शेर सिंह। खंडवा से योगेश गुजराती, महिमा रेखा गुजराती। इसी गीत को पसंद किया सुदामा नगर झालावाड़ से हर्षिता रामेश्वर कान्हा, कपिल मीनाक्षी, लक्की मनोहर भाई और प्रभुलाल ने। सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना आरिस, नदीम शमीम, अमन ममता और पूनम कुमारी। राजापेट अमरावती से दिलीप सुरेखा, शुभम सारंग और विराज। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक और मोहम्मद उमर डावर ने। लक्कड़बाजार खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह, रोहन रिया, रणवीर सिंह और संजय पगारे। खंडवा से दुर्गा प्रसाद सेनी, अनीता गौरव, राधिका और दीपिका।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भावन। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी। गीत हमारे प्रस्तुति कविता रावत की है। श्रोताओं नमस्कार, हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आज हम बात करेंगे, विषय है स्वयं को जाने बिना अधूरा है जीवन। इस विषय पर आप सभी की राय जानेंगे और सुनेंगे हमारी पसंद के चंद गीत। तो डायल कीजिए 2660902 और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें आपके फोन कॉल्स का है बेसब्री से इंतजार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते जी।
1: जय बजरंग रेडियो सोता संग बस स्टैंड बंडा वेली से लक्ष्मण को चाय वाले बोल रहे। दीदी चाय पी लो।
0: जी लक्ष्मण रैकवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: कैसी हो दीदी?
0: हम अच्छे हैं। आप कहाँ से बोल रहे
1: बंडा वेली जिला सागर मध्य प्रदेश
0: हैं? अच्छा
1: लक्ष्मण को
0: हाँ
1: चाय वाले।
0: जी, हम बढ़िया हैं। आप सुनाइए, आपकी क्या हाल है, मौसम कैसा है?
1: मौसम तो पानी नहीं गिर रहा है और तो सब ठीक है। पानी गिर जाएगा तो राहत मिल जाएगी। क्या सोयाबीन भी खराब हो रहा है, पानी
0: हाँ
1: नहीं गिर रहा।
0: अच्छा। और आज लक्ष्मण जी, हम जिस विषय पे बात करेंगे वो ये विषय है कि हम सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं, लेकिन कई बार अपने आप को ही नहीं जान पाते। तो इस विषय में आपकी क्या राय है?
1: देखो सबको तो अपन जानते हैं, अपन ही खुद क्या अच्छे चलेंगे तो सब अच्छा रहेगा। हाँ कुछ लोग क्या है गड़बड़ चलते हैं। अच्छे चलो तो अच्छे रहोगे।
0: लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमें अपने ही बारे में नहीं पता होता है कि हम हैं क्या, हमारी क्या ख्वाहिशें, हमें क्या सपने पूरे करना है। ऐसा होता है ना, कई बार हम अपने घर परिवार में ही इतने डूब जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते।
1: हाँ ये तो सही है। क्या बाल बच्चों के संग में जो देख रेख के चक्कर में अपन खुद भूल जाते हैं। हाँ
0: ये बात सही है,
1: तो अपन इतने व्यस्त रहते हैं तो भूल जाते हैं।
0: तो ये ध्यान देना चाहिए या नहीं देना
1: हाँ
0: चाहिए?
1: ये सबको ध्यान देना चाहिए, आपका स्वास्थ्य का भी और खुद का। क्या कुछ करना है, क्या इच्छा है, सब सब करना चाहिए जो इच्छा है।
0: चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपकी राय जानकर बहुत अच्छा लगा।
1: ठीक है
0: नमस्ते।
1: दीदी। नमस्ते दीदी।

0: दिनेश पाल बोल रहा हूँ, रामपुर इमादपुर जिला फतेहपुर।
1: अच्छा दिनेश पाल जी,
0: जी
1: फतेहपुर से।
0: जी जी
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं दीदी।
1: और क्या काम करते हैं?
0: दीदी मैं किराने की दुकान चलाता हूँ और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता जन्म से।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जो दिनेश जी ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं?
0: मेरे परिवार में मेरी दादी हो गई, माता पिता हो गए, भाई भाभी,
1: हाँ
0: बहने हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी।
1: तो दिनेश जी आप है ना, वैसे तो सभी लोग आपका बहुत ख्याल रखते होंगे, लेकिन आप स्वयं का कितना ख्याल रखते हैं? अपने सपनों को, अपनी जो ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरी करने के लिए क्या करते हैं आप?
0: मैं दीदी मैं ये करता हूँ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मेहनत ज्यादा से ज्यादा करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। और शाम सुबह मैं अपने दादी के पास जरूर बैठता हूँ टाइम निकाल के।
1: अच्छा
0: उनसे कुछ प्रेरणा मिलती है मुझे।
1: और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं आप?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: और जैसे यदि आपको कुछ भी खाने में पसंद है तो उस बात पर भी ध्यान देते हैं कि मुझे ये पसंद है तो मुझे ये खाना है, अपनी फैमिली मेंबर्स से बोलना है कि मुझे ये बना कर दो?
0: दीदी सबसे ज्यादा मुझे पनीर पसंद है, मैं जब भी बोलता हूँ मेरे घर के तुरंत ला के बनाते।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आप अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखते होंगे।
0: हाँ जी।
1: चलिए दिनेश जी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।
0: दीदी मैं आपसे नाम जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरा 2 महीने के बाद फोन लगा है आज।
1: मेरा नाम कविता रावत है।
0: अच्छा अच्छा दीदी, प्रोग्राम ये बात आपकी गीत हमारा है ना?
1: जी हाँ।
0: ये इसका प्रसारण कब आएगा?
1: कल आएगा, कल 11 बजे से।
0: अच्छा अच्छा धन्यवाद दीदी
1: जी, नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते। हाँ,
0: आवाज़ तो बहुत जानी पहचानी लग रही है, लग रहा है कई बार बात हुई आपसे।
1: बिल्कुल, नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ, खानपुर जिले से। जी
0: जी
1: मैडम,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनूपपुर।
0: अनूपपुर से।
1: जी जी मैम, अमरकंटक की नगरी,
0: हाँ हाँ जानती हूँ मैं।
1: नर्मदा माँ नर्मदा उद्गम। जी
0: हाँ।
1: मैम,
0: जी और क्या हाल है आपके नीरज जी?
1: बस बढ़िया मैम। बारिश हो नहीं रही, थम गई है बारिश।
0: हाँ बिल्कुल, ये तो मौसम जो है बहुत बुरे हालात हो चुके हैं मौसम के, और उस सब की वजह भी हम सभी हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: है ना? पेड़ों की कटाई और उतने पेड़ लगा ना पाना।
1: जी बिल्कुल,
0: और सड़कों पे भी है ना, अधिकतर सीमेंटेड सड़कें हो चुकी हैं, जिस वजह से है ना जो बारिश का पानी है वो धरती के अंदर जा ही नहीं पा रहा है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: बिल्कुल, सच बात है मैडम, जिस तरह से
0: चलिए
1: धरती
0: खैर,
1: का
0: हम
1: पानी जा रहा
0: अपने
1: है।
0: विषय से भटकेंगे। हमने आज का विषय रखा है कि स्वयं को जाने बिना अधूरा है जीवन, क्योंकि हम दूसरों के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसे क्या पसंद है, उसे उसके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है, चाहे बेटे

0: हो चाहे बेटी हो चाहे पत्नी हो चाहे माता पिता हो, लेकिन कई बार हम अपनी तरफ से बड़े बेरोखे टाइप का व्यवहार हो जाता है। तो आप भी ऐसा ही करते हैं या अपने ऊपर भी पूरा ध्यान देते हैं?
1: नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात को मैं सहमत हूँ कि बच्चों को ख्याल हमेशा रखना चाहिए। नहीं
0: बच्चों का तो रखना चाहिए, पर अपना रख पाते हैं कि नहीं अपन?
1: रखते हैं, तुम अपने आप को, अपने को भी तो ध्यान रखना पड़ता है, अपने स्वास्थ्य को जी,
0: बस
1: और हर
0: हाँ
1: चीज में अपने को ढालना पड़ता है कि अभी क्या करना है, कैसे है, सब वही चीज समय पर एक टाइम टेबल बना के चलना चाहिए, तब तो मनोजीवन अच्छा चलेगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज जी। चलिए, आपसे
1: जी
0: बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो।

0: और ग्राम करकबेल तहसील गोटे गांव।
1: जी। और कमलेश जी क्या हाल है?
0: सकुशल है मैम जी, आपको सुन रहे हैं, आपका आशीर्वाद है,
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं की
1: और
0: शुभकामनाएं हैं।
1: आपका आशीर्वाद अपने ऊपर भी है या नहीं है?
0: अपने आप पर पहले रहता मैम जी, तब कहीं हम दूसरे को आशीर्वाद दे पाते।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हम अपना स्वयं का ध्यान पहले अच्छे से रख पाएंगे, तभी तो हम अपने परिवार का और अपने बाकी लोगों का ध्यान रख पाएंगे।
0: जी, आपका
1: लेकिन
0: ध्यान
1: बहुत
0: रखते
1: सारे
0: हैं।
1: लोग ना, स्पेशली घर की महिलाएं, वो इतनी व्यस्त हो जाती हैं अपने ससुर, सास ससुर, माता पिता, अपने बच्चों, अपने पति का ध्यान रखने में, कि अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं।
0: देखिए मैम जी, आपने ये बात अच्छी कही है, और अधिकतर महिलाएं 100% ही ऐसा करती हैं कि अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं, पूरे परिवार पे ध्यान देती हैं, और इसी इसी में उनका जीवन, मैं कह सकता हूँ, समाप्त हो जाता है।
1: हाँ, लेकिन मैं ये सभी से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले स्वयं से प्यार करो, अपने ऊपर ध्यान दो। जब आप बिल्कुल फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो और अच्छे से आप अपना 100% दे पाएंगे ना अपनी फैमिली को।
0: जी, लेकिन सुनने के बावजूद, कोई समझदार होने के बावजूद, फिर भी एक जिम्मेदारी ज्यों ज्यों बढ़ती है, त्यों त्यों भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं, दूसरे की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ करके जीवन यापन करती हैं मैम।
1: बिल्कुल। लेकिन है ना, जब हम अपने आसपास ऐसी महिलाओं को या अपने किसी भी ऐसे पुरुष सदस्यों को भी ऐसा देखें करते हुए, तो हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो पहले अपने आप पर भी ध्यान दें, है ना?
0: जी,
1: चलिए कमलेश जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। हमारे दूसरे श्रोता भी सोच रहे होंगे कि हमें बात करने का मौका मिले।
0: अच्छा मैम जी, विषय यही है।
1: विषय यही है, स्वयं को जाने बिना अधूरा है जीवन,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना?
0: स्वयं को सभी जानिए, अपने आप को जगाइए, अपने आप को जागरूक कीजिए कि ये जीवन जो है वो दूसरों के लिए तो बना है, लेकिन अपना ध्यान भी रखिए सभी, ये निवेदन।
1: बिल्कुल। चलिए ठीक है
0: जी, मैम जी
1: जी,
0: आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: और कैसी हो नंदिनी?
1: मैं ठीक हूँ। वैसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आज रिकॉर्डिंग कौन सी हो रही है?
0: कौन सी, मतलब कल जो प्रोग्राम आने वाला है 11 बजे से, फोन इन प्रोग्राम, बात आपकी, गीत हमारे।
1: ओ, मैं तो फोन करी सुनने में लगाना
0: अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम बहुत स्पेशल बात है जिस पे हम बात कर रहे हैं ना, वो बहुत खास बात है कि हम
1: अच्छा
0: लोग कई स्वयं को जाने बिना अधूरा है जीवन। हम दूसरों को जानते हैं, दूसरों की पसंद को जानते हैं, पर क्या हम अपनी पसंद पे भी उतना ध्यान देते हैं या नहीं? तुम तो बच्ची हो, तो शायद तुम तो देती भी होगी ध्यान।
1: हम तो देते हैं, अपने आप पे ही देते हैं, क्योंकि हमें जो पसंद है वो अच्छा लगता है। जैसे
0: हाँ ये बात सही है,
1: कि
0: लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, जिम्मेदारियां आती हैं, तो लोग है ना
1: उम्र
0: सिर्फ अपने
1: तो
0: आसपास
1: हाँ
0: के लोगों पे ध्यान देने लगते हैं, अपने ऊपर तरफ से ध्यान देना बंद कर देते हैं।
1: जी,
0: इसीलिए आज हमने ये विषय रखा है कि सबसे पहले अपने आप को, जो सेल्फ लव होता है ना, वो करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, तो आप अपने घर के सारे सदस्यों का भी ध्यान बहुत अच्छे से
1: वैसे
0: रख
1: ना मैं एक
0: सकेंगे।
1: बात बताऊँ तो मुझे ज्यादा कुछ होता नहीं है,
0: हाँ
1: क्योंकि मैं ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेती।
0: हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, लिया भी मत करो।
1: और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। जैसे कि मुझे मूवी देखना पसंद है तो मैं देखती हूँ, मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं देखती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, तो अपना ये शौक ना हमेशा हर उम्र में बनाए रखना।
1: जी जी
0: ठीक है
1: मैम,
0: चलो, अब हम तुमसे बात अब यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को भी बात करनी है ना।
1: गाना कौन सा प्ले करेंगी?
0: देखेंगे, आज तो हमारी पसंद के गीत है, कभी कभी हमारी पसंद के भी सुना करो।
1: वो तो हम सुनते
0: चलो देखो, तुम्हारी हमारी पसंद का गीत तुमको पसंद आता है कि नहीं। ठीक है
1: हैं। बिल्कुल,
0: चलो, ओके।
1: ओके मैम, और थैंक यू।
0: ओके।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी। फोनिंग कार्यक्रम?
0: नहीं, बात आपकी गीत हमारे।
1: हाँ जी, मैंने अंदाज लगाया। मैंने पहली बार मतलब एक ही बार डाल किया, तुरंत लग गया, तुम कार्यक्रम बंद हो गया। हाँ
0: नहीं, कार्यक्रम बंद नहीं हुआ है।
1: जी, मुझे आश्चर्य हो गया। मैं खाना खा के मैंने लगे हाथ, मैंने नंबर निकाल, एक ही बार घंटी चली गई। अरे
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। शुभ नाम
1: अरे
0: बताइए अपना।
1: जी, मैं आपका नीमित सुधा बात कर रहा हूँ, तुलसीराम साहू, खापर खेड़ा, जिला रायसेन।
0: अच्छा, तुलसी
1: आप
0: राम
1: साहू
0: साहू।
1: जी, मैं ये किस्मत में फोन कर के फोन लगाता हूँ, लेकिन बात आप गीत में ज्यादा लग रहा हूँ मेरे को।
0: अच्छा, ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, आप है ना ऐसे ही प्रयास करते रहिए तो आपका फोन करे गीत सुने में भी लगेगा कॉल।
1: उसमें क्या बारी बारी से लगाना पड़ता है कि
0: हाँ
1: दूसरे श्रोताओं को मौका मिले? देखा क्यों भी अच्छा, इसमें हर प्रकार की जानकारी आपके द्वारा मिल जाती है
0: बिल्कुल।
1: किसानों के लिए।
0: हाँ तो तुलसीराम जी, क्या काम करते हैं आप?
1: ये अपन जी एक तो किसानी काम करते हैं
0: अच्छा, और
1: दोनों।

0: परिवार में
1: हाँ
0: कौन
1: दूसरा
0: कौन है?
1: दूसरा मेरा व्यवसाय आपके भोपाल से, मैं
0: हाँ जी,
1: गाड़ी भर कर लाता हूँ सब्जी।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, भोपाल जबलपुर से सब्जी लाता हूँ, थोक मंडी में लगाता हूँ, और अगर बिक भी सही नहीं आई तो अपन मतलब सब्जी की दुकान भी बड़ी लगा लेते हैं। और
0: अच्छा,
1: चारा के कारण पास किसान ही तो उसमें वरना भाई उड़दा बोता है।
0: हाँ तो तुलसीराम जी, हमारा जो आज का विषय है कि स्वयं को जाने बिना जीवन अधूरा है, तो हम सबका ख्याल रखते हैं, सबको जानते हैं, पर क्या अपने आप को पहचान पाते हैं? आप अपने बारे में कितना जानते हैं? आपको क्या पसंद है? आप अपने सपने पूरे कर पाए हैं आज तक अपने कि नहीं?
1: बिल्कुल, सपने हमने पूरे कर लाए, मतलब जो कुछ अपन ने सोचा,
0: हाँ,
1: जैसे किसी के साथ बुरा नहीं करना, अच्छा करना, तो ये अपनी सोच है कि दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खुदना, अगर दूसरे के
0: बिल्कुल।
1: लिए गड्ढा खुदो खुद के लिए मतलब खुदता।
0: तो आप वो काम करते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है?
1: बिल्कुल मिलती है,
0: बहुत अच्छी बात है।
1: वो बात कहना तो नहीं चाहिए, मतलब
0: हाँ
1: कहते हैं कि पुण्य करके कहना नहीं चाहिए, जैसे अपन दान यहाँ से पुण्य किया तेरे
0: हाँ
1: हाथ को पता नहीं चलना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: सही।
1: एक जुबा पर एक बात आ गई तो मैं आपको बोल देता हूँ
0: हाँ
1: कि मुझको खुशी मिलती, मैं हर मंगल करीब
0: हाँ
1: 5-7 साल हो गए, तो आपके बरेली के पास में आप सुना होगा छीन धाम,
0: बहुत ज्यादा सुना है और हम लोग बहुत
1: तो
0: मानते भी हैं।
1: हर हर मंगल को प्रतिदिन को भंडारे होते हैं,
0: हाँ जी,
1: जो लोगों को खुशी हो जाती या नहीं होती वो भंडारे करते हो, तो मैं वहां पर हर मंगल को जाता हूँ,
0: हाँ,
1: वो तो मुझे इसी में खुशी रहती है। बिल्कुल
0: अरे
1: दुनिया
0: वाह,
1: मुझे हर बात की नहीं देती, इसी चीज के अच्छे काम करो
0: बहुत अच्छी
1: मेरे
0: बात
1: से,
0: है।
1: इसी से मुझे सुकून मिलता है जी,
0: चलिए, बहुत
1: अपने
0: अच्छी बात है कि आप
1: सोचने से।
0: अपने सुकून के लिए भी प्रयास करते हैं, है ना? अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं।
1: जी
0: चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा तुलसीराम जी।
1: मेरा फोन लग रहा है, हमारे सभी मित्रों को मेरी जय श्री राम स्वीकार।
0: बिल्कुल, कल 11 बजे आप अपना प्रोग्राम
1: बिल्कुल
0: सुनिएगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक
1: जी,
0: है
1: मैं
0: जी?
1: दुकान पर मंडी पर बैठे बैठे मैं मोबाइल सेट पर कार्यक्रम सुनूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते
1: नमस्ते मैम।
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: आप खुद पहचानती? अच्छा,
0: मैं पहचानती हूँ, लेकिन कई बार एकदम नाम ध्यान में नहीं आ पाता। हमारे बहुत सारे श्रोता
1: नहीं तो
0: ऐसे
1: पहले
0: हैं।
1: पहले आपने नाम बता दिया था हमारा, अब आ गया हो याद। हाँ,
0: हमने पहले बता दिया था आपका नाम।
1: हमने बताया नहीं था और आपने बता दिया था।
0: लेकिन आज मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, माफी चाहती हूँ।
1: अरे मैं ऐसे नहीं बोलो, कागज से बोल रहे, पंडित सत्यनारायण तिवारी जी।
0: जी, हम आवाज से कुछ कुछ समझ रहे थे, लेकिन हमने कहा अगर हम ज्यादा ही सबको नाम से पहचानेंगे तो बाकी श्रोता नाराज ना हो जाए। हाँ
1: ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा
0: जी,
1: नहीं, ऐसा।
0: और क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया है, पानी की प्रतीक्षा में है सभी लोग।
0: हाँ, पानी तो ऐसा लग रहा है रूठ गया जैसे।
1: नहीं, अब आने वाला है आजकल में।
0: लेकिन बताइए, जितनी बारिश हो जाती है जुलाई तक, वो तो बहुत ही कम हुई है इस बार,
1: बिल्कुल, आई इस साल तो 10% बारिश हुई
0: है
1: है।
0: ना? उमस
1: एक
0: ने
1: बार
0: गर्मी अभी भी साथ नहीं छोड़ रही है।
1: अगर लाइट ना हो तो गर्मी परेशान करती है।
0: वही तो।
1: पंखा कूलर के बल पर चल रहे हैं।
0: बिल्कुल। अच्छा शिवनारायण जी, बताइए, हमने आज का जो विषय रखा है कि स्वयं को जाने बिना जीवन अधूरा है, तो आप अपने आप को कितना जानते हैं, अपनी पसंद को कितना महत्व देते हैं, अपने आप को किस प्रकार खुश रखते हैं और स्वस्थ रखते हैं, ये बताइए।
1: मैम, हम तो भगवान में लगे रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं, और बिल्कुल टू टाइम काम करते हैं।
0: अच्छा, तो आपको इससे
1: बिल्कुल
0: आत्मसंतुष्टि मिलती है ऐसा करने से?
1: आत्म संतुष्टि मिलती है, कुछ कार्य हो तो बिल्कुल हम फुर्सत नहीं रहते अपने काम से।
0: और अपने स्वास्थ्य का
1: और
0: कैसे ध्यान रखते हैं आप?
1: स्वास्थ्य पे बिल्कुल टाइम टू टाइम खाना खाना, फिक्स
0: हाँ
1: 9 के 10 के बीच में, चाहे कितना भी कार्य हो, और शाम को 5 और 6 के बीच में, रात्रि में खाना नहीं खाते।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और
0: तो
1: ये तली वगैरह चीजें भी कम खाते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: भोजन व्यवस्था नंबर 1।
0: चलो, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात।
1: जीवन अगर सुरक्षित चाहिए है तो इस प्रकार चलना होगा सभी को।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए,
1: सभी
0: हमसे
1: श्रोताओं से भी यही कहना चाहते हैं, अच्छा खाएं
0: बस, हमारा
1: और दवाइयों का
0: कार्यक्रम,
1: ध्यान रखें।
0: हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे सभी श्रोताओं की जो राय निकल कर आती है, उससे हमारे बाकी के श्रोता भी लाभान्वित होते हैं,
1: जी जी
0: है
1: मैम,
0: ना?
1: बिल्कुल।
0: चलिए, हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: तू ही

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते
1: हाँ दीदी नमस्ते। आपके
0: जी, बोलिए। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर गंज वासुदा से। भागचंद
0: भारचंद।
1: साहू।
0: अच्छा, भागचंद।
1: हाँ भागचंद साहू।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है दीदी। आज फोन करेंगी सुने की रिकॉर्डिंग हुई थी।
0: नहीं, आज है बात आपकी गीत हमारे,
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आपका
0: और
1: विषय क्या है?
0: आज का विषय है कि स्वयं को जाने बिना जीवन अधूरा है। तो आप अपने
1: बिल्कुल
0: ऊपर कितना ध्यान देते हैं, इस विषय में आज हमें थोड़ा सा बताइए।
1: नहीं दीदी, देखो ध्यान तो बिल्कुल जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी देना चाहिए, अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए, और जो अपने वाले हैं दोस्त वगैरह हैं उनका भी ध्यान देना चाहिए। कोई परेशानी में उनका साथ दें, यही
0: बिल्कुल।
1: अपना कर्तव्य है।
0: अपने
1: और
0: सपनों को
1: मेरे
0: पूरा
1: परिवार
0: करना
1: के। हाँ हाँ हाँ बिल्कुल दीदी
0: है ना। तो
1: बिल्कुल।
0: आपको जिन कामों से खुशी मिलती है, आप वो कामों में प्राथमिकता देते हैं या नहीं?
1: नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल खुशी मिलती है जिस काम में उसमें बिल्कुल देते हैं।
0: मतलब ये कहना चाहिए कि आप खुश अपने आप को भी करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो दूसरों को भी खुश रखते हैं हम।
0: दूसरों को हम तभी खुश रख पाएंगे ना जब हम खुश रहेंगे। जब हम अंदर से
1: हाँ
0: दुखी रहेंगे तो हम चाहकर भी सामने वाले को मुस्कुराहट नहीं दे सकते, उसे नहीं हंसा सकते,
1: बिल्कुल दीदी सही बात है, ये
0: है
1: तो
0: ना।
1: सही है।
0: हाँ,
1: जब
0: आपका
1: अपने
0: मन
1: अंदर
0: अंदर से
1: से दुख
0: प्रफुल्लित
1: रहता
0: होना
1: है ना,
0: चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी
0: है ना जी।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: चलिए, हम आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और कल के प्रोग्राम में हमारे बीच जो बातचीत हुई है वो आप सुन सकेंगे, ठीक
1: बिल्कुल
0: है
1: दीदी बिल्कुल
0: जी।
1: जी।
0: नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते नमस्ते।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी। हमारे प्रोग्राम के जरिए सभी ने जाना कि स्वयं को जाने बिना जीवन अधूरा है और इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। हमें उम्मीद है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारे सभी श्रोताओं को कुछ ना कुछ लाभ अवश्य हुआ होगा। तो अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को। फिर मिलते हैं, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। प्रस्तुति थी कविता रावत की। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: पेश है घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देश और विदेश के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली में दो दिवसीय फेथ कॉन्क्लेव 2026 और भारत टेक्स 2026 में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 19 जुलाई को भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक की व्यवस्थाओं के संबंध में कल अपर मुख्य सचिव एवं भोपाल संभागायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के नगरीय विकास को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत 2,753.10 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मॉनसून की रफ्तार धीमी होने से कई जिलों में सामान्य से कम बारिश होने से चिंता बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज बैतूल, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा और मंडला सहित 20 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। इसमें पहला पत्र हमने शामिल किया है धीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे की। राजपुर से ये पत्र मिला है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और उनका परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, धतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास, मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की। सुनना चाहा है मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। असद भोपाली ने गीत लिखा है और राम लक्ष्मण ने धुन बनाई।

अगले गीत की पसंद प्रेम रतन धन पायो फिल्म का, अविशा और विनीत सिंह ने इसे गाया है, इरशाद कामिल के बोल है और हिमेश रेशमिया का संगीत है, सुनना पसंद किया है। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और

करिश्मा कामले की, धमतरी बनियापारा छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा का, फिर श्रीमती सविता, बेबी स्वाति माखीजा, माही, छुटकी, शरद और संपूर्ण माखीजा परिवार, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, पोतरा, मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा और सीमा शारदा दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ से।

अगला गीत है ताल फिल्म से, अनुराधा श्रीराम और सुजाता, सोनू निगम और ए आर रहमान ने इसे गाया है। ए आर रहमान की ही धुन है और गीत लिखा आनंद बख्शी ने। सुनना पसंद किया है प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, गौतम नगर जिला नांदेड़ से ये अपनी पसंद भेजते हैं। अनुरोध करता है और आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश की ताल फिल्म का गीत।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म परदेश से लिया है ये गीत। सोनू निगम ने इसे गाया है, साथ हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की आवाज़ है। आनंद बख्शी के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है। सुनना पसंद किया है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप, केशव और रामनिवास अग्रवाल ने।

परदेस फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
3: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
2: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
3: वही दोपहर 1 बजे।
2: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की पहली कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। कामिनी काय कांतारे का अर्थ है कामिनी काया के जंगल में। ये उपन्यास अवंती के राजा भर्तृहरि के जीवन के विभिन्न रूपों को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। राजा भर्तृहरि, गृहस्थ भर्तृहरि, प्रेमी भर्तृहरि, कवि भर्तृहरि, वैयाकरण भर्तृहरि, योगी भर्तृहरि, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विविध रूप गुणों से संपन्न राजा भर्तृहरि के जीवन पर आधारित ये उपन्यास कामिनी कंचन के बीच से ही नहीं गुजरता, कामिनी काया के जंगल से भी गुजरता है और कथा, इतिहास और मिथक के बल पर एक क्लासिक रचना बन गई है। प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का पहला एपिसोड।

मनुष्य का अतीत एक भयानक पिशाच है जो उसके भविष्य में वर्तमान का पत्थर बनकर पड़ा रहता है। राजा भर्थरि अपने अश्व नीलमणि पर सवार भयानक जंगल से निकल रहे हैं। साएं साएं ध्वनियां आ रही हैं, सन्नाटा है। वन पशुओं की दूर से आती हुई बोलियां सुनाई दे रही हैं। तेज हवाओं के साथ बरसात हो रही है। घोड़े की टापें निकट आती हैं। घोड़े की रास खींचे जाने पर वो हिनहिनाता है। भर्थरी उसे संभालते हैं।

0: गिरती नदी और पतन की दिशा में जाती हुई नारी को रोक पाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्या हो गया है तुझे नीलमणि, क्या हो गया है तुझे? तू अश्व नहीं है, मेरा सखा है, मित्र है मेरा। अवश्य ही कुछ बात है, इतना प्रगति तो तुझे कभी नहीं देखा। आज तो तुझे मेरे आदेश और संकेत भी स्वीकार नहीं है। देख, संभल, मार्ग भी दुर्गम है और वातावरण प्रतिकूल है।
1: अगला डग बढ़ाने से पहले दूर सामने देख लेने के साथ साथ नीचे की भूमि पर दृष्टिपात कर लेना चाहिए राजन। इस विषय में तुम्हारा अश्व पशु होते हुए भी अधिक सावधान है।
0: काल रात्रि के निविड़ अंधकार में निरुद्देश्य भागते दौड़ते मैं कहां आ पहुंचा? ये किसका स्वर है? कौन है यहां? कौन है, कौन है जो मुझे सावधान कर रहा है?
1: भयभीत हो गए राजन?
0: जब तक महाकाल का अनुग्रह है मुझे कोई भय नहीं, किंतु इस निर्जन निशा और दुष्काल में तुम यहां कौन हो? मुझे कैसे पहचान रहे हो और यहां क्या कर रहे हो?
1: आगे मार्ग नहीं है राजन, वन की सूखी नदी में भरपूर बाढ़ है। वर्षा यदि रुक भी गई तो भी प्रातः तक मार्ग नहीं खुल पाएगा। सचमुच ये अवरोध तुम पर महाकाल की कृपा के रूप में आया है।
0: किंतु तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो और इस घने वन में क्या कर रहे हो। तुमने ये भी प्रश्न अनुत्तरित रखा कि मुझे पहचानते कैसे हो।
1: सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता भरतहरि, फिर ये आवश्यक भी नहीं है। सर्वप्रथम और अंतिम प्रश्न है जीवन। इस समय तुम्हारे जीवन पर संकट उपस्थित है। तुम भटकते हुए वृक वन में प्रवेश कर चुके हो भरतहरि। इन झिलमिलाते जुगनुओं को देख रहे हो? ये जुगनू नहीं है और ना ही आकाश से गिरने वाले नक्षत्र खंड। ये यहां दौड़कर आते हुए भेड़ियों की आंखें हैं, रक्त लोलुप आंखें। अभी ये सैकड़ों की संख्या में यहां होंगे और तुम्हें घेर लेंगे।
0: जब तक मेरे हाथ में खड्ग है तब तक भरतहरि को कोई छू नहीं सकता, अपरिचित मित्र। हां, सावधान करने के लिए धन्यवाद।
1: आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, किंतु आत्मदंभ किसी काम नहीं आता। जब भेड़िए चारों तरफ से तुम्हें घेर लेंगे तब कितनों पर तलवार चलाओगे? लगता है तुम अपने भीतर ही किसी संग्राम से विचलित हो, अन्यथा गंतव्य की दिशा और काल की विस्मृति तुम्हें भटका कर यहां नहीं ले आती भरतहरि। राजन शीघ्रता करो, समय नहीं है। ये रक्त पिपासु भेड़ियों की भीड़ कुछ ही क्षणों में तुम्हारे अस्तित्व को उदरस्त कर सकती है और मैं तुम जैसे प्रजावत्सल नरेश की दारुण मृत्यु का साक्षी नहीं बनना चाहता। चलो।
0: लेकिन कहां?
1: समय नहीं है। 5 पग की दूरी पर वो बबूल का विशाल वृक्ष है, चढ़ जाओ उस पर। कांटे तो चुभेंगे लेकिन वही तुम्हारे लिए सुरक्षित आश्रय स्थल है। कांटों की चुभन को अनदेखा करते हुए सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचना आवश्यक है।
0: लेकिन मुझे अपने प्रिय मित्र नीलमणि की चिंता है। नीलमणि का क्या होगा?
1: महाकाल ने चाहा तो वो भी किसी जनवास तक पहुंच जाएगा। प्रकृति ने उसे अलग प्रकार की पशु शक्ति से संपन्न किया है।
2: भेड़िए चारों ओर शोर करने लगते हैं, वर्षा तीव्र होने लगती है। वो आकृति किसी वन मनुष्य

0: पक्षी की भांति अपने स्थान से उछली और भर्तृहरि को लिए गीली किचकिची भूमि पर आ गिरी। लगभग घसीटते हुए राजा को बबूल के तने से सटा दिया और बोली,
1: तुरंत चढ़ चलो, भैरव तुम्हारी रक्षा करें। नीलमणि को मैं ले जा रहा हूं राजन, आप निश्चिंत होकर बबूल के वृक्ष पर चढ़ जाएं। भेड़ियों की आवाजें निकट आ रही हैं, शीघ्रता करें राजन।
0: प्रातःकाल भर्तृहरि बबूल के वृक्ष से उतरते हुए सोचते हैं,
2: आह, व्यतीत हुई वो भयंकर काल रात्रि, प्रभात के शुभ सौंदर्य के साथ फैली हुई वनस्थली में दूर दूर तक हिंस वृक वृंद के चिन्ह अशेष हो चुके हैं। एक साथ दो परिदृश्य, प्रकृति सुंदर है और क्रूर भी। सौंदर्य और क्रूरता परस्पर पूरक हैं, जैसे फूल और कांटे। धन्यवाद बबूल के वृक्ष, मुझे आश्रय देने के लिए, मुझे जीवन प्रदान करने के लिए।
0: भर्तृहरि के कानों में उस अजनबी की वाणी गूंज रही थी,
1: आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, किंतु आत्मदंभ किसी काम नहीं आता। जब भेड़िये चारों तरफ से तुम्हें घेर लेंगे, तब कितनों पर तलवार चलाओगे?
2: मेरा खड्ग कितनों का प्रतिरोध कर पाता? वो तो संख्या में अकूत थे, सैकड़ों, सहस्त्रों, अनगिनत। व्यर्थ हैं ये अस्त्र, ये राजसी परिधान, किरीट, कुंडल और वैभव के आवरण। मैं उज्जैनी का शासक, जहां रोम, यूनान, चीन, सुमेरु के कुबेर समान धनिक वणिक विश्राम और सुरक्षा के लिए राजाज्ञा की बाट जो होते हैं।
0: भर्तृहरि को रह रहकर वो अपरिचित स्मृत हो रहा था। वो बार बार उसे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे।
2: जिस अपरिचित ने मेरे प्राण बचाए हैं, उसके पास शायद एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। राजन्य तो वो था ही नहीं। साक्षी है नीलमणि कि वो साम्राज्य के वैभव पर खड्ग और किरीट के बिना भी हंस सकता था, उपेक्षा से उपहास कर सकता था। वो इनकी तुच्छता को समझता था, जानता था।
0: भर्तृहरि को रह रहकर अपने नीलमणि की याद आ रही थी।
2: लेकिन नीलमणि कहां होगा? मेरा प्रिय नीलमणि, नीलमणि, आश्वस्त रहो मित्र, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है वो अवश्य ही तुम्हारे साथ भी न्याय करेगा। जीवन अभी शेष है, संभव है कि यात्रा के पथ पर हमारी भेंट कहीं हो। अभी तो ये यात्रा है, अनवरत चलना है, चलते रहना है। पथ अनजाना है और लक्ष्य अज्ञात। उज्जैनी पीछे छूट चुकी है, महारानी पिंगला भी, शायद अब वहां ना भी हो। ग्लानिवश उन्होंने विष पीकर आत्महत्या न कर ली हो, बाढ़ में हाराती नदी में कूद न गई हो, अज्ञात वास में चली गई हो, यह भी संभव है। वयसिका उनके साथ होगी। आह वयसिका, वो विगत है, विस्मृत है। आगे आगे ये पथ है, यही सत्य है। हां यही सत्य है। चलो, संभवतः उस दिशा में कोई गांव हो।
0: राजा हंस रहा था। कीचड़ में सना राजत्व, पंख में सनी देह, असहाय अपमानित अकिंचन उज्जैनी नरेश, अभिमान भरी स्मृतियां धूल

0: भूसरित, आज वो राजा भर्तृहरि नहीं रह गया है, न पिंड में और न पहचान में। तभी भर्तृहरि को लगा कि पास में कोई गांव है।
1: संभवतः कोई गांव पास आ रहा है। गायों का रंभाना, कुत्तों का भौंकना स्पष्ट सुनाई दे रहा है।
2: कौन कौन है वहां? बाल सखानंद, तुझे कुछ दिख रहा है? तनिक उस ओर देख तो।
3: भूत जैसा कोई तो है वहां मित्रकंद। कौन है? मुझे तो भय लग रहा है।
4: भूत, भूत, भूत,
0: भूत, हाँ, भूत तो है लेकिन मनुष्य देह में। ये कैसा भूत है? मैंने तो अब तक ऐसा भूत नहीं देखा।
2: लेकिन प्रश्न है, ये यहाँ क्या लेने आया है वृंदा चाची?
5: क्या पता, उसी से पूछो।
0: मैं पूछूं और मैं मरूं? मैं क्यों पूछूं? तुम पूछो, तुम पुरुष हो।
3: सब यहाँ आ जाओ, मरने का भय नहीं रहेगा। पूछो कि यहाँ क्यों आया है। लगता है भूखा प्यासा होगा, उपकार करना होगा। भूत होता तो अब तक चुप नहीं रहता, क्यों चाची?
5: हाँ वृंदा भोजी, तुम ही पूछो उससे, कौन है, कहाँ से आया है। और पुरुषों के भूत भी स्त्रियों को कुछ हानि नहीं पहुंचाते, ऐसा सुना है।
0: हाँ हाँ, हम तो पूछ ही लेंगी। तुम पुरुष जन चौका चूल्हा संभालना, तीर कमान तलवार हमें दे देना और स्वयं टिकुली महावर लगाकर मंगलसूत्र पहनना। हाँ। वृंदा राजा भर्तृहरि के पास पहुंचकर श्रद्धा से निवेदन करती है। देवता, आप कौन हैं? कहां से पधारे हैं? हम अकिंचन ग्रामवासियों पर दया करें, आपके क्रोध के योग्य नहीं हैं हम। अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें प्रभु, दया करें।
1: नहीं देवी, तुम निर्मल जन किसी के प्रति क्या अपराध करोगे? अपना कौन सा परिचय दूं? मैं स्वयं ही भूला और भटका हूं, ज्ञात नहीं कि कहां से चला था और कहां जाना है। ये भी नहीं जानता कि कहां पहुंचा हूं। शरीर को विश्राम की आवश्यकता थी, सो जनरव सुनकर इस ओर चला आया।
0: स्वागत है देवता, पधारे। जितनी सेवा पूजा बन सकेगी हम करेंगे। आप अतिथि हैं, अतिथि हमारे लिए देवता तुल्य है।
6: अब भौजी भूत को गांव में बसाएगी, कैसे सिर झुकाकर चिरोरी कर रही है।
2: अरे चुप करो चाचा, वृंदा चाची बहुत चतुर है। एक ही मंत्र मारकर भूत को वश में कर लिया, अब गांव का कोई अनिष्ट नहीं होगा।
0: यहाँ बिराजे देवता, यहाँ।
1: धन्यवाद देवी, तनिक जल मिलेगा?
0: अवश्य। कंद बेटा, जाकर जल का प्रबंध करो।
1: देवी, इस ग्राम का नाम क्या है?
5: पैठार है इस ग्राम का नाम, निषाद और किरातों का गांव है। इक्का दुक्का शबर भी निवास करते हैं।
1: यहाँ का राजा कौन है?
0: राजा का नाम तो सुना है, भर्तृहरि है, पर कभी देखा नहीं उनको। वैसे सबके राजा तो महाकाल बाबा है।
5: राजा की भली कही, जो अस्त्र शस्त्र के साथ आधम के वही राजा बन बैठता है। कभी राज्य के सैनिक तो कभी दस्युगण। संकुलों से दूर बियावान में बसा ये गांव तो अपने भरोसे है महाराज, ऊपर आकाश और नीचे ये धरती।
0: तभी बालक कंद जल और खाद्य सामग्री लेकर आ जाता है।
5: देवता, ये जल ग्रहण करे, मुंह जुठा ले पहले।
0: भर्तृहरि ने दोने से गुड़खंड मुंह में डाला और वृंदा की ओर देखा तो उसने जलपात्र हाथ में दे दिया। जल शीतल था, राजा तृप्त हुआ। वृंदा ने कहा,
7: प्रभु कृपा बनाए रखे, हमारा ग्राम धन्य हुआ जो आपके चरण यहां पड़े। आशीष दे महाराज कि इस

0: कभी अकाल का फेरा ना हो, सब जन रोग व्याधि से बचे रहे, मैं आपके चरणों में शीश झुकाती हूँ प्रभु।
1: नाना देवी, ये क्या कर रही हैं आप? अपना शीश उठाएं, मैं कोई ऋषि मुनि या देवता नहीं, तुम सबकी ही भांति एक साधारण मनुष्य हूं। तनिक विश्राम करूंगा और अन्यत्र चला जाऊंगा। मैं सदा कामना करूंगा कि ये ग्राम सुखी संपन्न और व्याधि मुक्त रहे।
2: देवता, अब आप शयन करें।

0: क्षण भर का विश्राम मिलते ही मनुष्य अपने आप को सुखी करने में जुट तो जाता है, परंतु सुख एक मारीचिका है, उसे कभी नहीं मिलता।
1: मैं अब यहां से चल पड़ूंगा। केवल इतना बता दें कि कौन से पथ से किस दिशा में प्रस्थान करूं कि सूर्यास्त तक कहीं पहुंच जाऊं।
2: महाराज, जिस ओर से आप आए हैं वहां तो वृकवन है, वहां रात में क्या कोई दिन में भी जाने से डरता है, और भेड़ियों का समूह कभी कभी दिन में भी आक्रमण कर देता है। सैनिक और भेलिये भी वहां से सुरक्षित नहीं निकल पाते। आप रात में यहां से निकल आए, ये आश्चर्यजनक है और अविश्वसनीय है।
1: मैं तो वहां रात में रुका भी था।
2: अद्भुत, पर वहां से तो अकेला निकलना भी संभव नहीं। हिंसक भेड़िए अस्थियों के अवशेष तक नहीं छोड़ते, जीवित रह पाना तो कल्पनातीत है।
1: मैं भी कहां जीवित हूं।
3: तो क्या आप सचमुच प्रेत हैं?
1: नहीं, मैं भी मनुष्य हूं तुम्हारे जैसा।
4: हम तो कोल के रात हैं देवता, हमें मनुष्य कौन कहता है।
1: किरात तो देवाधिदेव शंकर भी हुए हैं।
2: हाँ, वो कथा हम वनवासियों में प्रचलित है, किंतु हमें ठीक से ज्ञात नहीं।
3: आपको तो ज्ञात होगी देवता, पूरी कथा। आज रात्रि यही विश्राम करें, हमसे जो सेवा बन पाएगी कंद मूल फल अर्पित कर देंगे। अनुकंपा करें महाराज।
1: आपके स्नेह में पगा पत्र पुष्प भी अमूल्य है मेरे लिए। बस एकांत वास चाहिए मुझे, यहीं शयन करके रात्रि व्यतीत कर लूंगा और कथा भी सुना दूंगा।
3: रात्रि विश्राम तो ग्राम में ही करना होगा प्रभु, वायु का बहना थमा हुआ है, गो निरंतर बोल रही है, रह रहकर मयूरों के कूकने के स्वर आ रहे हैं, उमस से शरीर चिपचिपा रहा है, वर्षा की संभावना है।
2: देवता, महाकाल ने आपको हम तक एक वरदान के रूप में भेजा है। आपके आगमन से पूर्व अंचल प्रसन्न हुए इंद्र देवता ने नदी नद पोखर तालाब सब पूर दिए, खेतों वन तक सभी का ताप हर लिया, प्यास बुझा दी। अब भूख का भय नहीं, जल है तो अभाव से भी लड़ लेंगे।
0: नंद और कंद दोनों बालक गांव में सभी गलियों में दौड़कर मुनादी करने लगते हैं।
5: सुनो सुनो सुनो, सब जन सुनो, गोधूली मेला आ रही है, अपने घरों और चौपायों को संभाल कर संध्या पाती के बाद यहाँ जुटना, अवधूत महाराज की रात कथा कहेंगे, सबको आना है, सुनो सुनो सुनो।
3: अब आपको संध्या तक पूरा एकांत मिलेगा प्रभु, विश्राम करें या ध्यान, कोई व्यवधान नहीं, तब तक हम ग्रामवासी अपने काम काज निपटा लें। पास ही सदा नीरा पैस्वनी है, आपको भी दिशा मैदान सांध्य कर्म से निवृत्त होना होगा, ये बालक आपकी सेवा में रहेगा, नाम है कंद।
4: जी चाची।
3: प्रणाम करो प्रभु को।
4: प्रणाम प्रभु।
1: मंगल हो वत्स।
3: देवता, ये मात्र बालक नहीं है, बहुत चंचल चपल, जो भी आदेश दे पूरा करेगा, इतना तीव्र धावक है कि कुछ भी चाहे तो अवंती तक जाकर प्रातः तक ले आवेगा। अवंती यहां से 30 कोस दूर है, आप

0: ज्ञात ही होगा कि
1: 30 कोस दूर अवंती, अवंती।
2: अवंती की याद आते ही महाराज के मन में घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं। महाकाल की स्तुति का श्लोक गूंजने लगता है।

0: मेरी प्रियावंती जो 30 कोस पीछे रह गई है, क्या घट रहा होगा वहां महाकाल के उस पवित्र प्रांगण में। महाकाल महाकाल है साक्षी जिसके, क्या होगा, क्या हो रही होगी इस समय हलचल महाआलय में। समाचार सुना गया या नहीं? रानी पिंगला स्वैराचार का भेद खुलने के बाद क्या अब भी जीवित रह पाई होगी? एक स्त्री की पुंशलता के कारण क्या किसी नरेश को प्रजा के पालन रक्षण दायित्व से पलायन कर जाना चाहिए? दंड से, विनय से, सहृदयता से पालन करने वाला नरेश ही प्रजा का पिता होता है। तो क्या मुझे अवंतिका लौट जाना चाहिए, जहां की उमस और व्यग्रता से ऊब कर मैं इतनी दूर चला आया हूं, सब कुछ त्याग कर, वायु वेगी अश्व नीलमणि को साथ लेकर। आह नीलमणि, अब तो वो भी साथ नहीं है, कहां होगा मेरा प्रिय नीलमणि। लेकिन मैं एक पुंश्चली स्त्री का पति, लोगों की दृष्टि का सामना कैसे कर पाऊंगा? भले ही सामने कोई कुछ नहीं कहे, किंतु जानते तो सब हैं भर्तृहरि और पिंगला के बीच घटित इस रहस्य आख्यान को, इस कथा को, लोक की इस कथा को, राजा भर्तृहरि की इस कथा को। आह
1: किस ध्यान में डूबे हैं देवता, मैं इनका परिचय कराना भूल गई। ये है गांव के ग्रामणी, हमारे पितृतुल्य पालक और संरक्षक, इनका नाम वीरभद्र है।
2: वीरभद्र प्रणाम करते हैं।
0: वीरभद्र, महाकाल आपकी रक्षा करें। आपके मुख की शांति बता रही है कि आप अवश्य ही महान आत्मा हैं।
1: आपने उचित कहा देवता, वीरभद्र प्रहर भर रात बीतने पर ग्राम में द्वार द्वार जाकर पूछते हैं कि कोई भूखा तो नहीं, यदि कोई मिलता है तो अपने घर ले जाकर उसे अपने आहार में से आधा खिला देते हैं, भले स्वयं भूखे रह जाएं। बीते संवत्सर में प्राय ही अधपेट सोना पड़ा है इन्हें।
0: साधु साधु वे राजे वीरभद्र।
1: किंतु देवता, आप किन विचारों में निमग्न थे?
0: यूं ही, कभी अवंती, कभी अश्व नीलमणि, कभी महाकाल, मन अस्थिर था, भटक रहा था।
1: अश्व नीलमणि?
0: हां भद्रे, वृक वन में वो मेरे साथ था।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का पहला एपिसोड सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

0: कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार शीलू अस्थाना, भर्तृहरि अरविंद बिलकैया, पुरुष स्वर संजय मानवटकर, वृंदा दीप्ति अग्निहोत्री, बालक नंद अक्षत सोनी, बालक कंद अद्विका दिवाकर, अजनबी शाकिर अली।
1: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की पहली कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देश और विदेश के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली में दो दिवसीय फेथ कॉन्क्लेव और भारत टेक्स 2026 में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में 19 जुलाई को भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक की व्यवस्थाओं के संबंध में कल अपर मुख्य सचिव एवं भोपाल संभागायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से 17 जुलाई को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विषय विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। मानसून की रफ्तार धीमी होने से कई जिलों में सामान्य से कम बारिश होने से चिंता बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज बैतूल, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा और मंडला सहित प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। दिन का 1 बजा है। महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम महिला सभा।

जगन्नाथ के भाद को जगत पसारे हाथ। आज से भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ है। सखियो, आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। महिला सभा कार्यक्रम के माध्यम से संयोगिता है आपके साथ। स्वीकार कीजिए प्यारा सा नमस्कार। जी हाँ सखियो, आज शुभकामनाएं हम उस भारतीय महिला खिलाड़ी को भी देंगे जिसने इस जुलाई माह में ही बहुत बड़ा इतिहास रचा है, क्रांति गौड़। जी हाँ, नई क्रांति के साथ ये महिला युवा खिलाड़ी आगे बढ़ रही है। लॉर्ड्स के मैदान में ये इतिहास रचने वाली पहली महिला बन गई हैं। 5 विकेट लिए और टेस्ट ऑक्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। अभी तक ये कारनामा सिर्फ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी ही करते आए हैं, तो अनंत शुभकामनाएं क्रांति गौड़ के लिए भी। जी हाँ सखियो, सुबह की शुरुआत तो हम चाय के प्याली के साथ कर ही चुके हैं, पर अब दिन का 1 बज चुका है, है ना। सच बताइए, हमारी कितनी सखियों ने सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ शुरुआत की, या वो अभी तक एक के बाद एक काम निपटाने में लगे ताकि फुर्सत मिले और वो फिर कुछ खाएं। देखिए, आप जिम्मेदारी से सारे कार्य निपटा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, पर खाली पेट ये कर रही हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह हम अपने बाहरी त्वचा को सजाते संवारते रखरखाव करते हैं ना, मैं कहूँगी बेहतर तरीके से रखरखाव करते हैं ना, उसी तरह हमारे शरीर के भीतर भी देखभाल की ज़रूरत होती है। यानी शरीर को बाहर और अंदर दोनों से संतुलित रखना बहुत ज़रूरी होता है सखियों। पहले महिलाओं के कार्यक्षेत्र घरों तक सीमित थे, अब पारंपरिक भूमिका में बदलाव आ चुका है, यह हम सभी जानती हैं।

महिलाओं ने बाहर कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। इस बड़े बदलाव के कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव भी पड़ रहा है। ठीक कहा ना मैंने? तो सक्षम बने रहने की कोशिश, आर्थिक स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने वाली हमारी सखियां चुनौतियों को हल भी कर रही हैं, पर इन सब के बीच कहीं ना कहीं दबाव और तनाव भी महसूस कर रही हैं, बढ़ रहा है ये। तो इस समस्या का समाधान क्या हमारी बहनें स्वयं नहीं निकाल सकती? ये प्रश्न इसलिए सखियों की, जब जिम्मेदारी हमारी, काम हमारा, तो स्वास्थ्य भी हमारा ही है। सखियों, अपने कार्य और स्वास्थ्य के बीच संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को हमें अब समझना होगा, क्योंकि हमारी लगातार उम्र भी बढ़ रही है, तभी आप बेहतर तरीके से स्वयं को पेश कर पाएंगी। यानी सुबह से लेकर शाम तक या रात तक कार्य तो निर्धारित हम कर लेती हैं, पर उस बीच में हमारे शरीर को पोषक तत्वों की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। यानी कि हमारी मेहनत को झेलने के लिए हमारे शरीर में उतनी ही ताकत होनी चाहिए। कार्य चाहे बोझा ढोने का हो, कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर चलाने का, दिमाग मशक्कत तो करता है, आंखें देखती तो हैं, हाथ पैर चलते हैं, हिलते डुलते हैं, हड्डियां भी हिलती डुलती हैं, तो भीतर की ऊर्जा भी उतनी ही खर्च होती है सखियों। तो इस खालीपन को, इस ऊर्जा को भरने के लिए, रिक्तता को बेहतर करने के लिए, बेहतर पोषण अगर नहीं मिलेगा तो दिमाग हमारा चकराएगा, आंखें थकने लगेंगी, हड्डियां घिसेंगे और तकलीफ लगातार बढ़ती जाएगी, है ना? इसलिए ध्यान रखिए, आपके कार्य और स्वास्थ्य के बीच संतुलन होना बहुत ज़रूरी है सखियों, है ना? ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस बीच में थोड़ा थोड़ा हम कुछ खाते रहें। जिम्मेदारी बेहतर तरीके से आप खुद निभाएंगी। अपने भोजन में कोई कसर मत छोड़िए। सबसे पहले सुबह का नाश्ता जो आप नज़रअंदाज करती हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। खाली पेट चाय पी लेती हैं, ये भी बहुत गलत बात है। चुनौतियों का सामना अगर करना है, बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो दिमाग और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी, तभी इस साझेदारी में बेहतरी आ पाएगी सखियों, है ना? देखिए, मौसम ने तो बेवफाई कर दी है और उतारू है वो कि अब पानी बहुत दूर चला गया है, है ना? बरसात नहीं हो रही है, पर हम गीत सुनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सुनवाते हैं बहुत प्यारा सा गीत आपको।

जी हाँ सखियो, प्रेमनगर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं मिशन शक्ति योजना के बारे में। जी हाँ सखियो, ये योजना मुख्य रूप से महिलाओं के मनोबल को प्राथमिकता देती है, बढ़ाती है, जिससे महिलाएं समाज में निडर होकर अपना अस्तित्व स्वयं सुरक्षित कर पाएं। स्वयं कौशल विकास से जुड़कर क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, महिला श्रम बल को प्रोत्साहित करती है मिशन शक्ति योजना, आत्मनिर्भर बना रही है हमारी सखियों को। हिंसा पीड़ित जो महिलाएं हैं उनके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए गुणवत्ता तंत्र भी स्थापित करती है योजना। भारत सरकार द्वारा संचालित ये योजना महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया एकीकृत अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वाधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत आती है इस अम्ब्रेला के। अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास की वेबसाइट आप जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको वार्ता। वरिष्ठ नागरिक अवकाश, अवसाद या अवसान, सुनिए।

वरिष्ठ नागरिक का अवकाश, अवसाद या अवसान। दास साहब के मकान के सामने जब भी निकली, उनके किचन गार्डन में मौसमी फलों, फूलों और सब्जियों की बहार बरकरार रही। मैंने उनसे कहा, कितनी बड़ी पोस्ट पर रहे हैं, खुरपी चलाना कैसे भाग गया? कहने लगे, काम तो काम है, पहले कलम चलाते थे, अब खुरपी। ऑफिस 10 से 5 हुआ करता था, अब पाली बदल गई। सुबह शाम 4 घंटे बगीचे में, कुछ पढ़ने में, 2 घंटे घूमने में, तो 8 घंटे की ड्यूटी कर ही लेता हूँ। बस ललक होनी चाहिए। रिटायर होने या वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद 3 वर्षों में ही उनका घर सब्जी, फलों और फूलों से भर गया। बाजार में सविता मामी मिल गई। मैंने उलाहना दिया, क्या मामी, अब तो बहुएं आ गईं, भाई साहब भी सेवानिवृत्त हो गए, फिर आप अरसे बाद मिल रही हैं। बोली, सुख तो बहुत है, परंतु सुख से उपजे दुख भी बहुत तो हैं। नेहा ससुराल चली गई, नई नई बहुएं घर में छोटा पड़ने लगा। ये दिन भर घर में रहते हैं, हर काम में मीन मेक निकालना इनकी पुरानी आदत है। अब दूसरों का गुस्सा मुझ पर बरस कर निकालते हैं। घर के माहौल में अभी तक खुद को नहीं ढाल पाए, दादा बन गए पर अफसरी अब तक नहीं गई। नाती पोतों से भी अधीनस्थों जैसा व्यवहार करते हैं। खैर, तुम अपना सुनाओ, कहते हुए उन्होंने बात बदल दी, लेकिन चेहरे के अवसाद स्थिर ही बने रहे। नायक साहब के यहाँ गई, वहाँ का नजारा ही कुछ और था। नायक साहब किचन से हाथ धोकर निकले। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी ने बरसों मेरी और मेरे बच्चों की सेवा की है, मैं अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहा, 3 बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर ब्याह किया, 3 अच्छे पदों पर हैं, सुखी हैं। अब मेरी पत्नी अस्वस्थ है, उठ बैठ नहीं सकती, अब मेरी पारी है कि उम्र के इस पड़ाव पर मैं उन्हें आराम दूं। मैं खुद खाना बनाता हूं, 6 घंटे घर के कार्यों में, 4 घंटे पढ़ने में, 2 घंटे घूमने में निकल जाते हैं, यही मेरी अच्छी सेहत का राज है। फिर सुख दुख की विभाजन रेखा तो हम ही खींचते हैं, बेटे बहू के पास रहकर हम उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते, बाद में तो उनके साथ रहना ही है। ओल्ड एज को कौन कैसे लेता है, यह तो व्यक्तित्व परिवेश पर निर्भर है। फिर भी उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, डूबते सूरज को देखते ही दरवाजे बंद होने लगते हैं, सूर्य का डूबना उसकी नियति है। सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त या 60-65 की आयु से अधिक का जीवन तीसरे पड़ाव की शुरुआत है, जिसे आना ही है। वह मानव ऊर्जा को पंगु बनाती है, तो तनावों की अविरल धारा भी है। सेवानिवृत्ति के बाद के तनावों से गुजरना आसान नहीं। जहाँ तक एक ओर महत्व घट जाने की पीड़ा है, मन में मन सताती है, तो दूसरी ओर समय काटने की समस्या सुरसा जैसा

मुंह बाए खड़ी रहती है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक, भावनात्मक परिवर्तनों को सामना भी करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच, प्रतिक्रिया, उनके अपने विचार, व्यक्तित्व, घरेलू बाह्य वातावरण के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन निराशा तो सभी को घेरे रहती है। जिस परिवार को खून पसीने की कमाई से सींचा, वही थका हारा समझने लगता है। कार्यालयों, संस्थानों, दुकानों में वर्षों निष्ठा से कार्य किया, वो ही अपरिचित बन जाता है। सामाजिक संबंध जो अब तक चाहत एवं आवश्यकता से भरे थे, उन्हीं के साथ एक दो बार उठ बैठने से कामकाजी लोग समझने लगते हैं, अब ये तो ओल्ड हो गए, ये तो इनका तो बुढ़ापा आ गया, अपना समय काटने हमारे पास चले आते हैं। 50 वर्षों के बाद शारीरिक शिथिलता आने लगती है, तब वेदों ने जीवन के इस तीसरे पड़ाव को वानप्रस्थ का आदेश दिया, जो आज भी अटल सत्य है। वैसे भी 50 के बाद 51, 52, 53 में वन जुड़ा हुआ है, मतलब वानप्रस्थ आश्रम की ओर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, समस्याएं थोड़ा कम होगी। बस उम्र शब्द और अंदाज बदल गए। सरकारी कर्मचारी की उम्र के पड़ाव, इस पड़ाव पर अवकाश ग्रहण करना या कम उम्र में अवकाश ले लेना बड़ा कष्टदायी होता है। वैसे ही आम नागरिक जो काम नहीं कर पाते, अपनी दुकानों, अपना धंधा, बिजनेस नहीं कर पाते, उनको भी घर में बैठना पड़ता है। आज जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुए हैं। उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा खान पान, रहन सहन से व्यक्ति की औसत आयु में इजाफा हुआ है। नौकरी करने की कोई निश्चित उम्र तो नहीं होती, अपने अपने कार्यों में दक्ष और अनुभवी हो जाते हैं, तब इन महारथियों का रिटायर होना मानव ऊर्जा की बर्बादी है। उनकी दक्षता और अनुभव एक झटके में समाप्त हो जाते हैं, उनके अनुभव की उपयोगिता नहीं के बराबर होती है। मुश्किल से 1 या 2% व्यक्ति ही पुनः नौकरी कर पाते हैं, अन्यथा घर, रिश्तेदार, समाज ही उनकी गतिविधियों का केंद्र बन जाते हैं। मैं आमदनी के स्रोत भी कम होते हैं, सुविधाएं कम हो जाती हैं। छोटे बड़े सभी नागरिक अपने ओहदे से उतरकर सामान्य पेंशनर की परिधि में आ जाते हैं। कैसी विडंबना है कि जिस जन्मदिन को वर्षों से हंसी खुशी मनाते आए हैं, उसी दिन हम सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, या वरिष्ठ नागरिक उस दिन से वरिष्ठता प्राप्त कर बूढ़े कहलाने लगते हैं। जीवन का दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। अवकाश प्राप्त जिंदगी कैसे बीतती है, यह पूरी तरह व्यक्ति पर निर्भर है। आमदनी कम होने से आवश्यकताएं कितना पैर फैलाती हैं, शारीरिक शक्ति कहाँ तक साथ देती है। सच तो यह है कि ये ओल्ड एज जीवन की दिशा ही बदल देती है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। ओल्ड एज से उपजी मानसिक त्रासदी को जीवन संगनी से अधिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वो भी तो वरिष्ठ नागरिक हो गई है। इस पड़ाव तक आते आते पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण होने को होती है, परिवेश भी बदल जाते हैं, बच्चों से पीढ़ीगत और अंतर विचारों में मतभेद उत्पन्न करते हैं, वर्तमान में समझौता ना कर पाना, भूतकाल की रट लगाए रहना, जिद्दी होना, शयन शक्ति में कमी आना, फिर होती है उपेक्षा की शुरुआत। अपने उपेक्षाओं, तनावों का गुस्सा अक्सर पत्नी पर ही उतरता है। घर ऑफिस तो नहीं, यहाँ पत्नी का ही एकाधिकार रहा। उनका अपने काम करने का ढंग, थोड़ा वक्त तो लगता है बदलने में। छोटे होते परिवारों का एक एक पल महत्व का होने लगा है। अब पारिवारिक सामंजस्य पहले जैसा आसान नहीं रहा। फिर भी रिश्तेदारों से घिरे व्यक्ति अपने आप को अधिक सुरक्षित समझते हैं और महसूस करते हैं। यदि व्यक्ति यह सोचे कि अब उसका कुछ काम नहीं है, तो उम्र का प्रभाव उस पर अधिक और शीघ्रता से होने लगता है। अपने को व्यस्त रखने के 1000 उपाय हैं, बस चाहिए तो केवल इच्छा शक्ति। उज्जवल चरित्र, मिलनसार व्यक्तित्व किसी भी उम्र में अपना प्रभाव कायम रखते हैं। जिनकी रुचियां एवं हॉबी समय भाव के कारण परिष्कृत ना हो पाई हो, उनके लिए ये जीवन वरदान सिद्ध है। आर्थिक संपन्नता अपने साथ अनेक सुख लाती है, तो आर्थिक विपन्नता दुखों का पारावार भी लेकर आती है। अच्छी मित्र मंडली अवकाश से विचलित नहीं होने देती, फिर समयानुसार चलने से मन भी शांत रहता है। ओल्ड एज के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि अपना पैसा बचाकर रखें, स्वास्थ्य ठीक रखें। यदि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो दूसरे लोग भी हमारे पास आएंगे, और एक समय तो जाना ही हमको। मेरे सभी साथी करीब 80 और 95 तक के हैं, मेरे हस्बैंड ही 88 साल के हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, दूसरों से हिल मिल कर रहते हैं, खाने का बहुत ध्यान रखते हैं कि कैसा खाना खाया जाए, कैसे रहने से हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे बच्चे खुश रहेंगे हमसे।

क्योंकि उनको भी फिक्र रहती है कि हम कैसे रह रहे हैं। तो हम यदि अच्छे से रहेंगे, हम सामाजिक वातावरण से बदल के मिलजुल कर दोस्तों के साथ रहें, तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से जा सकती है। निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, बुढ़ापा तो सबका आना है, सबके लिए है। वृद्धाश्रम का चलन हो गया है, लेकिन बहुत दुखदायी, अपने माता पिता को खुद ही वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं, ये प्रथा बहुत गलत है। बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना और वहीं आंसू बहाना, ये बहुत कष्टदायक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा सामाजिक परिवेश थोड़ा बदले, बच्चे भी बदलें और सबसे ज्यादा बदलें वरिष्ठ नागरिक। जो बुढ़ापा आता है वो उसे आना तो है, हम कैसे लेते हैं ये जरूरी है। क्रियाशीलता को बनाए रखें, नियमित व्यायाम पर जोर दिया है और वहां पे एक अच्छी कंपनी मिलती है। मुझे स्लिप डिस्क थी उसमें आराम हुआ, बांह दर्द होती उसमें आराम हुआ, एक अच्छा वहां पे ग्रुप मिला, उससे एक मन खुश भी होता है, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथी सब 4 से 6 किलोमीटर घूमते हैं और सभी स्वस्थ हैं, सभी अपने अपने में मस्त हैं और सभी एक दूसरे से मिलते हैं, हम लोग आते जाते हैं। आज समाज सेवा, पर्यटन, देश प्रदेश की सैर, पारिवारिक सामाजिक संबंधों का निर्वाह के लिए उपयुक्त तो उम्र है। अब मेरा ये कहना है, बुढ़ापा तो आना है और ये अटल सत्य है, इसको बहुत अच्छे से बनाएं जिससे हमारे बच्चे भी खुश रहें, आध्यात्म में जाएं, कुछ अपने प्रति ज्यादा सतर्क रहें, को वजन नहीं समझें, भार नहीं समझें। यदि हम उसको अच्छे से लेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत आसानी से कट जाएगी और हम ज्यादा खुशहाल रहेंगे, आसपास के वातावरण को भी हम खुशहाल रखेंगे, आने वाले पीढ़ी को भी हम कुछ देकर जाएंगे कि हम खुश थे, आप भी खुश रहिए और सब पूरा वातावरण को खुश।

सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूप लावण्य की। जी हाँ, उम्र से पहले सफ़ेद होते बाल यानी चिंता का विषय, और हमारी खूबसूरती में कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी पर सफ़ेद होते बाल सूट नहीं करते, है ना। दूसरा के बालों की तंदुरुस्ती भी घट रही है, ये चिंता तो हमें सताती है। तो क्या करें कि सफ़ेद बाल होना बंद हों। ध्यान रखिए सखियों, बालों के पोषण के लिए बायोटिन यानी कि विटामिन B7 सबसे प्रमुख तत्व होता है, जो बालों की ग्रोथ को सामान्य रखता है और मजबूती भी देता है। जिस तरह हम कह रहे हैं कि सफ़ेद बाल उम्र से पहले हो रहे हैं, वो नहीं होने देता है। साथ ही आयरन जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, विटामिन ए स्कैल्फ में सीबम नाम का एक प्राकृतिक तेल बनाता है जो बालों को नमी के साथ साथ चमक प्रदान करता है, जिससे बाल सफ़ेद कम होते हैं। सफ़ेद बाल यानी कि मेलेनिन का उत्पादन कम हो रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप आहार और कुछ घरेलू उपचार से इसे बढ़ा सकती हैं। एक छोटा सा नुस्खा आपको बता रही हूँ। आंवला और कलौंजी को लोहे की कढ़ाई चढ़ाएं गैस पर, तिल का या नारियल तेल लें, उसमें खूब अच्छी तरह से दोनों सामग्री को पकाएं और छान लें, छान कर रख लें, और इस तेल से, प्राकृतिक तेल से, हफ्ते में 2 बार बालों पर हल्के हाथों से मालिश आप करती रहें। प्याज का रस भी बहुत बहुत बहुत उपयोगी होता है। जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, प्याज को घसें और उसका रस जो निकलता है वो लगाएं, और प्याज का तेल भी बाज़ार में उपलब्ध है, वो मंगा कर आप लगा सकती हैं। तांबे से भरपूर खाद्य पदार्थ सफ़ेद होते बालों को कम करते हैं सखियों। बादाम, अंडा, काजू और खट्टे फल आहार में आप जरूर लें, बालों पर मालिश करती रहें तो सफेद बाल होना कम हो जाएंगे। अब आपको सुनवाते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत, फिर बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे।

सखियो, इस प्यारे से गीत के बाद बात करेंगे फैमिली फिटनेस की। जी हाँ, मानसून का मौसम, हरियाली बिखेर रहा है, हमारे आंखों को सुकून भी मिल रहा है जिससे ताजगी भी बनी हुई है। पर ध्यान रखिए, पानी का मटमैला संकेत है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही मच्छर मक्खियों का बढ़ना स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ रहा है। फंगस बढ़ने की संभावना से खाद्य पदार्थों की समस्या भी बढ़ रही है। इन सभी कारणों से पेट का संक्रमण, त्वचा का संक्रमण, मलेरिया, डायरिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोशिश करें कि साफ पानी पिएं। उबला पानी सबसे बेहतर और फायदेमंद उपाय होता है मानसून के मौसम में, वो पानी आप पिए। छोटे कीट पतंगों और मच्छर मक्खियों से भी बचाव जरूरी है क्योंकि त्वचा पर ये इन्फेक्शन फैला देते हैं। साथ ही ताज़ा भोजन ग्रहण करें, बेहतर हो कि बहुत देर तक रखा हुआ भोजन जो है वो ना खाएं क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा पेट खराब होता है सखियो। और आज कैटरीना कैफ जो अभिनेत्री हैं उनका जन्मदिन है, तो उन्हीं पर फिल्माया ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

सखियों, बातें तो बहुत सारी करने का मन करता है पर समय हमारा आधे घंटे का ही निश्चित है। कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर प्रीति झड़ीदार का। कार्यक्रम से महिला सभा से अनुमति ले रही हूँ। संयोगिता जोशी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यारा सा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला सभा कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

इस देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे अशोक कुमार झारिया के गाए लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए दीप्ति मिश्रा के गाए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है। आरंभ कर रहे हैं ब्रह्मानंद की इस रचना के साथ।

0: तुलसीदास की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे दीप्ति मिश्रा के गाए कुछ गीत और भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। और अब समय है एक अंतराल का।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में साहिर का लिखा यह गीत था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। फिल्म थी आ गले लग जा। लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म आरोप का गीत सुनिए। माया गोविंद ने गीत लिखा है, संगीत बनाई है भूपेन हजारिका ने।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म आरोप के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे वे जींद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे चंडीगढ़ पहुंचकर 6,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। फिर प्रधानमंत्री जालंधर जाएंगे, जहां वे 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज नई दिल्ली के दौरे पर हैं। वे यहां भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद कर प्रदेश में निवेश के नए अवसर तलाश रहे हैं। डॉ यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का निरीक्षण भी करेंगे। यहां राज्य की औद्योगिक नीतियों और धार जिले में विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क को प्रदर्शित किया गया है। कटनी जिले की सलीमनाबाद वाटर टनल की खुदाई पूरी हो गई है। यह करीब 12 किलोमीटर लंबी टनल देश की सबसे लंबी वाटर टनल मानी जा रही है। इसके जरिए नर्मदा का पानी बिना पंप के सोन बेसिन तक पहुंचेगा। इस परियोजना से कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा जिलों की करीब 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा और कटनी शहर की पेयजल की जरूरत भी पूरी होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से अशोकनगर जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दोपहर बाद वे आजीविका मिशन की स्वसहायता समूह की महिलाओं से संवाद करेंगे। शाम 5:45 पर वे सेमरखेड़ी पहुंचकर विद्युत सबस्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद करीब 9 बजे तक वे अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रेल मंत्रालय ने IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया है। इसका मकसद टिकट बुकिंग को आसान बनाना है। नए वर्जन में कैप्चा और पॉपअप हटा दिए गए हैं। अब यात्री सभी श्रेणियों में सीट की उपलब्धता देख सकेंगे। टिकट बुक करने के लिए सभी जरूरी स्टेप्स भी कम कर दिए गए हैं। वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी भी सेव रखेगी। केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश की कई शहरी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 2,753 करोड़ रुपए है, जिसमें इंदौर की जल प्रदाय योजना, जबलपुर की सीवरेज परियोजना और रीवा की जल प्रदाय योजना शामिल है। इसके अलावा उज्जैन में 11 मंदिर परिसरों के विकास और कॉरिडोर निर्माण की बड़ी परियोजना को भी मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग कल एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ये कार्यशाला भोपाल के MPCST विज्ञान भवन में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इसका मुख्य विषय पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में बाल कल्याण समितियों

भूमिका है। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त और पीड़ित बच्चों की कानूनी सहायता और पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत बनाना है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में पिछले सप्ताह से भारी बारिश न होने से कई जिलों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। जबलपुर सहित प्रदेश के 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा असर पूर्वी हिस्से जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में 11% कम बारिश हुई है। आज इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जुलाई से नया मौसमी सिस्टम सक्रिय होने पर तेज बारिश फिर शुरू हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के वैश्विक साहित्यिक मंच आईना के साथ आयाम जीवन के विषय पर आयोजित साहित्यिक अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। शिवपुरी में कॉलेज लेवल काउंसलिंग के तहत अब छात्र 31 जुलाई तक दाखिला ले सकेंगे। पन्ना में आज से 15 दिवसीय भव्य श्रीमद्भागवत महापुराण का शुभारंभ हो गया है और नीमच के ग्राम पालसोड़ा में आज जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं को निराकृत करने के लिए जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। इस समय दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त GDP लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया, और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने, यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
4: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं जिससे यह दुनिया की

0: शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान

0: इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं शामिल कर रहे हैं पहला पत्र कोटवा नारायणपुर से, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की, दुबिहा नेवदा गाजीपुर प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय की, शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन और बिट्टू भाई की, साजिदा रानी और हिना कौसर की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की। सुनना चाहा है मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत, जिसे आशा भोसले ने गाया है, मजरूह के बोल हैं, आर डी बर्मन ने धुन बनाई।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर की, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश अरसलान यूनुस तड़वी की, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ तड़वी खान, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज बिटिया, रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और तड़वी परिवार के सदस्य, ग्राम महसवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल और अजय खिरोड़कर की, छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो की, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया की, इचकलंजी महाराष्ट्र से बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितांशु हजारे की, अनिल नेहा फड़ से सीमा, सबीहा फलक, पूजा तेनेवा और सुषमा सलीमा, गुमास्ता नगर 71 गली नंबर इंदौर से अपनी पसंद भेजते हैं। रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार का गाया, आर डी बर्मन ने धुन बनाई, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत।

अगले गीत के लिए पसंद भेजी है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, मोनिका प्रोनोनिका और उत्कर्ष नेताम ने। ये चिट्ठी है कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई रीमाताई डोंगर दिवे, दीक्षा और राहुल डिंगर दिवे की। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या करिश्मा कामले की। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां अपनी पसंद भेजते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शाताब खत्री। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार। शोर फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है लता मंगेशकर और मुकेश का गायक। इंद्रजीत सिंह तुलसी ने गीत लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारे।

अगले गीत के लिए पसंद भेजी है बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपुर डॉडी लोहारा बलोद से कमलेश जयपुरिया टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप पिंकी और प्रमिला प्रदीप जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम यादव मोहल्ला सनावद मध्यप्रदेश से दिलीप मलाका योगेश मलाका सुनीता मलाकार और मुस्कान ने जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती पूजा जास्मीन और प्रयागराज भट्ट ने हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से डगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जेएस नायक शोभा नायक और समस्त डागला परिवार सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीएडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा नवनीत राय डॉक्टर अमरदीप अनिल शर्मा कालका से शुभचंद बजाज बिट्टा बजाज और साहिल ने दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन नईमा बेगम कासिम अली और नदीम अली मिस्टर इंडिया फिल्म का यह गीत किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति का गाया जावेद अख्तर ने गीत लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।

कुछ और पसंद शामिल की है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की। कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली की। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हिमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया की।

0: किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति के गाए फिल्म मिस्टर इंडिया के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे वे जींद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली के दौरे पर हैं। वे यहाँ भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद कर प्रदेश में निवेश के नए अवसर तलाश रहे हैं। कटनी जिले की सलीमनाबाद वाटर टनल की खुदाई पूरी हो गई है। यह करीब 12 किलोमीटर लंबी टनल देश की पहली सबसे लंबी वाटर टनल मानी जा रही है। इसके जरिए नर्मदा का पानी बिना पंप के सोन बेसिन तक पहुंचेगा। रेल मंत्रालय ने IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया है, जिसका मकसद टिकट बुकिंग को आसान बनाना है। नए वर्जन में कैप्चा और पॉपअप्स हटा दिए गए हैं। अब यात्री सभी श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता देख सकेंगे। केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश की कई शहरी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 2,753 करोड़ रुपए है, जिसमें इंदौर की जल प्रदाय योजना, रीवा की जल प्रदाय योजना और जबलपुर की सीवरेज परियोजना शामिल है। और मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग कल एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसका विषय पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में बाल कल्याण समितियों की भूमिका है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांधिकालीन सभा के मुख्य आकर्षण।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। सुर्खियों में ये कार्यक्रम रात्रि 8:00 प्रसारित करेंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट सुनिएगा रात्रि 8:15 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागरजनी रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे। इसमें आप सुनेंगे वसुंधरा कुमकली का ख्याल गायन, राग होगा भोपाली। आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात्रि 10:00 आप सुनेंगे। आपको पुनः बता दें रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के अलावा आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण होगा, जिसमें आप सुनेंगे खाद्य जनित रोग कारण और रोकथाम विषय पर आकांक्षा पांडे से की गई भेंटवार्ता। ये थी जानकारी सांध्यकालीन प्रसारण के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार है अशोक कुमार झारिया। आरंभ में ये लोक भजन।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त मार्गेशा। तो दोस्तों, आज है गुरुवार का दिन और आज कई अलग अलग विषयों पर आपसे बातचीत तो होगी ही, लेकिन उसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें हम युवाओं के जीवन में बदलाव ला सकती है, कैसी छोटी छोटी बातें हम युवाओं को बहुत ज्यादा अफेक्ट भी करती है, खास करके हमारे माइंडसेट को, हमारी सोच को और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे इमोशंस को भी। वैसे दोस्तों, हम आपसे रोज़ अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, अलग अलग आपको जानकारियाँ भी देते हैं। तो क्या आप कभी उन जानकारी, उन विषयों के बारे में हमारे कार्यक्रम के बाद सोचते हैं? और अगर नहीं सोचते हैं तो उसकी अब आदत डाल लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको जानकारी देने का यही है कि आप और भी ज़्यादा क्यूरियस बने, और भी उस विषय में जानें और खुद को और आपके आस पास लोगों को भी उसके विषय में जानकार बनाएं। याद है दोस्तों, जब हम स्कूल में हुआ करते थे तब टीचर हमें कहती थी कि बच्चों, ये जो लेसन हमने पढ़ा है ना, इसको बस एक बार घर पर जाके रीड कर लेना, या इसे एक बार घर पर जाके लिख कर देख लेना, देखना सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये जो मेथड है ना कभी ऐसा लगता है कि हमें वापस हमारी जिंदगी में लानी होगी, कि हम सरफेस लेवल पे तो सब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन आखिर उसका मतलब क्या है और वो हमें ज्यादा समय तक याद रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले पाता। इसलिए जब भी आप कुछ नया सीखते हैं या जब भी आपको कुछ नया सिखाया जाता है, तब उसे घर पे आके या जब भी आपको समय मिले तो उसे या तो एक बार लिख कर देख लीजिए या उसे एक बार पढ़कर देख लीजिए, देखिएगा वो बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घर कर जाएगी। चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी और कार्यक्रम की शुरुआत में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि हम आपसे दो प्रश्न पूछते हैं और ये सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं, ये आपको जिंदगी में देखिएगा कभी न कभी काम जरूर आएंगे। तो आज भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तो आज की कड़ी का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन कहां पर है, और दूसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडिया में किस जनरल ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ के रखेंगे। आज का सफर तो अभी बस शुरू हुआ है, तो चलिए फिर आज के सफर की बड़ी ही खूबसूरत शुरुआत के साथ हम भी आज सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जैसे कहा था कि बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हम सभी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा युवाओं पर बहुत ज़्यादा अपना असर दिखाती है। और वैसी ही कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी माइंडफुलनेस, इस पर भी कहीं ना कहीं अपना अफेक्ट डालती है। प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्टिव होना, यानी कि ज़्यादा उत्पादक हम कैसे बने, ये भी कहीं ना कहीं इन आदतों, इन चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में हम ऐसे कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें करें, ऐसे क्या बदलाव लाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बने और माइंडफुल भी बने। दोस्तों, आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप दिन भर काम करते हैं और शाम को घर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगता है कि यार इतना काम किया बट कुछ काम तो हुआ ही नहीं। मतलब कि इतना काम करने के बावजूद भी रिजल्ट तो शायद कुछ आया ही नहीं। ये हम सबके साथ होता है दोस्तों, और ऐसा होने से ना अगली बार उतना मन लगाकर काम करने का मन भी नहीं करता, यानी कि प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई, इंटरेस्ट भी कम हो गया। इसीलिए प्रोडक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएं कैसे, या अपना उत्पादकता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले जानना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि हम अपनी समय और ऊर्जा को इस तरह से इस्तेमाल करें जिससे हमें असली फ़ायदा हो। सिर्फ ज़्यादा काम करना ही प्रोडक्टिविटी नहीं होता दोस्तों, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपनी ज़िंदगी में, तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? बहुत आसान है दोस्तों। देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं या अपना दिन शुरू करते हैं,

उससे कुछ 4 या 5 मिनट अपने पास निकालिए और पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको आज कितना कितना काम खत्म करना है और कितनी मात्रा में खत्म कर लेना है। जैसे अगर कोई कॉलेज जाता है तो हो सकता है उसके लिए पढ़ाई का कुछ काम जरूरी हो सकता है उसका कुछ सबमिशन का काम जरूरी हो, तो प्रायोरिटाइज कर दें कि आज आपको क्या क्या काम खत्म करने हैं। इसी के साथ दोस्तों सबसे अच्छा ये भी हो सकता है कि आप रात को सोने से पहले ही एक दिन पहले ही अपनी टू डू लिस्ट अगले दिन की बना के रख लें, ताकि आप जैसे ही सुबह उठेंगे वैसे ही आपको लगेगा कि चलो अपने पास लिस्ट तो पहले से ही तैयार है और आपका माइंड और आपकी बॉडी अपने आप ही उस डायरेक्शन में काम करने लगेगी। अब दोस्तों इसी के साथ एक और मेथड है जिसका कई बार हम युववाणी में जिक्र भी कर चुके हैं, जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। दोस्तों ये टेक्निक पूरी दुनिया भर में सराही जाती है और हर कोई इसे इफेक्टिव भी मानता है। कई सारे लोग जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स देकर क्लियर करके कुछ बड़े बन पाए हैं, साइंटिस्ट बने हैं, उनने भी इस जो टेक्निक है इस मेथड पर जोर डाला है। इस टेक्निक को दोस्तों कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। तो इस टेक्निक के अंतर्गत करना क्या होता है कि 25 मिनट तक आपको काम करना है, उसके बाद आपको 5 मिनट के ब्रेक लेने हैं और ऐसा आप कम से कम 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप काम करते करते थकेंगे भी नहीं, आपका मन लगा रहेगा, आपका इंटरेस्ट कम नहीं होगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आप एग्जॉस्टेड फील नहीं करेंगे। हम कई बार जब एक काम करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि काम करते करने बैठे हैं तो पूरा एक बार में ख़त्म कर देते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी आपका माइंड पूरा लेथार्जिक फील करने लगता है, ना ही आपका उस काम करने में मन लगता है और जो आपने टारगेट सेट किया था कि हमें 2 या 3 घंटे में जितनी भी देर में वो काम खत्म करना है, वो काम कभी भी उतनी देर में खत्म नहीं होता और इसके कारण हमें स्ट्रेस आता है, हम पैनिक करने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी वहीं पर गिरना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का पहला स्टेप शुरू होता है कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। पहले से ही अगर आपकी प्रायोरिटी सेट हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से काम में कितना समय देना है। उसके बाद जब भी आप काम करने बैठें, जो भी काम करने बैठें, उसमें ब्रेक लेना ना भूलें। ब्रेक का समय आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पोमोडोरो टेक्निक जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये सबसे ज़्यादा हमारे माइंड और बॉडी को सबसे एक्टिव रखती है और सबसे माइंडफुल तरीके से हमारा काम में मन भी लगा कर रखती है। तो पोमोडोरो टेक्निक के अंतर्गत आपको 25 मिनट पूरा मन लगाकर काम करना है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये साइकिल आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं और खुद को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कि खुद पर विश्वास रखना है, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चलो आज ये काम खत्म नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम इसे कल खत्म कर लेंगे, हम इसे अगले दिन एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन कभी भी ये मत करिए कि चलिए आज ये काम नहीं हो तो इसे छोड़ ही दें, नहीं, काम को पूरा करना जरूरी होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है और इसमें आप और क्या कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सोचिए। इसी के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज न आप जरा रुकिए। हाँ, सच में रुकिए। एक न लंबी और गहरी सांस लीजिए और जरा मुझे बताइए कि आखिरी बार आपने बिना जल्दी के चाय या कॉफी कब पी थी, या बिना जल्दबाजी किए बिना आराम से बैठे नाश्ता किया था। ऐसा हुआ ही नहीं होगा। दोस्तों, हम सब आजकल एक ही रेस में भाग रहे हैं। जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी सफल बनो। लेकिन इस जल्दी में हम क्या खो रहे हैं, कभी ये बैठ के सोचा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया। अगर आपने 2 सेकंड के लिए भी इसके बारे में सोचा हो, दोस्तों हम खुद को खो रहे हैं। आज बात करने वाले हैं दोस्तों हम स्लो लिविंग की। जिंदगी ना बेहद खूबसूरत है अगर उसे जिया जाए तो, पर आजकल मुद्दा यही है कि हम जीना ही भूल चुके हैं और बस सर्वाइवल की इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में पीस और एक्सेप्टेंस की, जो हमारी कोर होता है, पीस रखना, एक्सेप्टेंस रखना, इससे आगे बढ़ चुके हैं और हमारा जो यूनिवर्स है वो कहीं ना कहीं बहुत छोटा हो गया है। वो यूनिवर्स चाहता है कि हम बस काम में लगे रहें और बाकी हमारे खुद के बारे में सोचे ही ना। वैसे इसमें गलती हमारी भी नहीं है, शायद आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो।

है। शायद आजकल का कंपटीशन ही ऐसा हो गया है कि अगर आप 2 मिनट के लिए रुककर खुद के बारे में सोचेंगे तो आपको धक्का देकर शायद कोई और आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। सही कहा ना मैंने। और इसी राह पर कि हम कैसे खुद को बचा कर रखें, अपने कोर को बचा कर रखें, खुद को जीना वापस सिखा सकें, इसी के लिए आज हम स्लो लिविंग की चर्चा करेंगे। इसी राह पर आगे बढ़ते हुए एक आर्ट है, कहीं ना कहीं इसे हम आर्ट ऑफ स्लो लिविंग कहते हैं। इसका मतलब आलस करना नहीं है दोस्तों। कई लोग स्लो लिविंग को ये समझ लेते कि अच्छा मतलब आलसी बन जाओ। जी बिल्कुल नहीं, जिंदगी को ये जिंदगी का कोई पॉज भी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि जिंदगी को महसूस कैसे किया जाए। दोस्तों स्लो लिविंग कहता है कि फोन साइड में रखो और अपनी आंखों से इस दुनिया को फिर से देखना शुरू करो। हर दिन पल ऐसे हो कि जहां आपको खुद कुछ भी साबित करना ना हो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बचपन में हम कितना धीरे चलता रहता था ना, वो जो बचपन का समय होता था वो बहुत स्लो रहता था। गर्मियों की छुट्टियां भले 1 महीने क्यों लगती इतनी लंबी थी, लेकिन आज का संडे उफ पूछो ही मत, 24 घंटे का तो हमें लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि संडे बस शनिवार की रात तक ही था, अगला दिन तो पता नहीं कहाँ निकल जाता है। और शायद इसीलिए स्लो लिविंग, जिसे हम आर्ट ऑफ स्लो लिविंग कहते हैं, ये हमारी जिंदगी में हमें लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब हम छोटे थे ना, तब हम जिंदगी को जीते थे, भागते नहीं थे। और स्लो लिविंग भी हमें यही सिखाती है कि कम चीजें करो, लेकिन जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मतलब छुपा हो। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करें जिससे आपको खुद से फिर से आप जोड़ सकें। जैसे कि जो भी आपकी हॉबी हो, आप कोई ना कोई हॉबी करना शुरू कर सकते हैं। और स्लो लिविंग और प्रोडक्टिविटी ना कहीं इंटरलिंक्ड है। जैसे मैंने प्रोडक्टिविटी के समय बात की थी कि कैसे पॉज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्लो लिविंग भी हमें यही सिखाता है कि पॉज लेकर जिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आप खुद को फिर से पा भी सकेंगे। तो दोस्तों ये था स्लो लिविंग के बारे में, जो आर्ट ऑफ स्लो लिविंग जिसे हम कहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके बारे में आप थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए और इसमें युवा क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्लो लिविंग की। अब मैं भी एक युवा हूँ और हमारे श्रोता भी युवा ही हैं, तो युवाओं की जिंदगी में इसके क्या मायने हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत से ही हम बात करते आ रहे हैं कि कैसी छोटी छोटी चीजें, कैसी छोटी छोटी आदतें युवाओं की जिंदगी में बहुत बड़ा असर डालने लगती हैं। तो अगर युवाओं के लिए हम बात करें तो युवाओं के बीच स्लो लिविंग का अर्थ भागदौड़ और लगातार काम करने की संस्कृति से हटकर एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनाना जो मानसिक शांति, स्थिरता और सबसे ज्यादा प्रेजेंट में जीना ये हमें सिखाए। ये बर्नआउट और तनाव, थकान, इस सब से बचने और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रभावित होनी चाहिए। अब युवा स्लो लिविंग को कैसे अपना सकते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों, युवा क्या कर सकते हैं कि तनाव और एंजाइटी से हमें मुक्ति पानी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो फास्ट बनी एंजाइटी के कारण है। लगातार उपलब्ध रहना, ऑलवेज ऑन जिसे हम कहते हैं, इसके दबाव और सोशल मीडिया के कारण युवाओं में मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, जब आप अवेलेबल नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको हर समय हर चीज के लिए अवेलेबल होना होगा या जो कुछ भी ट्रेंड चल रहा है उसे फॉलो करना होगा, आपको जो अच्छा लगे आप उसे फॉलो कीजिए, आपको जो छोड़ना है उसे छोड़ दीजिए। ट्रेंड फॉलो करने और हमेशा सबके सामने अवेलेबल देखने के कारण युवाओं के अंदर ये प्रेशर बन जाता है कि अगर मैंने ये स्किप कर दिया तो शायद मैं फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट जिसे कहते हैं या फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट जिसे फोमो कहते हैं, कहीं ना कहीं युवाओं को वो होने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये फोमो के कारण ही आपको सबसे ज़्यादा तनाव आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय हर चीज़ में मौजूद मिले, आप सिर्फ तभी ऑलवेज ऑन रहिए जब आप चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, युवाओं के लिए सबसे फनी होगा ये जानना, लेकिन हाँ, हम सभी को ये अपनाना तो होगा ही, उसे कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। आपने कई बार इसको सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि युवा या कोई भी इंसान डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए जो भी स्क्रीन टाइम है या जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ती हैं, जैसे कोई वेब सीरीज देखना हो गया, टीवी देखना हो गया या सबसे ज्यादा जरूरी फोन चलाना हो गया, इस सब को आपको कम से कम कुछ देर के लिए बंद कर देना है। जैसे कि कई लोग एक एक दिन के लिए भी डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों ने ये तक अपनाया है कि सुबह उठते से ही आप फोन हाथ में ना लें, आप नहा लीजिए, आप रेडी हो जाइए, उसके बाद जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी फोन या स्क्रीन से अपना कॉन्टैक्ट बनाइए, अगर जरूरी नहीं है तो उससे दूरी ही बना के रखिए। और खासकर युवा जिन्हें उठते से ही फोन देखने की आदत है, इस आदत को हमें छोड़ना होगा और फोन का इस्तेमाल तभी करें जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत लगे। इसी के साथ दोस्तों, प्रकृति के बीच समय बिताना या प्रकृति के करीब आना, आप किसी भी गार्डन में जा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बस छत पे चले जाइए, आसमान को देखते रहिए, या आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, इवनिंग वॉक पे जा सकते हैं, जहाँ से भी आपको अच्छा सनसेट का व्यू आए वहाँ पर बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बस बैठकर सनसेट देख सकते हैं। दोस्तों सच मानिए, सनसेट देखने से इतनी शांति आती है कि मैं उसको शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती। कई लोग सनसेट को देख के कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि चलो आज का दिन एक अच्छे नोट पर खत्म हुआ, एक नया दिन अगले दिन शुरू होगा, हमारा जो पूरे दिन भर की भागदौड़ थी उस पे कहीं ना कहीं अब थोड़ा पॉज लग गया और सबसे ज्यादा जरूरी हमें आराम करने का समय भी मिल गया। इसी के साथ स्लो लिविंग में एक और बहुत जरूरी चीज है और वो है माइंडफुल ईटिंग। हाँ दोस्तों, हमारा जो खाना जो हम कंज्यूम करते हैं वो सीधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ होता है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उन्हें कम से कम खाने से बचें। जब ज़रूरत हो या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी उसका उपयोग करें, या जब आपका एक आध बार कभी खाने का मन करे तभी उसे यूज़ करिए। और माइंडफुल ईटिंग में एक और चीज़ आती है, वो है सेल्फ कुकिंग। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ आप अच्छी बना सकते हैं तो उसे बनाकर ज़रूर देखिए। देखिएगा, आप खाने से फिर से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और माइंडफुल ईटिंग भी होती ही रहेगी। अगर हम एक समरी में स्लो लिविंग और युवा की बात करें तो हमें वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, हमें फोकस बढ़ाना है, क्रिएटिविटी को वापस लाना है, और क्रिएटिविटी आती है खुद को जानने से। तो देखा आपने कैसे ये तीनों विषय, प्रोडक्टिविटी, स्लो लिविंग और उसके मतलब, और स्लो लिविंग को कैसे थोड़े थोड़ी चीज़ें करके हम हमारी ज़िंदगी में ला सकते हैं, ये तीनों आपस में लिंक्ड है, क्योंकि ये तीनों की तीनों हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर डालती हैं। तो दोस्तों, आप स्लो लिविंग को कैसे अपनाएंगे, आप अपने ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस लाएंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी कैसे अपनी लाइफस्टाइल को माइंडफुल बनाइए, इसके बारे में जरा सोचिए। तब तक हम सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारी आजकल की लाइफस्टाइल और भागदौड़ वाली जिंदगी को देख के ना मुझे कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है कि हमारे पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा है ना। ऑफिस का तनाव, पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया की दौड़, सब मिलकर हमें अंदर से बिल्कुल पूरी तरीके से थका देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस थकान का इलाज किसके पास है? जी हाँ, आपने सही समझा, प्रकृति के पास है। दोस्तों, प्रकृति में समय बिताना या प्रकृति से किसी भी ढंग से जुड़े रहना कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य और हमारे इमोशनल बैलेंस को अच्छा बनाता है। इसे कहते हैं नेचर थे।

थेरेपी करना, यानी कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जितना समय आप नेचर में बिताएंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और हॉर्मोन्स जो स्ट्रेस बढ़ाते हैं जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं वो भी कम होता है और डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। क्या आप जानते हैं कि जब हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं या कुछ रील्स देख रहे होते हैं तब भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डोपामीन रिलीज होता रहता है जो हमें ये संकेत देता है कि हम जो कर रहे हैं हमें वो अच्छा लग रहा है और इसी के कारण हम कंटिन्यूस डूम स्क्रोलिंग करते रहते हैं बिना दिमाग की स्क्रोलिंग। लेकिन देखिए डोपामीन बिना स्क्रीन के भी आपको नेचर के पास मिल सकता है। अगर दिन में बस 20 से 30 मिनट अगर कोई भी इंसान रोज़ किसी पार्क में या पेड़ के बीच घूम ले तो उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट अपने आप कम होने लगता है, शरीर खुद को बैलेंस करने लगता है और यही तो प्रकृति का जादू है दोस्तों। बिना दवाई बिना खर्च सिर्फ शांति और शांति। और तो और सूरज की रोशनी में रहना भी नेचर थेरेपी का हिस्सा है दोस्तों। विटामिन डी जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारी हड्डी के लिए कितना ज़रूरी है, हमारे स्किन के लिए कितना ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में अब काफ़ी कम होने लग गया है। छोटे छोटे बच्चे जो 1 या 2 साल के होते हैं उनके अंदर भी विटामिन डी की कमी आजकल पाई जाने लगी है और इससे बचने के लिए सूरज में समय बिताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो नेचर थेरेपी का मतलब ये हुआ कि किसी भी ढंग से आपको नेचर में जाना है, आपको खुद को स्लो डाउन करना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रेजेंट मोमेंट में भी रहना है। तो अब हम भी प्रेजेंट मोमेंट में रह ही रहे हैं और एक बार आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत भी अब सुन ही लेते हैं।

तो दोस्तों, ये था आज का युववाणी कार्यक्रम। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब जाते जाते समय हो गया है जो आपसे दो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर देने का। आज की कड़ी का पहला प्रश्न था कि कौन से राज्य में भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन एस्टैब्लिश्ड है या स्थापित किया जाएगा। इसका उत्तर है बिहार। और दूसरा प्रश्न था कि ब्रिटिश इंडिया में किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी, और इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इन दोनों ही प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढे होंगे, और अगर नहीं ढूंढे तो चलिए, आपको आज एक नई जानकारी मिल गई। और जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में बात हुई थी, आज इस जानकारी के बारे में आप भी खुद से थोड़ी रिसर्च कीजिए। तो अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, और फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। इसी के साथ दीजिए मार्गशीर्ष को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म।

गीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डर फिल्म का गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के, रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है शिवहरी का।

खुद्दार इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में, बोल हैं राहत इंदौरी के और धुन है अनु मलिक की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म द जेंटलमैन से। स्वर हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा के, बोल हैं इंदिवर के, धुन है अनु मलिक की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
1: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
1: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
1: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
1: जी। श्रोताओं, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिणी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
1: और हाँ श्रोताओं, भोजपत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
1: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
1: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
1: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
1: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
1: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी
2: जी।
1: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
2: जी।
1: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
2: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे।

0: क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
1: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
5: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
5: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
5: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
5: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
5: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
5: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
6: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी,
6: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी, डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
6: जी,
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
6: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
6: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
6: जी
5: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
3: जी,
5: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
6: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
3: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
6: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस

0: ऐसे सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
1: अच्छा
0: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
1: डॉक्टर नमिता
2: जी,
1: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
2: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है।
0: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
2: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
0: जी,
2: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
1: अच्छा,
2: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
1: बहुत सुंदर उदाहरण है। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
0: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
2: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
0: जी,
2: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
1: बिल्कुल,
2: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
0: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
1: जी,
0: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
1: जी,
0: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
1: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
2: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
1: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: बिल्कुल,
0: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
0: जी,
2: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
2: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
0: जी
1: बिल्कुल,
0: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
1: जी,
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी,
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी,
1: कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक कुछ।

0: नए आयाम।
1: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: चलो अपना अपना पार्ट निकालो। जी, तुम्हें भी कह रहा हूँ। चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूँगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी।
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं।

0: जी
1: हाँ?
0: पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे
3: पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं,
5: हाँ।
6: एक तालाब भी है।
5: अच्छा
2: मास्टर
5: अच्छा।
2: जी हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ हाँ ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। अरे बच्चों तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी
5: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर जी।
5: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
8: दीदी
9: बोलो मालती।
8: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
9: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
8: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
9: ठीक।
8: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
9: हाँ फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
8: जी।
9: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
8: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
9: हाँ।
4: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थीं। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
10: नमस्ते दीदी। नमस्ते
11: दीदी। नमस्ते, नमस्ते बच्चों। नमस्ते
0: दीदी। ये
9: अरे वाह कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण कहाँ से लाए तुम ये फूल?
7: दीदी ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
9: अच्छा
7: दीदी इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
9: सच? प्रवीण इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
0: गुलाब।
9: गुलाब बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
10: दीदी मैं बताऊंगी।
9: नहीं नहीं नहीं सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
0: गुलाब।
9: गेंदा।
0: चमेली। और
9: चमेली। चमेली।
0: सूरजमुखी।
9: सूरजमुखी शाबाश।
4: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
9: देखिए मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
4: जी
9: मेरे छात्र पहली दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़ तना टहनी पत्ते फूल और फल होते हैं।
4: जी जी
9: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
4: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
9: जी कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है। एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
4: बहुत अच्छे।
9: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
4: अरे इंदु जी आपने तो गणित वन

0: इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भजन। आज हमारे कलाकार हैं राजीव शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे भजन राजीव शर्मा के स्वर में। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मालवी लोकगीत राम अवतार अखंड और उनके साथियों के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे राम अवतार अखंड और साथियों के स्वर में गाए मालवी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीएआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत का एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंद्र शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक ने इस्तीफा दिया था। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण यह दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 20 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। डीजे प्रस्तुत है आज और कल की सभा के कार्यक्रमों का विवरण। प्रस्तुत है आज की सभा के शेष कार्यक्रम। 7:20 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा भेंट वार्ता। विषय होगा कृषि में स्टार्टअप एवं आर्थिक विश्लेषण। वार्ताकार होंगी डॉक्टर वीणा राठौर। 8:00 भोपाल से रिले होगा सुर्खियों में। 8:15 पर दिल्ली से रिले की जाएगी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 8:30 पर। 9:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रगीत। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा मन भावन 9:30 पर।

शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पखा वजवादन, चित्रांगना रेशवाल का, ताल होगा चौताल। ये थे आज की सभा के मुख्य कार्यक्रम। कल यानी 17 जुलाई के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं। वंदना सुनिएगा सुबह 6:05 पर, 6:30 पर सुन सकेंगे चिंतन। दलहनी फसलों में उर्वरक प्रबंधन जानिएगा खेती की बातें में सुबह 6:35 पर। इंदौर परिक्रमा सुनिएगा सुबह 7:20 पर, वाचन है मुकाम सिंह चौहान का। सदाबहार फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल सुनिएगा 7:35 पर। रूपक हमारी ये बेटियां आलेख है राजकुमार नीमा, प्रस्तुति है सिद्धनाथ सोलंकी की, सुनेगा 8:30 पर। 9:00 सुनिएगा लोक संगीत के कार्यक्रम में लीलाबाई मालवीय और उनके साथियों को। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर, कलाकार होंगे मनहर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा 9:30 पर, कार्यक्रम में सुनिएगा सितार वादन निखिल बड़ोदिया का, राग होगा अहीर भैरव। जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले होगा 10:00। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा 10:05 पर, फोन करें गीत सुने। ये फोन इन कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा 11:00, दोपहर 12:00 और 2:00 भोपाल से रिले होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। संग्रहालय से भोपाल से रिले होगा 12:30 पर। एक बजे सुनिएगा महिला कार्यक्रम, कार्यक्रम में सुन सकेंगे योजना मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण, कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, विषय होगा पोषण किशोरों के स्कूल प्रदर्शन में मददगार। 1:30 पर भोपाल से रिले होगा कार्यक्रम लोक संगीत, भोपाल से ही रिले होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम 1:45 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा 2:30 पर, ये भोपाल से रिले किया जाएगा। युवा साथियों का कार्यक्रम युवानी सुन सकेंगे शाम 5:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 5:45 पर, NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। सुगम संगीत में कल हमारे कलाकार होंगे अहमद रजा पप्पन, कार्यक्रम होगा 6:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे रामचंद्र गंगोलिया और उनके साथियों को 6:45 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी होगा 7:20 पर, कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, भिंडी की उन्नत खेती, वार्ताकार होंगे डॉक्टर भरत लाल। 8:00 भोपाल से रिले होगा सुर्खियों में, 8:15 पर कार्यक्रम सुनिएगा दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा मन भावन 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा गायन शंभू प्रसाद पवार का, राग होगा बागेश्री कानड़ा। ये थे कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हरियाणा और पंजाब में देंगे हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में भारत टेक्स सम्मेलन में लिया हिस्सा। टेक्सटाइल निवेशकों से किया संवाद। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा जलवायु चुनौतियों के बावजूद देश में बंपर अनाज और बागवानी उत्पादन। और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में किसान सम्मेलन को किया संबोधित। स्व सहायता समूह की बहनों से भी की बातचीत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे वे जींद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे चंडीगढ़ पहुंचकर 6,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। फिर प्रधानमंत्री जालंधर जाएंगे, जहां वे 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद किया और प्रदेश की उद्योग हितैषी नीतियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का निरीक्षण किया, जहां राज्य की औद्योगिक नीतियों, कौशल विकास और धार जिले में बन रहे पीएम मित्र पार्क को प्रदर्शित किया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि
1: मध्य प्रदेश को आप जरी स्टेट, रेशम स्टेट, मैनमेड फाइबर स्टेट, देश का कॉटन हब का ताज पहनाओ या हमारे खेतों में पसीना बहाते किसानों के साथ लूम में बैठे हुए बुनकर और शिल्पकारों के साथ आप आनंद का समय गुजारो, ये लक्षण भी अगर कहीं दिखाई देते हैं तो मध्य प्रदेश में सहजता के साथ दिखाई देते हैं। ग्रामों की बसाहट से आत्मीयता के बलबूते पर आत्म अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण भी कहीं दिखाई देता है तो वह मध्य प्रदेश में लक्षित होता है।
0: प्रदेश में मिनी जगन्नाथपुरी के नाम से मशहूर विदिशा जिले के मानोरा धाम में आज भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली गई। भगवान जगदीश स्वामी बलभद्र और सुभद्रा की 22 फीट ऊंचे 2 मंजिला लकड़ी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना, आरती और पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। मानोरा की ये रथयात्रा करीब 200 साल पुरानी परंपरा है और यहां 3 दिनों तक मेला चलेगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने आज उपराय, सीतापुर और बड़ौनकला गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। प्रशासन ने लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उपचुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैधानिक गतिविधि या डराने धमकाने की कोशिश पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के मुद्रकों और प्रकाशकों की बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रचार सामग्री को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद इस साल देश में 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार हुई है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि अब वैज्ञानिक सीधे खेतों में जाकर किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे। ये वे जिले थे जहां अलनीनो का असर पड़ने की आशंका थी। इन वैज्ञानिकों ने करीब 1 करोड़ किसानों से सीधा संवाद किया।
3: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायो फोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले के बहादुरपुर कृषि उपज मंडी में आयोजित कृषि सम्मेलन में किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के जरिए जिले के हजारों किसानों के खातों में राशि पहुंचाई गई है। इसके अलावा उन्होंने आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनों से भी संवाद किया। इस मौके पर श्री सिंधिया ने कहा कि
4: प्रधानमंत्री जी ने NRLM की शुरुआत, आजीविका मिशन की शुरुआत, स्वयं सहायता समूह की शुरुआत, क्योंकि हमारा भी सपना है विकसित भारत 2047 का सपना है। और अगर विकसित भारत 2047 बनाना होगा तो इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के द्वारा नहीं होगा, जब तक बहुसंख्यक मेरी महिलाएं इसका भाग में आगे ना आए।
0: भारतीय सेना के सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने आज भोपाल स्थित सुदर्शन चक्र कॉर्प्स का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों, ट्रेनिंग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आर्मी कमांडर ने फोर्स को आधुनिक बनाने की कोशिशों और नई तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया की समीक्षा भी की। इसके साथ ही उन्हें भोपाल में होने वाली आर्मी डे परेड 2027 की तैयारियों की जानकारी दी गई। जवानों से बातचीत करते हुए आर्मी कमांडर ने उनके प्रोफेशनल रवैये और ड्यूटी के प्रति समर्पण की तारीफ की। भारतीय क्रिकेटर क्रांति गौड़ आज भोपाल में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची और नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान से जुड़ी। प्रदेश में यह अभियान 15 से 30 जुलाई तक चलाया जा रहा है। क्रांति गौड़ ने कहा कि नशा सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है और घर के माहौल का बच्चों पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए सभी को नशे से दूर रहना चाहिए।
5: मैंने काफी सारी चीजें देखी हैं, जो इनके पेरेंट्स आसपास के लोग ये जो नशा करते हैं क्योंकि उससे उनको भी प्रॉब्लम है, देन उनके बच्चों का भी फ्यूचर, क्योंकि नशे से वो भी स्वस्थ नहीं है, देन उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स। तो ये चीजें क्या, ये देख के लोग जब सीखते हैं तो ठीक नहीं है के लिए, देन उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि नशे से दूर रहें।
0: केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजे। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्वार और रिचार्ज पिट व चेकडैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर जोर दिया जा रहा है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। मेजबान इंग्लैंड ने आज सोफिया गार्डन्स में जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल बीमार होने के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनके स्थान पर ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जून 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में झाबुआ जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। गुना कलेक्टर ने दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों की मरम्मत के लिए हर महीने विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। छतरपुर में जल जीवन मिशन की बैठक में कलेक्टर ने मल्टी विलेज स्कीमों के तहत उच्च स्तरीय टंकियों का निर्माण समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने त्रिवेणी गौशाला का निरीक्षण कर जिले के हर ब्लॉक में मॉडल गौशाला विकसित करने के निर्देश दिए। राजगढ़ के पीडीएमसी प्रेशराइज सिंचाई परियोजना के तहत स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन शुरू हो गए हैं। बुरहानपुर जिले में जारी दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों के सत्यापन के साथ झांझर और नेपानगर की गौशालाओं का निरीक्षण कर पशु प्रबंधन के निर्देश दिए गए। सीहोर में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत छात्र छात्राओं को स्वच्छता के नियम सिखाकर नशा मुक्ति व सफाई की शपथ दिलाई गई। देवास जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला कृषकों, पशुपालकों और उत्पादक कंपनियों से जुड़ी महिलाओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजगढ़ में भोपाल संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने आरसीटी व आरटीआई आईटीआई के कौशल विकास पाठ्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने के निर्देश दिए। और श्योपुर में नीति आयोग की सेंट्रल प्रभारी डॉ करुणा कुमारी ने अधिकारियों को सभी निर्धारित इंडिकेटर्स को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हरियाणा और पंजाब में देंगे हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नई दिल्ली में भारत टेक्स सम्मेलन में टेक्सटाइल निवेशकों से किया संवाद। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा जलवायु चुनौतियों के बावजूद देश में बंपर अनाज और बागवानी उत्पादन। और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में किसान सम्मेलन को किया संबोधित। स्व सहायता समूह की बहनों से भी की बातचीत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम का सुनने वाला सभी भाई बहनों को स्वागत छे। न आज कार्यक्रम में आपका साथ में छे आपकी बहन प्रेरणा पहारे, तो स्वीकार करो हमारी राम राम। भाई बहनों, आज अपन कार्यक्रम में कई सारी जानकारी ने सुनांगा, न साथ ज मनोरंजन का लेना निमाड़ी ने मालवी लोकगीत भी सुनांगा, न साथ ज अपन सुनांगा कृषि में स्टार्टअप न आर्थिक विश्लेषण इना विषय पर डॉक्टर वीणा राठौर की बातचीत। न भाई बहनों कार्यक्रम में जोड़ा रहेजो, कार्यक्रम में अपन फिर से पुनः आवाज पण पहला सुन लेवांच ई संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अपन अपना देश की संस्कृति का आगे बढ़ावांच न अपन मानांच कि अपनों हर कार्यक्रम की शुरुआत अपन गणेश जी की वंदना न पूजा आराधना का साथ में करांच। तो अपन अपना खेती गृहस्थी कार्यक्रम की शुरुआत भी गणेश जी की पूजा का साथ में करांच न सुनांच ई लोकगीत जगह गाई रयाज करण सिंह हिंदू सिंह न साथी।

भाई बहनों, अभी अपना गणेश जी की आराधना करी ने लोकगीत सुनियो जेखा गाई रहा था करण सिंह हिंदू सिंह ने साथी। भाई बहनों, आज अपन बात करांगा कृषि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना से जुड़ेल। भाई बहनों, अपन नखा मालूम छे कि हमारो देश कृषि प्रधान देश छे, न किसान भाई बहन का हित का लेना हमारी केंद्र सरकार का द्वारा भी कई सारी योजना न चलाई जा रही। तो असीज अपनी योजना छे एक प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, एक ही शुरुआत अगस्त 2017 में करी गई थी। ई पूरा तरीका से कृषि केंद्रित योजना छे। बेबनहोन, भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इन योजना में जो पूरा तरीका से कृषि पर आधारित छे, ई केंद्रीय क्षेत्र की योजना छे। एको मुख्य उद्देश्य ई छे कि किसान भाई बहन की जो फसल छे वो खेत से बाजार तक मजबूत न व्यवस्थित रूप से जाई सका। एक अलावा कृषि उपज की अनावश्यक बर्बादी नहीं होए, न हमारा किसान भाई बहन का उनकी आय में वृद्धि हुई सका, न साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अरु अधिक अवसर हमारा भाई बहन का मिली सका। इन योजना में कृषि में कई सारा क्षेत्र शामिल छे, न उनका पर काम किया जा रहे। भाई बहनों, इन योजना में किसान भाई बहन न उनका साथ ज उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, न साथ ज सहकारी समिति, न निजी उद्यमिक नख खाद्य प्रसंस्करण न से जुड़ेल उद्योग स्थापित करना का लेना सब्सिडी न आसान तरीका से लोन देने की सुविधा छे, जैसे किसान भाई बहन का सहायता मिली सके न उनकी आमदनी में वृद्धि हुई सका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में को जो मुख्य घटक छे वो इना प्रकार से छे कि एकीकृत कोल्ड चेन न मूल्य संवर्धन एका में शामिल छे। कहने को मतलब छे कि कृषि उपज खराब होना से बचाना का लेना कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग सॉर्टिंग सुविधा, न रेफ्रिजरेटर या वातानुकूलित गाड़ी जैसी सुविधा मिली सका, ई जैका सी हमारी जो फसल छे वो खराब नहीं हुए इन योजना में शामिल छे। एका अलावा कई सारा मानक न का लेने ना योजना चली रही, जैका सी जो वैश्विक मानक का अनुपालन का लेना मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला न को निर्माण भी इन योजना में शामिल छे। एक साथ ज मेगा फूड पार्क, खाद्य प्रसंस्करण न परिरक्षण क्षमता को सृजन करनो भी इन योजना में शामिल छे। किसान भाई इन योजना को लाभ लेने का लेना ऑनलाइन ऑफलाइन दो ही तरीका से आवेदन कर सकज। ऑफलाइन आवेदन करना का लेना जो मुख्य दस्तावेज छे वो नोट करी लियो। एका लेना आधार कार्ड या पैन कार्ड, भूमि का दस्तावेज जो भी खसरा या खतौनी लगी सकज, ने साथ ज पासबुक की छाया प्रति जेका में IFSC कोड होए, साथ ज पासपोर्ट साइज को फोटो। ई जानकारी लई ने ना आप अपना आसपास का अपना क्षेत्र का ग्राम पंचायत या कृषि कार्यालय में जाइने न संपर्क कर सको। न आवेदन फॉर्म वहाँ से प्राप्त करीने न जो भी जानकारी वहाँ से अरु मांगी गई जोख भरी ने उनकी पूर्ति करीने न वहाँ से पावती लेने न आवेदन कर सको। एका अलावा ऑनलाइन आवेदन करना का लेना जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जो आधिकारिक संपदा पोर्टल छे या आधिकारिक वेबसाइट छे वहाँ पर जाइने न आवेदन कर सको। तो आवेदन करना का लेना जो एक वेबसाइट छे वो नोट कर लियो, SAMPADAMOF sampadamof.gov.in। इन्हीं वेबसाइट पर जाइने ना आप इन्हीं योजना से जुड़ेल जो भी जानकारी छे, जो भी पंजीकरण करनो वो जानकारी प्राप्त करीने ना आवेदन कर सको ऑनलाइन भी, या अपना पास का जो भी ऑनलाइन सेंटर छे वहाँ जाइने ना इन्हीं योजना से जुड़ी छे सको। भाई बहनों, अपन का मालूम छे कि आज पूरी दुनिया डिजिटल हुई गई, तो अपन न कभी समाज की मुख्य धारा से जुड़नु न पारंपरिक खेती का साथ है, जो भी आधुनिक तरीका हमना बदलाव का लेना जरूरी छे ओखा अपना खेती में शामिल करनुज, न साथ है

0: कृषि का साथज अगर कोई अरु अधिक नवी व्यवस्था का अनुसार अरु कई उद्योग भी करी सकोच तो एक भी अपन नख कृषि का साथज शामिल करनू जेकासी अतिरिक्त मुनाफो हुई सको हुई सक। तो भाई बहन असी ज अपन एक भेटवार्ता सुनी लेवांज विषय छे कृषि में स्टार्टअप न आर्थिक विश्लेषण इन्हा विषय पर जानकारी दे रही डॉक्टर वीणा राठौर जो कि कैलाशनाथ काटजू कॉलेज ऑफ हार्टिकल्चर मंदसौर सी आई हमारा बीच में आई थी न इनका सी बातचीत करी रही बहन अनुराधा शर्मा। तो अपन सुना ये भेटवार्ता।
1: भाई बहनों आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित छे डॉक्टर वीणा राठौर जे की अनुबंधित शिक्षक छे कैलाशनाथ काटजू कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर में। इनका से आज अपन बातचीत करांगा कृषि में स्टार्टअप नो को आर्थिक विश्लेषण इना विषय पर। डॉक्टर वीणा जी आपको हमारा स्टूडियो में स्वागत छे। राम राम।
2: राम राम मैडम। राम राम किसान भाइयों। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आकाशवाणी इंदौर के कि उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया आपके साथ अपनी बातें साझा करने के लिए।
1: बिल्कुल। आज हमारा किसान भाई बहन की तरफ से आप बात शुरू करा। सबसे पहले तो किसान भाई बहन का आप ही बताओ कि कृषि स्टार्टअप काई हो
2: जो किसान भाई है हमारे वो जितने हैं वो कृषि पर आधारित है पर जो सरकार है उनकी तरफ से एक पहल की गई है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप से कि जो सरकार का उद्देश्य है वो यह है कि किसान भाई जो है वो कृषि के साथ साथ कोई उद्योग को भी सम्मिलित करे ताकि जो कृषि के ऊपर डिपेंडेंसी किसान भाइयों की जो आर्थिक स्थिति को लेके वो उस पे खत्म हो सके तथा उन्हें आर्थिक आय भी बढ़े और दोगुनी आय प्राप्त हो सके। तो जो स्टार्टअप होता है वो एक नई तकनीक या नवाचार को हम किसी व्यवसाय के रूप में हम उसको प्रस्तुत करते हैं कृषि के साथ, इसीलिए हम इसे कृषि स्टार्टअप कहते हैं।
1: मतलब कृषि को स्टार्टअप को मतलब ये है कि हमारा किसान भाई बहन जी खेती का काम करी राज उनका साथ उनका एक अतिरिक्त आय मिली जाए।
2: जी बिल्कुल मैडम। तो एक अतिरिक्त आय के लिए ही जो सरकार द्वारा यह लाया गया था ताकि किसान भाई अपनी जो कृषि के ऊपर आधारित मतलब जो इनकम की एक आधार रहता है कृषि उसकी ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म करना था।
1: मतलब पूरा तरीका से निर्भरता ओका पर नहीं रहे, कभी कम ज्यादा उत्पादन मिला तो किसी भी उनका परेशान नहीं होना
2: नहीं होना पड़े।
1: जी जी। उनका अतिरिक्त आय एक जगह से और मिली जाए
2: और मिल जाए।
1: बिल्कुल ठीक। तो कृषि स्टार्टअप को उद्देश्य भी आप ये बताइए राज पर एको आर्थिक विश्लेषण का ही है। ये आर्थिक विश्लेषण कैसा बतावांगा अपन।
2: जी मैडम। आर्थिक विश्लेषण से तात्पर्य ये है मेरा कहने का कि जैसे किसान भाई अगर कोई जैसे सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जैसे बुवाई से लेके फसल की कटाई तक जितनी भी कॉस्ट किसान भाई जो लागत लगा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में या कृषि में किसी उसको लेकर हम आर्थिक विश्लेषण करते हैं क्योंकि हमें तो ये पता रहे कि हमने कितना पैसा खर्च किया। मान लो किसान भाइयों ने सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक 50 रुपए खर्च किए और उन्हें सिर्फ 40 रुपए ही मुनाफा हो रहा है तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि उनको मुनाफा ज्यादा मिला या कम मिला। तो इसके लिए हमें आर्थिक विश्लेषण करना बहुत जरूरी है ताकि जो एक्स्ट्रा खर्च या ज्यादा अतिरिक्त खर्च जो हमारे कृषि पे हो रहा है उसको हम कम कर सके।
1: मतलब हम सीधा तरीका से अपना किसान भाई बहन का बतावा तो एक मतलब है कि उनकी जो लागत लगी रही न जो उनको उत्पादन मिली रोज उनका बीच को जो अंतर छे उनको लाभ।
2: हाँ, लाभ और हानि के बीच के अंतर को हम इससे प्रदर्शित करना चाह रहे हैं।
1: अच्छा, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उन्हें अपनी खेती में लाभ कुल मिला
2: मिला के नहीं तो। हाँ, और हानि हुई तो क्यों।
1: अच्छा, तो आर्थिक विश्लेषण को मतलब समझ में आयो पर ये लागत जी छे किसान भाई बहन की बड़ी रही वो कई छे।
2: देखिए किसान भाई, हमारी लागत से जहाँ ये तात्पर्य है यहाँ पे यार लागत में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कि हमारे कुछ परिवर्तित लागत हो गई है जो कि कुछ हमारी स्थिर लागत होती है ये इस पर ही हमारी खेती पूरी तरीके से निर्भर करती है। ये किस तरीके से निर्भर करती है मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि जो स्थिर लागत होती है वो हो गई जैसे जो हमारे ट्रैक्टर के ऊपर हमने जो लागत लगाई या जो हमने मकान बनाया भवन बनाया हमारे पशुओं को रखने के लिए या हमारी फसल को रखने के लिए हार्वेस्टिंग के बाद, तो ये हमारी स्थिर लागत हो गई है। पर जो हमारी परिवर्तित लागत होती है वो हो गई है जैसे कि हमारे जो हमने बीज खरीदे हैं या उसके अलावा आपने जो हमारे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो आप उपयोग करते हैं इनके ऊपर जैसे लागत हमारी बढ़ती जा रही है जो कि हम देख रहे हैं कि पहले की कृषि और अब की कृषि में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। पहले किसान भाई उतना कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते थे पर अब कीटनाशक ज्यादा उपयोग में आ रहा है तो हमारी जो परिवर्तित लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी परिवर्तित लागत को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि किसान भाइयों को बता रहे हैं कि कितनी कितनी कौन कौन सी लागतें उन्होंने सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक लगाई ताकि हम हमारी लागतों को कम कर सके।
1: तो फिर सकल आय क्या खाएगा हमारा किसान भाई।
2: सकल आय हमारे किसान भाई वो रहेगा जैसे कि जो आपने उत्पादन लिया और उस उत्पादन के अंदर जो हमारा जैसे कि मान लो हमने कोई

0: गेहूं की खेती करी, गेहूं का उत्पादन हमें प्राप्त हुआ, उत्पाद प्राप्त हुआ, उसके भूसे को हमने अलग किया, उसके बाद जो हमें जो मेन जो हमारा प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट के बाद जो हमें आय प्राप्त होगी उसे बेचने के बाद, हम उसे सकल आय कहते हैं। सकल आय का यह फॉर्मूला है हमारा।
1: एक अभी बहुत बड़ा शब्द चले रोज, मूल्य संवर्धन।
0: मूल्य संवर्धन से तात्पर्य यह है कि हम किस तरीके से मूल्य को हमारे उत्पाद को बढ़ाने की कोशिश करें। अब हमारा मूल्य में संवर्धन किस प्रकार होगा? तो जैसे कि हमारा जो उत्पाद लिया हमने, उसको हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, उसका वैल्यू एडिशन करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। अगर आपने प्रोसेस करके किसी भी फसल को बेचा तो उसकी लाभ अपने आप उसका जो मूल्य है वो दो गुना हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी गुणवत्ता वाला तो हर जो कंज्यूमर रहेगा, ग्राहक रहेगा, वो अच्छी गुणवत्ता वाले ही उत्पाद को सबसे ज्यादा महत्व देगा और उसमें फिर पैसा खर्च करने में भी वो नहीं सोचेगा।
1: कृषि में टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू हो गया
0: जी। कृषि में टेक्नोलॉजी से तात्पर्य यह है कि जैसे हम एआई का उपयोग कर रहे हैं, तो एआई का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? एआई के उपयोग से हमें किसान भाइयों यह हमारी मदद हो रही है कि हमें मौसम की एक तो पूर्व जानकारी मिल रही है, उसके साथ साथ ही हमें यह भी पता चल रहा है कि हमारी फसल में कौन से कीटनाशक आ सकते हैं, कौन सी बीमारियां हमें हमारी फसल में लग सकती है। यह हम पूर्व अनुमान करके उसके रख रखाव को पहले से ही उसकी तैयारी को हम करके रख सकते हैं, ताकि हमारी जो फसल है उसमें कम नुकसान हो और हमें भरपूर आय का प्राप्त हो सके।
1: मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से अपन कृषि में नुकसान का कम करने की बात कर रहे हैं।
0: हाँ जी
1: बिल्कुल ठीक। तो ये कृषि स्टार्टअप जी छे, ये हमारा किसान भाई बहन का फिर किना तरीका से मदद करी रहा है
0: जी? कृषि स्टार्टअप से जैसे तात्पर्य ये था कि मान लो किसान भाई अगर फसल के साथ साथ डेयरी का उत्पादन करते हैं, डेयरी का कोई उद्योग व्यवसाय शुरू करते हैं, तो उससे हमारी फसल को भी लाभ प्राप्त होगा। अब फसल को लाभ इस तरीके से प्राप्त होगा कि जो गाय का जो हमारा जो गोबर रहेगा उससे क्या कर सकते हैं किसान भाई, उससे हमारा एक उर्वरक तैयार करके या एक फार्म मेन्योर उसको करके उस गोबर की खाद का उपयोग करके हमारे फसल में डाल सकता है। एक तो पहला ये हो गया। तो जो बाहर के जो कीटनाशक जो खरीदने में उन्हें पैसे लग रहे थे उसमें भी उनकी लागत कम होगी, खुद ही का रहेगा, उसके बाद में जो वेस्ट रहेगा वो गाय को खाने को मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी रहेगी और एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे ज्यादा ग्रोथ बढ़ने में, ज्यादा एक दूसरे को बढ़ाने में।
1: कृषि में आजकल ड्रोन का उपयोग बहुत हो रहा है, तो ड्रोन का उपयोग भी उनका स्टार्ट नंबर मान ही सका कि स्टार्टअप ये भी एक तरह का?
0: जी मैडम, ड्रोन का जो है एक स्टार्टअप है, जो ड्रोन है वो मतलब खेती के साथ डायरेक्ट तो रिलेटेड नहीं रहेगा। जैसे कि ऐसा है कि अगर मान लो किसी के पास कोई ड्रोन का व्यापारी है तो वो अपने ड्रोन को बेच देगा किसान को और फिर किसान उसको खुद ही यूज करता रहेगा। पर जैसे अगर बाकी व्यवसाय, जैसे मैंने यहाँ डेयरी का एग्जाम्पल दिया, तो डेयरी में क्या रहेगा कि किसान भाई को एक्स्ट्रा इनकम हमेशा मिलती रहेगी, पर ड्रोन में ये रहेगा कि ड्रोन के माध्यम से सिर्फ वो ये देख पाएगा कि उसकी फसल पर कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, कोई कीड़ा तो नहीं लगा, कोई मतलब कोई बीमारी तो नहीं आने वाली है, या कहीं कहीं दूर कोई पशु पक्षी उसकी फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। ड्रोन के माध्यम से उसे ये चीज का पता चलेगा। मान लो कोई उसने सिंचाई के लिए पाइपलाइन लगाई तो कहीं पाइपलाइन फूट तो नहीं गई, पूरे क्षेत्र में अच्छे से पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, कीटनाशक का छिड़काव हुआ तो पूरी फसल में हुआ कि नहीं, ये उसे पता चल पाएगा।
1: मतलब ड्रोन से कुल मिले ना वो अपना खेत को निरीक्षण करे।
0: हाँ,
1: वो घर बैठे ना भी देखे रोज ऊपर से कि खेत में समस्या नहीं हो रही
0: जी।
1: पर ये भी तो तरीको ही सकज नहीं कि अपना खेत में देखी लियो फिर वो ड्रोन का किराए से चलाई ना दूसरा लोग ना खेत दे कि उनका खेत नमा उपयोग।
0: जी मैडम, ये इसलिए भी, हाँ ये आपका जो सुझाव है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये इसलिए भी हेल्पफुल रहेगा बाकी किसान भाइयों के लिए। मान लो जैसे जो छोटे किसान है, मध्यम वर्गीय किसान है, वो ड्रोन नहीं खरीद पा रहे, तो एक जो किसान है जो बड़ा किसान है वो बाकी लोगों की मदद कर सकता है इसको किराए पे उनके वहाँ एक एक दो दो घंटे चलवा के निरीक्षण करके।
1: हाँ, तो फिर स्टार्टअप
0: इसको हम हाँ एक स्टार्टअप के रूप में ले सकते हैं
1: कि अपना खेत में भी काम कर लियो को ना बाद में धरेल नहीं रही।
0: जी जी जी,
1: दूसरा ना का खेत ना उपयोग हो जाए, किराए में मिली जाए ना दूसरा लोग ना को भी काम हो जाए, तो किसान न की आय बढ़ाना का लेना अरु काई काई उपाय आप हमारा किसान भाई बहन का बताओ।
0: जी मैडम, जैसे किसान की आय बढ़ाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे जो किसान भाई अपने उत्पाद को बेच रहे हैं वो ई मंडी के माध्यम से भी बेच सकते हैं। जैसे कि ई नाम अभी बहुत चर्चित है, तो उसपे क्या करना है, किसान भाई को अपने उत्पाद को रजिस्टर करना है और सीधा अपने वहाँ घर पर ही बैठकर वो किसी भी कहीं भी किसी भी कोने की मंडी में एक में फिक्स भाव में ही अपने उत्पाद को बेच सकता है। उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंडी में जाके अपने उत्पाद को लेकर भटकने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा भी ऐसा है कि जैसे मैंने आपको डेयरी का एग्जाम्पल दिया, मुर्गी पालन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं किसान भाई, एक्स्ट्रा इनकम को ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक किसान जो है उसके पास अगर बड़ी जमीन है तो

0: वो एक ही स्टार्टअप कर सकता, वो दो तीन स्टार्टअप का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे किसान भाई डेयरी के साथ साथ मछली पालन भी कर सकते हैं अपना छोटा सा एक पोन लेके, तो उसमें भी उनको फायदा हो सकता।
1: कभी कभी ऐसा हो कि एक बात कहना में अलग रह करना में अलग रह, अपन जितनी बातों का बताई रहा कि सब लाभ होगा बहुत सारा
0: जी जी,
1: जब करना बैठा नहीं किसान तो बहुत सारी चुनौती ना आवे
0: जी। मैडम चुनौतियां तो हमेशा रहेगी ही, पर ऐसा है कि अगर किसान भाई ठान लेंगे तो कोई चुनौती उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि कृषि अपने आप में ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि कभी मौसम की मार से, कभी किसी तरीके से, किसान भाई हर तरीके से चुनौती का सामना करके ही आगे बढ़ रहे। पर इसमें यह फायदा रहेगा किसान भाइयों को कि इसमें लाभ की 100% गारंटी रहेगी ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाई किसी शहर के पास रह रहे तो फिर तो उनको पूरा भरपूर उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि मान लो अगर उन्होंने कोई स्टार्टअप किया तो डेयरी का पूरा वो उपयोग करके दूध को लाके सप्लाई कर सकते हैं शहर में। जैसे मछली पालन मुर्गी पालन अगर कर रहे हैं तो वो लाके किसी भी रेस्टोरेंट में टाई अप करके उसको बेच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों को चुनौतियां नहीं मिलेगी, पर इसका फायदा जरूर।
1: कोल्ड स्टोरेज भी आप सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई खेती में
0: जी मैडम। कोल्ड स्टोरेज इसलिए महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि अभी के टाइम में ये हो रहा है कि जो ग्राहक है वो हर समय सारी सब्जियों का उपयोग कर रहा है। पहले ऐसा था कि सीजनल वाइज लोग उसको खाते थे, उसके अलावा उनको उतनी नीड नहीं होती थी, पर अब चूंकि शहरीकरण ज्यादा हो गया है और गांव भी गांव जैसे नहीं रहे हैं, शहरों से जुड़ चुके हैं, तो खाने की जो फूड हैबिट्स है वो शहर में और गांवों में बदलती जा रही है। तो इसलिए कोल्ड स्टोरेज में हमें फायदा ये हो जाएगा कि हम हमारी सब्जी फल इन चीजों को रख कर अच्छे दामों पर लगातार हम साल भर इनको बेच सकते हैं।
1: कृषि में स्टार्टअप का सफल होना का लेना कई चीज आवश्यक है, सबसे ज्यादा की किसान भाई बहनों का कई विचार करना चाहिए
0: जी। किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये चीज अपनी जो एक टिपिकल सोच है उससे थोड़ा सा हट के सोचना होगा। किसान भाइयों को सिर्फ कृषि पर आधारित नहीं रहना होगा, क्योंकि कृषि से ही रिलेटेड मैंने उद्योगों की यहाँ पर बात की है, क्योंकि किसान भाई हर एक किसान भाई के पास में कम से कम एक गाय एक भैंस तो जरूर होती ही होती है। तो ऐसा है कि अगर आप 5 भैंस भी रख लेंगे, 10 भैंस भी अगर गाय भी रख ली आपने खेत पे, तो उससे आपको नुकसान तो होगा नहीं, इससे फायदा ही फायदा है। और दूसरी चीज ये भी है कि आजकल जो हमारी सरकार है वो भी इस चीज को महत्व दे रही है, उन्होंने भी इसके लिए बहुत सारी सब्सिडीज उपलब्ध करवाई है। इसके अलावा बहुत सारी सब्सिडी के साथ साथ लोन भी प्रोवाइड कर रही है हमारी सरकार। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोन भी हैं जो कि 50% मतलब उनको पे भी नहीं करना किसान भाइयों को, और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे दे रही है। तो ये सारी चीजों में किसान भाइयों को फायदा तो होगा ही।
1: पर जब भी कोई काम शुरू कराए तो काम लोग न की आवश्यकता रहे, नाम गाँव नी छे मजदूर मिलनू कम ही गाय
0: जी जी। तो जितने मतलब जैसे हम जो स्टार्टअप हम हमेशा ऐसे ही बता रहे हैं कृषि के साथ साथ ही किसान भाइयों को बता रहे हैं, ताकि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की जरूरत ना हो, ज्यादा से ज्यादा वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर किसान भाई के घर में 5 या 6 मेंबर भी और अगर 2-2 घंटे भी देते हैं तो भी वो आसानी से उस उद्योग के साथ कृषि को कर सकते
1: हैं। तो आप कृषि में स्टार्टअप को भविष्य किना तरीका का देखी रहा जिना समय
0: जी? हम जो स्टार्टअप का भविष्य देख पा रहे हैं कृषि के साथ वो ऐसा है कि हम किसान भाइयों को एक बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान के रूप में देख रहे हैं। हम किसान भाइयों को एक लगातार प्रोग्रेस के रूप में ही देख रहे हैं। उसके अलावा जो उनका लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत चेंज होगा, और हम ये चाहते हैं कि किसान भाई जो जितनी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है उनको भी उपयोग करें, ताकि क्या होगा कि जो हमारे किसान भाई हैं वो कृषि तो हमारी रहेगी ही रहेगी, पर उसके साथ साथ उनको और मुनाफा भी होगा और उनकी सोच भी बदलेगी और वो आगे आके अपने आप को और आत्मनिर्भर मतलब महसूस कर पाएंगे।
1: कृषि में विपणन की कहीं परेशानी नहीं है इना समय?
0: मैडम कृषि में विपणन की एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो उद्योग मतलब जो उत्पाद आ रहा था उसको किसान भाइयों को मंडी तक ले जाने में ही सबसे बड़ी एक समस्या आ रही थी।
1: तो यदि अपना स्टार्टअप शुरू कर दियो तो अपना का मंडी जाने की जरूरत खत्म?
0: जी मैडम, मंडी जाने की जरूरत उनको इसलिए भी खत्म हो जाएगी क्योंकि मंडी का तो एक आपको मैंने समाधान ऑलरेडी बता दिया है कि ई नाम से हम जुड़ के आराम से अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। बाकी अगर किसान भाई किसी कंपनी के साथ स्टार्टअप करना शुरू कर दे, या किसी कंपनी को मान लो जैसे कोई किसान अगर गन्ना उगा रहा है और शुगर फैक्ट्री उसके पास में है, तो वो क्या करे कि वो वहां जाके उनके साथ टाई अप कर ले कि मैं अपनी शुगर पूरी जितना शुगर केन है आपको दे दूंगा, तो किसान भाई को जाने की जरूरत ही नहीं है।
1: जी बात बताइए, सबसे बड़ी बात हमारा किसान भाई बहन समझने की ये आवश्यकता छे कि स्थानीय उनकी परिस्थिति न काई छे, उनका आसपास किना तरीका का उद्योग धंधा छे जेका में कि वो अपनो कच्चो माल दे सके
0: जी। कच्चा माल भी दे सकते हैं मैडम, और सबसे बड़ी बात है जैसे कि मैंने अभी ही कहा कि गांव अब शहर की तरफ आ रहे हैं, शहर और गांव की जो दूरियां हैं वो खत्म होती जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्टार्टअप के माध्यम से किसान भाइयों को शहर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे वहां जितनी भी रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे कि जितना भी

0: हमारा जो फूड हैबिट्स मैंने कहा कि चेंज हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर किसान भाई अगर उनके साथ टाई अप करते हैं या उनके साथ जुड़ते हैं तो एक हमें भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा, अच्छी जैविक फसलें खाने को मिलेगी, तो वो भी हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को सुधारेगी और किसान भाइयों को भी उनकी इनकम अच्छी मिलेगी और उन्हें भी भटकने की जरूरत नहीं रहेगी कि सब्जियां हमारी कहाँ बेचे या बाकी चीजें कहाँ बेचे।
1: बिल्कुल ठीक डॉक्टर वीना राठौर, आपने हमारा किसान भाई बहन का इतनी अच्छी जानकारी दी कि यदि किसान भाई बहन सक्षम छे तो वो खुद अपना खेती का साथ साथ दूसरा स्टार्टअप शुरू कर सकच
0: जी।
1: ना यदि उनका पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आसपास कई व्यवस्था न छे जी उनका उपलब्ध हुई सकच उनका अनुसार अपनी खेती में परिवर्तन करना लाभ प्राप्त कर सकच
0: जी।
1: तो इतनी अच्छी जानकारी आज अपने हमारा किसान भाई बहन का दी, आप हमारा स्टूडियो में आया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।
2: कृषि में स्टार्टअप न आर्थिक विश्लेषण इन्हा विषय पर अभी अपन भेंट वार्ता सुनी रहा था न जानकारी दे रही थी डॉक्टर वीणा राठौर जो कि कैलाशनाथ काटजू कॉलेज ऑफ हार्टिकल्चर मंदसौर से हमारा बीच में आई थी, अनुबंधित शिक्षक छे न इनका से बातचीत करी रही थी बहन अनुराधा शर्मा। न भाई बहन होन अब कार्यक्रम में समय छे क्योंकि आज गुरुवार को दिन छे तो अपन सदगुरु की भी वंदना करी लेवांज न सुनांज ई निमाड़ी लोकगीत जेका गाई रही हेमलता उपाध्याय ने साथी।

भाई बहन, अभी अपन लोकगीत सुनी रहा था जेका गाई रही थी हेमलता उपाध्याय ने साथी। न हमारा पास में कृषि उपज मंडी समिति संयोगितागंज प्रांगण इंदौर का मंदिर मंडी भाव भी आ गया, तो अपन जानी लेवाज। सोयाबीन को न्यूनतम भाव रहो आज 4,200 रुपया, एको अधिकतम भाव रहो 7,370 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से, न एको मॉडल भाव रहो 7,300 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों को न्यूनतम अधिकतम न मॉडल भाव समान रहो 7,305 रुपया प्रति क्विंटल। एका साथ ज मिर्ची को न्यूनतम अधिकतम न मॉडल भाव एको भी समान रहो 13,010 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहो 2,250 रुपया, एको अधिकतम भाव गयो 2,896 रुपया, न एको मॉडल भाव रहो 2,590 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना को न्यूनतम भाव रहो 5,200 रुपया, एको अधिकतम भाव रहो 9,450 रुपया, न एको मॉडल भाव रहो 8,000 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहो 4,500 रुपया, एको अधिकतम भाव रहो 8,065 रुपया, न एको मॉडल भाव रहो 6,005 रुपया प्रति क्विंटल। अमचूल को न्यूनतम भाव रहो 4,940 रुपया, एको अधिकतम भाव न मॉडल भाव समान रहो 5,000 रुपया प्रति क्विंटल। तिल्ली को न्यूनतम भाव रहो 10,010 रुपया, एको अधिकतम भाव गयो 10,825 रुपया प्रति क्विंटल, ने एको मॉडल भाव भी गयो 10,825 रुपया प्रति क्विंटल। मटर को न्यूनतम भाव रहो 2,030 रुपया, एको अधिकतम भाव रहो 3,200 रुपया, ने एको मॉडल भाव रहो 2,030 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव रहो 2,300 रुपया, एको मॉडल एको अधिकतम भाव रहो 7,200 रुपया, ने एको मॉडल भाव रहो 6,705 रुपया प्रति क्विंटल। अरहर को न्यूनतम भाव रहो 6,300 रुपया, एको अधिकतम भाव रहो 6,900 रुपया, न एको मॉडल भाव रहो 6,300 रुपया प्रति क्विंटल। बाजरा को न्यूनतम अधिकतम न मॉडल भाव समान रहो 2,605 रुपया प्रति क्विंटल। राजमा को भी न्यूनतम भाव रहो 5,700 रुपया, एको अधिकतम भाव रहो 8,700 रुपया, न एको मॉडल भाव रहो 5,700 रुपया प्रति क्विंटल। अने भाई बहन, हूँ कार्यक्रम में समय है कि अपन एक अरु लोकगीत सुनी लेवाज, तो अपन सुनाज ई लोकगीत जेके गाई रहा प्रीतम मालवीय ने साथी।

भाई बहनों, अभी अपन सुनी रहा था लोकगीत जेका गाई रहा था प्रीतम मालवीय ने साथी न एका साथ ज कार्यक्रम को समय पूरो हो गयो तो आज्ञा देव आपकी बहन प्रेरणा पहारे ख राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुर्खियों में भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये कार्यक्रम सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मिलती नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: अशोक जी, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: थैंक यू।
3: इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल सेमिकॉन 2.0 से जुड़े फैसले के बारे में क्या कहा।
4: सेमिकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है।
3: अशोक जी, अभी हमने केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव को सुना, और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया मेमोरी चिप की कमी से जूझ रही है, तो भारत की इस अहम सामग्री के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सेमिकॉन 2.0 की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
5: देखिए, मैं कहूंगा बहुत जरूरी मुद्दा है भारत के लिए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में अप एंड डाउन जिसके बोलते हैं होते रहता है। ये इंडस्ट्री करीबन 60-70 ईयर से चल रही है। ये जो इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर का, इसको कहते हैं कि लॉन्ग गेस्टेशन, मतलब लॉन्ग हॉल
3: जी।
5: इसको चिप

0: इंडस्ट्री फैक्ट्री बनाने में ही 3 से 5 साल लग जाते हैं, और वो फैक्ट्री बनने के बाद में ये 20-25-40 साल तक चलते रहती है। तो ये जो कमी असर है चिप का, मेमोरी और जीपीयूज वगैरह, उसको बाजू में अगर हम रखे तो हर जगह, जैसे मोबाइल फोन, कार, टीवी, इक्विपमेंट, अस्पताल, मेडिकल, डिफेंस, सब में इस चिप की जरूरत है। और आज हम भारत में इस जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 95% से ज्यादा हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब विदेशों से हम मंगाते हैं
1: जी।
0: और अभी ये जो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम फेज 2 जिसे बोला जाएगा, कल लॉन्च हुआ है, ये हमारी जो प्रीवियस क्वालिटी थी भारत सरकार की, सेमिकॉन फेज 1 और सेमिकॉन 1.0, उसका एक्सटेंशन माना जाएगा। और इस फेज में अभी फेज 1 का फाउंडेशन लेकर के तेजी से आगे बढ़ने का उद्देश्य है
1: जी,
0: जिससे हमें अब सिर्फ चिप बनाने की बात है, लेकिन चिप बनाने के लिए, निर्माण के लिए और जिसके डिजाइन के लिए जो भी कौशल विकास और सप्लाई चेन है उस पर ध्यान देना जरूरी है। और इसी दिशा में यह नई पॉलिसी लॉन्च की गई है। हम देख रहे हैं कि इस इनिशिएटिव से देश में अधिक मूल्य संवर्धन होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एड होगी जिसे हम कहते हैं
1: जी।
0: देश में आयात की निर्भरता भी बहुत कम होगी। मैं अगर नंबर की बात करूं यहां पर, तो हमारा 2030 में करीबन $100 बिलियन का सेमीकंडक्टर कंजम्पशन होगा। और इसी दिशा में इसी साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं कि हम इसमें आत्मनिर्भर बने।
1: सेमिकॉन 2.0 के जो कल, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, जो कल घोषणा की गई है, इसके मुख्य बिंदु क्या है?
0: फेज 1 में हमारा $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था कंट्री में, प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली थी। अब फेज 2 में इसे आगे लेना है, जिसमें पूरा इकोसिस्टम करना है, इसका मुख्य मुद्दा पूरा इकोसिस्टम रेडी करना है। और दूसरा है पॉलिसी कंटिन्यूटी। तो मैं कहता हूं कि अगर हम इसको थोड़ा इंग्लिश अल्फाज में बात करूं
1: जी,
0: तो फेज 1 में हमारा क्रेडिबिलिटी बन गया है, और फेज 2 में आउटकम जो होगा हमारा उससे हम कैपेबिलिटी बिल्डअप करेंगे, और वो करने के लिए हमें जो गवर्नमेंट का पॉलिसी कंटिन्यूटी है, कमिटमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 3C या 4C बन गए
1: जी।
0: और इस पॉलिसी में पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम बनेगा, मतलब जो फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है जिसे ATM भी कहा जाता है, डिजाइन है, R&D भी किया जाएगा इसमें, और साथ में दी एक मशीनरी जो मुद्दा है, मशीनरी और मटेरियल्स, मशीन्स और मटेरियल्स कहेंगे हम, उसमें करीबन 200 से 250 प्रकार के केमिकल्स, गैसेस और मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है
1: जी।
0: और इक्विपमेंट की, उसको भी फोकस किया जाएगा, उसके लिए भी 30% का गवर्नमेंट ने सब्सिडी तय किया है, जिससे वो काम भी इंडिया में बना जाएगा। और उसके साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस पॉलिसी से जो आउटकम होगा, फैक्ट्रियाज लगेंगी, डिजाइन हो गए, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए, उसका हमें जोड़ना चाहिए। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉलिसी है PM, मैं ये कहूंगा कि हमारी ये जो पॉलिसी है इसके साथ में हमको इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को भी देखना होगा एज अ होलिस्टिक व्यू, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ECMS, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, EMC, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना है इंडिया में, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए हमें वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा। तो हमारे जितना भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को फीड करेगा, और इंडिया में वैल्यू एडिशन होगा। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है हमारा सेमिकॉन 2.0 का
1: जी। और इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलिए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन 2.0 के 6 मुख्य स्तंभों के बारे में क्या कहा।
2: सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है बेसिकली। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। हमने सेमिकॉन 1.0 में फोकस दिया कि एक तरीके से उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है, भारत में स्थापित करना है, नए तरीके से काम करने की पद्धति लानी है। 2.0 में सबसे पहला फोकस आएगा डिजाइन चिप्स, डिजाइन ऑफ चिप्स में। डिजाइन ऑफ चिप्स स्ट्रेटेजिक चिप्स भी होगी और कमर्शियल चिप्स भी होगी। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी, उसकी IP भारत में रहेगी और भारत में ही उसका फैब्रिकेशन होगा। इस तरह की व्यवस्था ही सेमिकॉन 2.0 में, यानी 100% हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम। कमर्शियल रिक्वायरमेंट के लिए चिप्स बनाएंगे जो स्टार्टअप्स और डीप टेक स्टार्टअप्स, वो सब, उनके लिए भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा इसमें। इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहेगा, ग्रांट मिलेगी, को इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जो बड़ी कंपनियां इसमें आना चाहती उनके लिए रॉयल्टी बेस्ड फंडिंग रहेगी। सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स। हम सब जानते हैं करीब 250 से ज्यादा तरह के केमिकल्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम में आते हैं, और 50 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस इसमें काम में आती है, और करीब करीब 100 से ज्यादा डिफरेंट टाइप की मशीनें इसके बनाने में लगती है। उन सब का मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन भारत में आए, वो प्रयास इसमें रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स का। और तीसरा, बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड, नई फैब्स भी आएंगी। और ATMP OSAT इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उन सब का, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: आपने अभी बात की कि जो ये मिशन सेमिकॉन 2.2 है, इसका एक बहुत अहम, इसका जो एक पिलर या स्तंभ कह सकते हैं वो है मशीन और मटेरियल से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें जो मिनरल्स और जो गैस समेत जो कच्चे माल की मैन्युफैक्चरिंग और जो R&D है, जो कंपनियां इनमें शामिल होंगी उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इसे आप किस तरह देखते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है कि उन कंपनियों को जो कि कच्चे माल के मैन्युफैक्चरिंग में और R&D में जो शामिल होंगी उनको इंसेंटिवाइज करना आप कितना अहम मानते हैं?
0: मैं कहूंगा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको दो दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पहले तो अगर हमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना है, उस सेमीकंडक्टर क्षेत्र के मैन्युफैक्चरिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो ये सब हमें करना पड़ेगा
1: जी।
0: इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे पास स्पेशलिटी केमिकल्स की इंडस्ट्री अच्छी है, थ्राइविंग, जैसे इस मटेरियल्स हम बनाते हैं, लेकिन वो सब सेमीकंडक्टर ग्रेड में आज नहीं है, और वो करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, कुछ ग्लोबल टेक्नोलॉजी हमें लानी पड़ेगी और वो टेक्नोलॉजी में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सुधार करना पड़ेगा। वो इसीलिए इस बार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स R&D मतलब भारत सरकार ने ये एक बेनिफिट दिया है, जिससे कि जो इंडिया के बहुत सारे कॉर्पोरेट जो आज केमिकल्स गैसेस मटेरियल बना रहे वो अपने प्रोसेस अपग्रेड करेंगे और सेमीकंडक्टर ग्रेड प्योरिटी जिसे हम बोलते हैं 99.9999% मतलब 6.9% और 7.9% तक लाना है, वो इसको कर पाएंगे। और ग्लोबल कुछ लोग जो कंपनीज है उनको भी इंडिया में हम इस तरीके से ला सकते हैं।
1: आपने क्योंकि ग्लोबल लेवल पर एक सहयोग की बात की तो ISM के जो दूसरा चरण है उसका एक महत्वपूर्ण एलिमेंट विदेशी सहयोग पर भी फोकस करता है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स को, जो विदेशी मैन्युफैक्चरर हैं उनको भारत में अपने यूनिट्स लगाने के लिए आकर्षित करना और यहाँ कुछ सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाने की कोशिशें शामिल हैं। तो ये जो हम ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर हैं, जो निर्माणकर्ता हैं और जो सप्लायर हैं, इनको भारत में लाने के लिए कोई खास इंसेंटिव देंगे और ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर ISM 2.0 को किस तरह की प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है?
0: सेमीकंडक्टर डिजाइन में हम काफी आगे हैं, क्योंकि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दो पार्ट्स है, दो पहलू है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। तो डिजाइन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास में जो टैलेंटेड पूल है ये विश्व का 20% टैलेंटेड पूल इंडिया में है, डिजाइन हो गया। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम काफी पीछे हैं, क्योंकि हमने ये किया नहीं पहले काम। इसलिए अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है
1: जी।
0: इसके बिना ये होगा नहीं, हमारे पास प्रोसेस टेक्नोलॉजी नहीं है, नथिंग रॉन्ग, नहीं है तो नहीं है, लेकिन उसको ला सकते हैं। तो इसलिए भारत केवल जो आर्थिक प्रोत्साहन है, जिसे हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट, ये दे रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में भारत की जो स्थिर नीतियां है, मतलब स्टेबल पॉलिसीज
1: जी,
0: और कुशल मानव संसाधन टैलेंट, और जो हमारा घरेलू बाजार है, डोमेस्टिक मार्केट, ये काफी तेजी से विकसित हो रहा है, और इसीलिए ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का पूरा टोटल है, इसे हम बना रहे हैं, और ये जब बनेगा तभी भारत में अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इंटरेस्ट बताएंगी और वो निवेश करेंगी। हमारे पहले चरण में जो सेमीकॉन फेज वन में कुछ इंटरनेशनल कंपनियों ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, एक कंपनी है जैसे माइक्रोन, उन्होंने तो खुद का प्लांट लगा दिया, टाटा ने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया ताइवान कंपनी से, इस तरीके से वो आगे बढ़ा है और आगे भी होता रहेगा। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम इंटरनेशनल कंपनीज को प्रोत्साहित करें और वो काम इससे होगा
1: जी।
0: और जो ये पॉलिसी अनाउंस हुई है ये पॉलिसी सेम है, अगर ग्लोबल लोग आते हैं उनके लिए भी सेम बेनिफिट दिया जाएगा, ये जो कैपेक्स का बोला है सब्सिडी 30% 40% जो भी है वो उन्हें भी मिलेगा, और इंडियन कॉर्पोरेट अगर जॉइंट वेंचर करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेते हैं, उन्हें भी ये मिलेगा। तो ये इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है
1: जी।
0: और मैं और एक कहना चाहूंगा, एक मुद्दा इसमें, एक हम इवेंट करते हैं सेमिकॉन इंडिया
1: जी,
0: जो कि अभी सितंबर में आ रहा है, 17-18-19 सितंबर को दिल्ली में होगा
1: जी।
0: इसमें हम काफी प्रमोशन करते हैं और विदेशी कंपनियां आती है, इस साल भी सेमिकॉन इंडिया में करीबन 300 विदेशी कंपनियां आएंगी, अपने प्रोडक्ट सॉल्यूशन करेंगे, वो डेमोंस्ट्रेट करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है सेमिकॉन इंडिया, इसके तहत भी हम प्रमोशन करते हैं इन पॉलिसीज का
1: जी। आपने बात की स्किल्ड वर्कफोर्स की, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और जो डिजाइन है उसके लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स का होना बहुत जरूरी है। टैलेंट डेवलपमेंट के लिए सेमिकॉन 2.0 में किस तरह के प्रावधान है? क्या कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो हमारे संस्थान है उनसे टाई अप किया जाएगा? किस तरह के इसमें प्रावधान है?
0: देखिए, भारत की ये तो सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे पास टैलेंटेड पूल है, और मैंने भी जस्ट जिक्र किया था कि हमारे पास 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर है। इस पॉलिसी में एक पिलर है हमारा टैलेंट डेवलपमेंट का, इस पॉलिसी में जो सरकार ने अनाउंस किया है
1: जी।
0: तो इसके साथ में इंडस्ट्री और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब उद्योग और शिक्षण संस्थाओं में सहयोग किया जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग बनाई जाएगी और आधुनिक प्रयोगशालाओं को बनाया जाएगा जिसमें कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। एक प्रोग्राम चल रहा था जैसे C2S, चिप टू सिलिकॉन, इसके तहत ऑलरेडी 350 से ज्यादा इंस्टीट्यूट को इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट टूल्स का लाइसेंस दिया गया है, वो भी चिप बना रहे हैं। और हमारे कुछ स्टूडेंट चिप बना के अगले चरण में वो चिप का मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ किया जाएगा। तो इस तरीके से टैलेंट डेवलपमेंट

0: किया जाएगा। और जो इंडस्ट्री बॉडीज है जैसे सेमी और आईएसए इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमी एसोसिएशन, इनके भी टैलेंट डेवलपमेंट के उसके बोलते वर्कफोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लगे हुए हैं। एनआईएलआईटी नेलेट जो कि मेटी का एक आर्म है, और हमारा जो एआई सिटी है, ये सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं कि जिसमें कोर्स करिकुलम अपग्रेड हो गए और लैब बनाए जाएंगे, प्रयोगशाला जिसे कहते हैं, और उसमें ट्रेनिंग किया जाए।
1: जी, इस फैसले का भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा? दूसरे जो क्षेत्र है विकास में, उन क्षेत्रों में विकास को सपोर्ट करने के लिए इस फैसले का क्या रोल होगा?
0: देखिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक सिर्फ सेमीकंडक्टर उद्योग नहीं रहा, इसके साथ में जब सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगती है तो मशीनें लगती है, केमिकल गैसेस है, लॉजिस्टिक्स है, पोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबोरेटरीज है, ये सब विकसित इसके साथ में हो जाते हैं। और ये जो पॉलिसी भी अनाउंस हुई है, इससे हमें लगता है कि करीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर मतलब 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कल आदरणीय मंत्री जी ने
1: जी
0: अपने ब्रीफिंग में ये बताया था, और हम भी उसी तरह डायरेक्शन में देख रहे हैं एज ए इंडस्ट्री बॉडी। और ये जो नए उद्योग लगेंगे तो इसके साथ में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और उसके साथ में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है।
1: जी,
0: हमारा जो ऑब्जर्वेशन है रूल ऑफ थंब कि पर 1 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देयर इज अ 10 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट।
1: जी,
0: तो इस तरीके से करीबन 2 से 3 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब उसमें करीबन 20 लाख के करीबन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को इसमें रोजगार का अवसर मिलेगा।
1: जैसे भी हमने बात कर रहे हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से 1.27 लाख करोड़ का जो है एक पैकेज अनाउंस किया है, पर सेमिकॉन 2.0 की सफलता के लिए प्राइवेट सेक्टर का रोल कितना जरूरी है, कितना अहम है?
0: इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत अहम है। सरकार तो एक इनिशियल इनपुट और हेल्प दे रही है जिससे कि ये इंडस्ट्री चल पड़े, तो इसमें मैं कहूंगा सरकार का रोल जो एक कैटलिस्ट है, लेकिन पूरा मेन रोल इसमें प्राइवेट सेक्टर का है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि ये हमारा एक फाउंडेशन इंडस्ट्री है और इसे हमें विकसित करना होगा, ये एक नेशनल मुद्दा बन गया है ये
1: जी।
0: तो प्राइवेट सेक्टर को भी उस और देश की सॉवरेनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो इसी में प्राइवेट सेक्टर का ये जो कंट्रीब्यूशन है कहा जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट।
1: जी, अशोक चांदक जी, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मिलती नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में कार्यक्रम अभी आपने सुना, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भक्तजन? कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी

सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्न वेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां एक सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आंकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

0: एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयंसेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ

0: हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी, वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
1: ये खूबसूरत नज़ारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में, कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज़ की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
0: धन्यवाद अंजलि जी।
2: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे
4: हैं। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। स्वर है किशोर कुमार के, बोल हैं आनंद बख्शी के और धुन है आरडी बर्मन की।
5: Mm-hmm.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे FM 101.6 MHz विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगी इंस्पेक्टर सरिता सिंह एवं सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता, साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे विविध भारती चैनल पर। तो आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानी विशेषज्ञ इंस्पेक्टर सरिता सिंह एवं सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह, स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। आप शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 2026 को सुबह 11:32 से 12 बजे तक विविध भारती 101.6 MHz पर कार्यक्रम सुन सकते हैं और ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं होटल फिल्म का गीत। स्वर हैं आशा भोसले और मनहर के, बोल हैं इंदिवर के।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म जहरीला इंसान से। स्वर है किशोर कुमार के, बोल है मजरू सुल्तानपुरी के, धुन है आर डी बर्मन की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू, हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में सीएसआईआर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रूपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
7: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
3: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
8: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रूपये पर बंद हुआ।
3: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. U.S. expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in men's cricket, second ODI between Indian host England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered, and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China, and the US. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
10: India's hydrogen train features a 10 coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
9: Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Union Civil Aviation Minister Kinjarappu Rammohan Naidu today said that the next phase of the Ude Desh Ka Aam Nagrik or Udaan scheme aims to enhance connectivity to 120 new destinations and enable 4 crore passengers to travel over the next 10 years. Mr. Naidu was addressing a workshop on the next phase of Udaan in New Delhi.
11: It is going to be worked in a very close partnership between the government of India, the state governments, all the stakeholders coming together and creating a strong foundation to increase the airport network by 100 more airports, heliport network to 200 more heliports, and we see also to encourage Atmanirbhar Bharat, we are going to purchase two Hindustan 228 Dornier aircrafts, which we are going to give to Alliance Air, and we are also going to purchase two helicopters, which we are going to put with Pawan Hans.
9: In a major boost to regional connectivity, the first commercial flight between Daman and New Delhi was flagged off today from the newly built Namo Airport. Union Civil Aviation Minister Kinjarappu Rammohan Naidu and Union Territory Administrator Praful Patel jointly flagged off the maiden flight. The airport was recently inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Our correspondent has the details.
4: The direct air connectivity between Daman and the national capital is expected to give a major boost to tourism, trade and investment in the region. Passengers will no longer have to rely on long road or rail journeys. According to the local administration, plans are already underway to expand air services from Namo Airport to other major cities across the country in the near future. Pravesh Adiyecha, Akashwani News, Ahmedabad.
9: The Ministry of Housing and Urban Affairs has approved the guidelines for the program for accelerated renewal and incentivization of vehicle assets for reducing transport air pollution and network emissions, or Parivartan scheme. The scheme is aimed at facilitating the replacement of older, highly polluting trucks and buses operating in the National Capital Region with cleaner Bharat Stage or BS6 compliant or electric vehicles. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said that India has achieved a record production of 376 million tons of food grains and 377 million tons of horticultural produce this year, despite challenges posed by climate change. Mr. Chauhan was addressing a press conference in New Delhi. He said the scientists are now going directly to the fields to work alongside the farmers.
12: Our agricultural production has broken all records. Food grains production has reached 376 million tons, while horticulture production stands at 377 million tons. This is an extraordinary achievement. In a single year, 386 new varieties of 44 crops have been developed. Of these, 94 are climate resilient and 29 are bio-fortified varieties. The Khet Bachao campaign has also done commendable work.
9: Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today called for stronger collaboration between scientific institutions, industry and state governments to ensure that homegrown technologies are implemented on a much larger scale across the country. Dr. Singh said this while addressing the year-long Platinum Jubilee celebrations of CSIR, Central Road Research Institute in New Delhi. Union Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, today said that the government has brought rapid changes in governance since 2014, helping elevate India's global standing. The minister was speaking after inaugurating a post office passport seva kendra at Periyar Nagar in Chennai. Dr. Murugan said the government has ensured that the benefits of its welfare schemes reach every citizen, including those in the remotest parts of the country. The grand annual Rath Yatra of Lord Jagannath is drawing lakhs of devotees across the country. While the epicenter of the festival is the holy city of Puri in Orissa, the chariot festival is celebrated with immense devotion, vibrant processions and cultural festivities across multiple states. More from our Bhubaneswar correspondent.
13: The sacred city of Puri remained immersed in an ocean of devotion as lakhs of devotees participated in the ceremonial pulling of the majestic chariots of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra along the grand road following the completion of the sacred Pahandi Bijay and Chhera Pahandra rituals. The pulling of the chariots was suspended for the day as night set in, and the divine journey to the revered Sri Gundicha temple will resume tomorrow. However, the festivities were overshadowed by a stampede-like incident near the Sri Gundicha temple, where one devotee reportedly lost his life and several others sustained injuries. The seriously injured have been shifted to nearby hospitals for treatment. The Odisha government has ordered a high-level inquiry into the incident, while security and crowd management arrangements have been further strengthened for the remaining course of the festival. With Prakash Dash's report from Bhubaneswar, Renuka, Akashvani News.
9: In Gujarat, the 149th annual Rath Yatra of Lord Jagannath is being celebrated in Ahmedabad today with religious fervour. The chariots of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra are moving along the traditional 16-kilometre route amid elaborate security arrangements. Thousands of devotees have lined the streets with chants of Jai Jagannath echoing across the city. Similar Rath Yatras are also being held in Bhavnagar, Junagadh and Surat. President Draupadi Murmu has written an article on the occasion of Rath Yatra today. In the article, the President prayed to Mahaprabhu Jagannath to provide protection to the country and the entire world. President Murmu highlighted that Mahaprabhu is always there to alleviate the sorrows of the people of the entire world. India and Finland today discussed strengthening economic and financial cooperation, enhancing trade and investment ties, and expanding collaboration in digitalization and emerging sectors. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Finland's Deputy Prime Minister and Finance Minister Riikka Purra in Helsinki. They also explored opportunities to further deepen India-Finland engagement under the India-EU FTA. United States intensified its strikes on Iran earlier this morning, hitting targets further north of the country, as American forces also fired into a ship. The U.S. accused the ship of trying to break its naval blockade on the Islamic Republic. Iran retaliated with missile and drone fire targeting U.S. allies in the region before dawn and warned its attacks may escalate. Iranian officials said recent U.S. strikes have killed more than 35 people and injured over 300. Strikes also reached into areas around Iran's capital, Tehran, for the first time in this latest round of violence. American attacks reportedly targeted Semnan province, home to Iran's ballistic missile production and space program. A spokesperson for the Iranian military's Khatam al-Anbiya Central Headquarters threatened that Iran could launch widespread attacks on regional infrastructure if the U.S. hits Iranian bridges and power plants. He said that under no circumstances and in no way they will allow America to interfere in the Strait of Hormuz. Benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. We have a report.
14: The Sensex added just a point to close at 77,187. The Nifty dipped 6 points to settle at 24,073. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 dropped 0.4% and the Small-Cap 100 index fell by 0.1%. In the Forex market, the rupee depreciated by 9 paisa to close at 96 rupees and 35 paisa against the US dollar. With Ayushi's report, Anubha Rohatki for Akashwani News.
9: The Inter-Meteorological Department, IMD, has forecast enhanced rainfall activity over eastern northeast India, eastern Uttar Pradesh and western Himalayan region during the next 7 days. Isolated extremely heavy rainfall is also likely to prevail over Odisha today. The weather department said that Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh are expected to experience isolated to scattered rainfall tomorrow. According to IMD, similar conditions will also prevail over Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab during the next 3 to 4 days and Rajasthan till the 22nd of this month. On to sports now. Two Indian men boxers clinched gold while three others bagged silver at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta today. India concluded its campaign at the championships with strong performances in the finals. Vishwanath Suresh in 50 kilograms and Ganga in 55 kilograms won gold in the Under-23 men's category. Vansharj in 65 kg settled for silver. In the Under-19 men's finals, Aditya in 55 kg and Shubham Rajput in 90 kg also finished with silver medals. In men's cricket, India have set a target of 234 runs for host England in second one-day international of the three-match series at Cardiff. India were all out for 233 in 44 overs. Earlier, England skipper Harry Brooke won the toss and opted to field. India had defeated England by 6 wickets in the first one-day international in Birmingham on Tuesday. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu outclassed world number 5 Han Yu of China to storm into the quarterfinals of the Japan Open in Tokyo today. She will next face Nozomi Okuhara of Japan tomorrow. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the US to set up the title clash with European powerhouse Spain. The summit clash will be on Sunday night at New Jersey Stadium in the US. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Orissa's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. Two Indian men boxers clinch gold while three bag silver at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And in men's cricket, India set a target of 234 runs against host England in second ODI in Cardiff. That's all in the news at 9. Good night.
15: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हीर रांझा फिल्म का गीत। स्वर है अनवर और लता मंगेशकर के, रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 मेगाहर्ट्ज आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे FM 101.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगी इंस्पेक्टर सरिता सिंह एवं सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे विविध भारती चैनल पर। तो आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ इंस्पेक्टर सरिता सिंह एवं सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह, स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। आप शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे विविध भारती 101.6 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन सकते हैं और ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। सूचना

समाप्त हुई। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है चित्रगीत, तो आइए अब सुनते हैं हम कामचोर फिल्म का गीत। स्वर हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के, बोल हैं इंदिवर के और धुन है राजेश रोशन की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म देवता से। स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर के, बोल हैं गुलजार के और संगीत है आर डी बर्मन का।

इस गीत के साथ ही चित्रगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है आप ही के पत्रों द्वारा भेजी गई फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम में आपके पत्रों और आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी पूजा ठाकुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर हीरो फिल्म का गीत। स्वर है अनुराधा पौरवाल और मनहर के, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश की है हमें कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से सुनना चाहते हैं मनमोहन राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, रेखा, रितिका, रीचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार। सपना संगीता रोड इंदौर से सुनना चाहते हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतेरी से भागवत वर्मा, लवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवागन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल

नसीब रेडियो श्रोता संघ संजय कॉलोनी खंडवा से लिख भेजा है हमें जनाब अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, अब्दुल रहमान डावर, अब्दुल कादर डावर, मोहम्मद हमजा डावर और तुलसीराम वर्मा ने। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े और स्वराज ने। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश मेंडी, सौरभ और शाइना शर्मा। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हिप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। इसी कड़ी में जुड़े हैं दयापुर भाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वर्नेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

सिर्फ तुम, इस फिल्म का गीत सुनिए अमीन शाबरी और फरीद शाबरी के स्वर में। बोल है समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत की फरमाइश की है हमें नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। नांदखेड़ जिला वाशिम से सुनना चाहते हैं अशोक चुमले, दिनेश, रुपेश, लीलाबाई, चैताली और प्रीति। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से लिख भेजा है हमें मोहम्मद शादीक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम भानो। भोपाल से सुनना चाहते हैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह, ज्योति, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला।

ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा हदिया, असमा सालिया, शोएब पोत्रा, मुजदबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, सरिता सिद्धांत, प्रिंस एकांश गवानकर, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनि, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या करिश्मा कामले। इसी कड़ी में जुड़े हैं शादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

गा गवा इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में। रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत की फरमाइश की है हमें ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम ने। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा और साहिल ने। मुखर्जी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, अनु, विशाल, उर्वशी, कुमारी प्रियंका, प्रियांशी, रितिक, लक्की, शौर्य, मुक्कू, बसंतीबाई, किशनलाल, महेंद्र, मालती चौहान ने। धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा, साइमा, हसनैन और खुशी ने। छत्तीसगढ़ सिग्मा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से लिख भेजा है हमें बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम, सुभाष और सदानंद ने। वंदनानगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परिखर्चे और ललिता।

नारायण खर्चे ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, समस्त बत्ता परिवार सुनना चाहते हैं। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज। शास्त्री नगर खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश, उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदनी, निखिल और गौरांज पंचोली। श्री रोडकेश्वर श्रोता संघ छत्रपति शाहू नगर हिंगोली से रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत हिंगोले, टिंकू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा और गौतम हिंगोले। श्री माटकेश्वर श्रोता संघ नागेश्वर नगर माटेगांव से सुनना चाहते हैं शेषराव बोबड़े, सोनाजी, सीताराम, वैष्णवी, स्वर्णा, वेणुताई, शुभम, माधवराव, संदीप, गणेश, शिवण्या, शिवरूपा और साहेबराव लोखंडे। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

धड़कन। इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार शानू के स्वर में। बोल हैं समीर के और धुन है नदीम श्रवण की। इस गीत की फरमाइश की है हमें घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया ने। सनावद मध्य प्रदेश से सुनना चाहते हैं हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन, श्रीमती प्रभा कटारिया।

कृष्णा, विराज, अर्णव एवं काव्यांशी कटारिया। मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। इसी गीत को पसंद किया है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से सुनना चाहते हैं हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जेतक और मिका बिरक। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफी मंसूरी। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनंजय, राहुल कुमार धनंजय, विशाल, शीला और गायत्री धनंजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा और नीतू वैद। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से सुनना चाहते हैं विजय महोविया, कविता, संजय, नंदनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और भैयू दादा। ओम साईराम रेडियो श्रोता संघ झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली इंगोले और आरडी इंगोले। तालुका नेवासा कुपट्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास और हरिभाऊ। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कभी हाँ कभी ना। इस फिल्म का गीत सुनिए अमित कुमार और उदित नारायण के स्वर में, बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के। और इस गीत की फरमाइश की है हमें ओम रेडियो श्रोता संघ नारायण से नारायण गायकवाड़ दयानंद ओमकार साई बोरखेड़ा से, जिला उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा दीपक मयंक चेतन दिलीप सिंह पवार दीक्षा और कुश मुड़त ने। जय भीम रेडियो श्रोता संघ से लिख भेजा है हमें मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से आनंदा भगत अरुणा लोचना चेतन भगत परिवार, और दसमले चौक परतूर से जय श्री ने, पिमरी वाशिम से गब्बा सिंह सतीश अभय अजय यश और कुशन राठौर ने, शुगर फैक्ट्री तहसील उमरखेड़ से मिलिंद खंदारे भारती प्रीतम कुमार सारा स्वाति अश्विनी एम के खंदारे व समस्त खंदारे परिवार ने, क्रांति नगर नांदेड़ से डॉक्टर प्रज्ञेश कंचन आयुष शांताबाई आरवी प्रज्ञाप्ति और डॉक्टर अभिजीत खंडागले ने, और साथ ही सुनना चाहते हैं उनके साथ लकी और समस्त वड़गांवकर परिवार। तहसील हरसूद जिला खंडवा से सुनना चाहते हैं नंदलाल राजपूत राजू मुनक्काबाई एवं नंदनी राजपूत। कृष्णानगर टीवी टावर सेमनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे रमाताई सीमा रीमा दीक्षा और राहुल डोंगर दिवे। नीमच से लिख भेजा है हमें गोविंद पाटीदार ममता पूजा मधुसूदन और यशस्वी पाटीदार ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म बेताब से। स्वर है लता मंगेशकर और शाबिर कुमार के, बोल हैं आनंद बख्शी के।

संगीत है राहुल देव बर्मन का, और इस गीत की फरमाइश की है हमें ओम रेडियो श्रोता संघ गांव कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ ने। बहरामपुर टेमा से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा, डॉक्टर अनिल वर्मा, सचिन, सुभाष, संतोष, दिनेश, बेबी आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा ने। कासम कॉलोनी सनावत से सुना चाहते हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिम मीना और हासिम मीना। कोली मोहल्ला छबड़ा से नूर बानो, सलमा बानो और बेबी रुखसार। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। नावदाखेड़ी जिला देवास से प्रेम नारायण जाट, संजय जाट, पवन सिंह जाट, माही सार्थक, आदित्य जाट एवं समस्त जाट परिवार। सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता और चित्रा भंडारे। इसी कड़ी में जुड़े हुए हैं सुदामा नगर इंदौर से ही घनश्याम सिंह, मधुर हाड़कुर, सपना चौहान, ग्रंथ और शुभम सिंह। नंदानगर सुलगांव से नंदराम, रिंकी, रेखा, रीना, वर्षा, राजकुमार और समस्त मंशारे परिवार। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। भड़बूंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, रीना, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल और ओम प्रकाश। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पखावज वादन चित्रांगना रेशवाल का, ताल है चौताल।

अभी आप सुन रहे थे चित्रांगना रेशवाल का पखावज वादन, ताल था चौताल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार होंगे जिन्हें हम दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रूपये से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
3: India's hydrogen train features a 10-coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi today held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of Father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the Father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled Father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. The National Testing Agency, NTA, has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all